ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਕੁਛ

ऐसी जिंदगी के मामला से अदान का दावेदार होकर जो जिनके जिनका ग्राहक सिर्फ उसी को होगा और किसी को नहीं। जबकि लामा के आने में मैं वाले जवाब है या तो अहम बातों के मामला स्पेशलाइज मालूम देते हैं, लेकिन मैं तो आम आदमी हूँ, मेरे तो सामने जो हालात वाकत होते

बता सकते हैं, हमारा कष्ट है उसे कुछ काबिल सताइश करार नहीं दिया होगा। इंसान पर दुनिया में कम है, अल्लाह ताला ने नहीं कहा।

बात यह है कि जिस तरह मस्जिद इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, नफ्सियात भी इलम की एक शाख है। उसकी गैर असूल इंसानी ज़ात के मुकम्मल उसी ज़ात को तकलीफ करता है जिसने इंसान की ज़ात को पैदा किया। लिहाजा उलूम जो भी हों वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते या उनका आपस में कोई मुकाबला नहीं ज्यादा होता। जब दीन का साइंस के साथ चल रहा है, साइंस का नफ्सियात के साथ चल रहा है, इन सब उलूम का आखिरी मकसद यही होता है कि इंसान की जिंदगी को बेहतर की तरह बनाया जा सकता है। एक तरीके कार नहीं होते हैं, दीन का तल्लक कायद से होता है, वो कायद की दुरुस्तगी भी पैदा होता है। जबकि नफ्सियात जो है वो इंसान के नफ्सियाती मिसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर के आके मिलना उन्होंने एक ही मुस्तरे पे है, वो क्या है? इंसान की कला, इंसान की जिंदगी में एक डेवलपमेंट, एक बेहतरी, एक प्रोग्रेस है। तो इस नुकते को हमें समझ लीजिए। तो वो जो नफ्सियात को सूफी के मुतल्लक बातें करती है, जो सवाल उठाती है, वो दरअसल सवाल सूफी की मुखाल

गरीब होती है, हम इश्तियाक नहीं कह रहे हैं,

आपको दरअसल इस रियाजत को आप अपने रूहानी बंदगी का बात करार दे रहे हैं। ये रियाजत नहीं बल्कि शायद आपको अपने आप को तकलीफ देने में मजा आने लगता है। सेल्फ पर्सिक्यूशन, ये इंसानियत में भी आप देखिए, ये इस्लाम की या उस मुसलमान सोचने की तरफ नहीं आना, बल्कि जब इस किताब पर मुझे हवाला दिया, मैं वो सूर जानता हूँ। अब आप

क्या फायदा? अब पांच नमाजों के बजाय दस नमाजें पढ़ने लग पड़े, इसका किसी दूसरे को क्या फायदा? लेकिन आपके जहन में ये बात है,

sacrifice, that sacrifice to save the world. एक sacrifice करने एक ये होता है कि आप दूसरों के लिए दूसरों की इतना उम्र नहीं के लिए आपने आपको तकलीफ में मार रहे एक बड़ी पॉजिटिव चीज होती है लेकिन सेक्रीफाइस टू सेल्फ अपनी जान को मुसीबत और मुशक्कत में इतना डालना जो किसी दूसरे को कोई फायदा ना हो रहा है

ना देखें, ये जो चीजें मैंने ऐड इसमें की है, तो जो लामा ने जब कहा कि तेरी निगाह में है मौजदात की दुनिया, मेरी निगाह में है हादसात की दुनिया, तो इस शेर पर अपनी फिल्म ये भी है शायद लामा सिंह के कह रहे हैं कि दुनिया से पता हुआ कि तू अपने ही कोई दिल की दुनिया में डूबा हुआ। क्योंकि नफ्सियात ये भी कहती है कि जो रियासती और मशक्कतें होती हैं, जो हम एक इंसान काटता

जिंदगी और मौत जिसका दारोमदार

एक बार इस बात सूफी के इस पर्व के कंगन तो कर रहे हैं, उसे हर्ष तनकीद तो बना रहे हैं, वो इससे इनकार नहीं कर रहे। ये तो

की साजिशों की आप लोगों फिर से लालच ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वही इंसान जिसमें इसकी फिर से लालच नहीं होती, वो जो

हम आपको

बात करते हैं, हम इसमें भाई, हम मतलब भाई भी था, बट उस दूसरे ही था, तो आपके पास उसका जवाब तो होना चाहिए। पर जो आदमी ऐसा जो अक्ल बसीरत दूसरे की अक्ल बसीरत को भी अपील करे, तो बात तो सही कह रहे हैं और समझ में भी आ रहा है, लेकिन अगर आपने खुद अब अंधा ईमान रखते हुए कि हम दूसरे पर उसे जबरदस्ती नाफिज करने की कोशिश करेंगे, तो किसी के पर जब अंधा दिन जोर लगाया जा रहा हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है? अंधा दिन जोर लगाने का नतीजा कभी कम नहीं होता, वो चीज टूट सकती है। वो गेंद जो आपको जोर फिक्र की इजाजत देता है, जब उस पर आप अंधा ईमान रखते हुए उसको दूसरे पर नाफिज करने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती, दरारे पैदा होंगे, नफरत, तासब, अदम बर्दाश्त, अदम गवाना, ऐसा ही नहीं हो। और गैर मुसलमानों को तो छोड़े, और एक लंबी दीन को भी एक साइड करा। अब घर के मामला आप देखिए, आपका बच्चा अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले किसी मामले में, आप जवाब देने के बजाय उसका जबरदस्ती अपनी मर्जी मुसलत करेंगे, तो उसमें बेचैनी पैदा होगी। मुझे समझ नहीं आ रही, पर मेरे वालिद या वालिदा

looking for.

Bye-bye.

सन नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984। ईमेल रेडियो स्नै

0: Bueno, tiene que ver, macho.
1: Esto es un marido, o un hijo.

temporada segunda, कई लोगों को मेरे ख्याल थोड़ा सा तराग है, पंजाबी

ਪਾਸੇ

क्या बात है, कल तक सर मेरा समय पीछे कल तक भारत होगी।

ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

0: Jahrbart. Der ist wirklich genauso
1: शामिल होते हैं।
2: लेकिन लेकिन अगर वो सर हमें

में बैठ गए और ब्लैक मेगन से हमारी जान छुड़ाए। पर अगले सीन में थोड़ा काला कीता है जो ब्लैक में कर कर के काली हो गई। तो प्लीज़ वालदैन से गुजारिश है कि यार ये अपने बच्चों को इस तरह इमोशनल ब्लैक मेल ना किया करें। किसी तरीके से जो है बंदा इंसान पर गलत रस्ते पर चल करता है, कोई मतलब पता नहीं हुआ, कोई अपने बंदा अपने पैरों पर जमा नहीं होता। फिर आप ब्लैक मेल करके इस तरह इन चीज़ों को अपने दिल से निकाल के उस बच्चे का आप सोच नहीं सकते कि उस जवान इंसान के

सोच के इंडिया के पास क्या ले लिया जाए और वो एक मुसीबत वहीं पर या वो प्रॉब्लम वहीं पर सुलझा दे, तो वो बेहतर नहीं है कि बाद में जो आपने तमाशा लगा के वैसे भी मारे जा रहे पाकिस्तान में सारे तमाशे भी हैं, टक्कर आ जाने गलत करना आ जाने कदम चुकाने से कोई नहीं आएगा, उस टाइम तमाशा लगा के अपने

आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। रेडियो हमवतन अपनी नशरियात लेके आपकी खिदमत में हाजिर। आप अपनी पसंदीदा नशरियात रेडियो वेस्टर्न के स्टूडियो से सुन रहे हैं। ये नशरियात 98.9 केबल नेटवर्क 98.8 और हमवतन पंचमती खो से पेश किए जा रहे हैं।

शरीयत हर जुमेरात की शाम 9:30 से 10:30, जुमे की रात 11:30 से 12:30, और इतवार 9 बजे से 2 बजे तक सुन सकते हैं।

Hamara adresse er Halmtorvet 13A 1700 København V. Telefon nummer er 33 21 29. हमारा ईमेल एड्रेस है radio@hamvatan.com और हमारी वेबसाइट है hamvatan.com।

0: हजारों दिलों की धड़कन। आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सेशन जारी है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस सारी चीज़ों से हटके है कि मुज़ाकरात से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। मैं आपके सामने कुछ अहम तफसीलात रखूँगा और आपको बताऊँगा कि अब ये बात तय है कि फैसले इमरान खान करेगा। हर दो सूरतों में अब फैसला इमरान खान को ही करना है, इसके अलावा कोई फैसला नहीं कर सकता। क्यों, मैं सूरत हाल आपके सामने रखूँगा। और अब लॉन्ग मार्च की रवानगी में से 24 घंटे से कम वक्त रह गया है। लॉन्ग मार्च एक ही सूरत में अब आगे जा सकता यानी कैंसिल हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब से आज जो है वो मुलाकात करवा दी जाए, अल्लामा राजा नासर अब्बास साहब की, महमूद खाना चकजई साहब की, और इमरान खान ही इसको इस कॉल को वापस ले लें या आगे ले जाएं। इसके अलावा कोई चारा नज़र नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ मैं शुरू में आपको अर्ज़ कर दूँ कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मेरे YouTube चैनल पे वीडियोस शायद नहीं आ रही, तो ये YouTube के ऊपर क्योंकि मैं आजकल लाइव करता हूँ और ये मैं 4-5 दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, रिकॉर्ड करके इसलिए अपलोड नहीं करता कि ये फायरवॉल की वजह से, इन चीज़ों की वजह से उसकी रीच बहुत कम हो जाती है। लाइव की रीच को उस तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आजकल ज़्यादा करता हूँ और फिर सूरत हाल क्योंकि डेवलप हो रही होती है तो इसलिए भी लाइव करता हूँ। तो जब भी आप YouTube चैनल खोलते हैं तो उसमें एक वीडियोज़ का ऑप्शन आ रहा होता है और एक लाइव का ऑप्शन आ रहा होता है, तो लाइव के ऑप्शन में वीडियोज़ आ रही होती हैं। और वैसे भी मेरी इतला यह है कि दोबारा वो जो एक अदालती फैसला आया था जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल बंद करने के हवाले से फैसला आया था, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत पाकिस्तान YouTube से दोबारा रजू कर रही है, तो शायद मेरा ये चैनल जो है वो बंद हो जाए और डिलीट हो जाए, क्योंकि हुकूमत दोबारा रजू कर रही है YouTube के साथ, और मैंने जिन हमारे दोस्तों ने अदालतों से रजू किया था उनके YouTube चैनल जो है वो बंद करने का फैसला मुअत्तल हो गया था। मैंने क्योंकि अदालत से रजू नहीं किया था क्योंकि मैं ये समझता था कि हमारे जो बाहर दोस्त बैठे हैं, डॉक्टर मुईद मीरज़ादा साहब हों, इमरान रियाज साहब हों, साबिर शाकिर साहब हों, या जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं जिनके YouTube चैनल्स हैं, और उनके YouTube चैनल्स भी इस ऑर्डर में बंद करने का फैसला हुआ था, तो मैंने ये कहा था कि हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, हम सबको एक पेज पर होना चाहिए। अगर उनके YouTube चैनल बंद होने हैं तो हमारे भी हों, सब जीरो से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अपने चैनल तो जाके और अदालतों से कहें कि हमारे चैनल बंद ना हो और उनके चैनल्स बंद हो जाएं, तो इसलिए मैं अदालत में नहीं गया था। लिहाजा मैंने एक और चैनल जो है वो बनाया है और वो चैनल इस वीडियो में इस चैनल के साथ मैं उसको कोलैबोरेट कर रहा हूँ, तो अगर ये चैनल बंद होगा तो फिर मैं उस चैनल पे वीडियोस किया करूँगा। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि फैसले इमरान खान नहीं करने हैं। देखें, इस वक्त जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनमें क्या हो सकता है, क्या मुमकिनात हैं, फैसला भी कुछ देर में आ जाएगा। या तो ये आएगा कि मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं और मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू हो गया है, तो लॉन्ग मार्च जब शुरू हो जाएगा तो ये लॉन्ग मार्च उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब तक रसाई ना हो जाए और इमरान खान साहब खुद इस लॉन्ग मार्च की कॉल को, इस लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने का ऐलान ना कर दें। अच्छा, दूसरी सूरत यह है कि आज इन मुज़ाकरात में हुकूमत ये बात मान लेती है कि इमरान खान साहब से महमूद खाना चकजई साहब और अल्लामा राजा नासर अब्बास साहब की मुलाकात करवाई जाएगी, तो अगर इन दोनों की मुलाकात करवा दी जाएगी तो फिर भी फैसला इमरान खान ने करना है। देखें, मैं ये समझता हूं कि जंग छिड़ चुकी है, लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये फैसला कौन लड़ाई है। और इसमें आप ये देखें कि वो हुकूमती लोग जो पिछले 4-5 दिन क्या बल्कि 10 दिन से हमें बता रहे थे कि गवर्नर राज लगाने का फैसला हो गया है, इमरजेंसी लगाने का फैसला हो गया है, सोहेल आफरीदी का आखिरी दिन है, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके गाल शर्म से लाल थे। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि तुमने जो एक हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहले उसका तो जवाब दो कि उसके बारे में तुमने क्या किया। कल रात को आपने देखा कि कल रात 12:01 पे ओपनिंग की तलत हुसैन ने, और तलत हुसैन के बाद एक लाइन लगी ट्वीट्स की, सिमिलर ट्वीट्स की, फिर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ आए और उन्होंने भी ये कहा कि ये बहुत बड़ी कोई दहशतगर्दी का वाकया तहरीक इंसाफ जो है वो इस लॉन्ग मार्च की आड़ में करने जा रही है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आपको पता है कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया करने जा रही है और आप लोग खुद पहले कह चुके हैं कि हम इस वजह से गवर्नर राज या इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं कि पीटीआई को इंतजार करने जा रही है, तो देर किस बात की है, लगाएं गवर्नर राज, लगाएं इमरजेंसी, लेकिन आपकी कांपें टांग रही हैं, आपकी जुर्रत नहीं हो रही, आपकी हिम्मत नहीं हो रही, आपने सारे हथकंडे इस्तेमाल करके देख लिए, आपने शौकत यूसुफ़ज़ई से खत भी लिखवा के देख लिया, आपने तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई भी करवा के देख ली, आपने तहरीक इंसाफ के एमएनए के जरिए جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود تھانہ چکزئی صاحب کے خلاف خبریں فیڈ کروا کے بھی دیکھ لیں، خبریں لیک کروا کے بھی آپ نے دیکھ لیں، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ آپ نے کل رات پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں اپنے 11 کھلاڑی بھی اتارے اس میدان میں، جن 11 کھلاڑیوں نے خوف پھیلایا، ایمرجنسی لگ جائے گی، گورنر آج لگ جائے گا، پنجاب والی صورتحال ہو جائے گی، 10 بندے نہیں نکل سکیں گے، گولیاں چلیں گی، گرفتاریاں ہوں گی، ہم گھروں میں نہیں رہ سکیں گے، گھروں سے نہیں نکل سکیں گے۔ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن سہیل آفریدی پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے۔ سہیل آفریدی کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، سہیل آفریدی کے پاس اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں سہیل آفریدی، مطلب زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ 4 کی بجائے 6 ہو جائے، 7 ہو جائے، 8 ہو جائے، کیا ہم 8 کو نکلیں گے؟ میکسیمم بتا رہا ہوں نا، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ کیونکہ میں آپ کے سامنے سہیل آفریدی صاحب کا ایک ٹویٹ رکھ دوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ کیا ہے، اور اس سے بھی کچھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کے اس ٹویٹ سے جو ہے وہ واضح ہو رہی ہیں۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب کا یہ ٹویٹ ہے، اس کا ٹائم بھی بتانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کتنی دیر پہلے کا ہے، یہ 11:35 کا ہے، یعنی اب سے کوئی 4-5 گھنٹے پہلے کا، جب میں ویڈیو ریکارڈ کروں۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول سیاسی جماعت ہیں، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس کا آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے۔ 4 اکتوبر کو گنڈی چوک لکی مروت سے عوام کا سمندر اپنا سفر شروع کرے گا، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی اور آزاد عدلیہ کی بحالی تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ تحریک انصاف کے تمام مطالبات آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ اس سے پہلے گیدڑوں کو ہر طرح سے غیر قانونی طور پر فیسیلیٹیٹ کیا گیا، لیکن ایک لیڈر سے خوف اتنا ہے کہ اسے اور اس کے اہل خانہ اور ورکرز کو جائز قانونی حق بھی نہیں دیا جا رہا۔ گیدڑ کہہ رہے ہیں، اس حکومت میں شامل تمام حکومتی جماعتیں جن کو فارم 47 پلایا گیا ان کو سہیل آفریدی گیدڑ کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی حکومتی وزراء جو پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پٹے کھولے گئے ہیں، اور ان کے پٹے کھولنے والوں کو میں کہتا ہوں کہ ان کے پٹے باندھیں۔ اس طرح کے وہ الفاظ حکومت کے بڑے بڑے وزیروں کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں، اس جرت، بہادری، دلیری کے ساتھ، مضبوط اعصاب کے ساتھ۔ پھر سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ پاکستان پر جن لوگوں کا زبردستی قبضہ قائم رکھوایا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارا پاکستان ٹوٹ جائے۔ جن کو ہندوستان سے خطرہ نہیں لیکن

0: को तबाही की तरफ धकेल दिया। वो अपने इक्तदार को बचाने के लिए पाकिस्तान में आग लगा रहे हैं। दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अवाम के लिए किसी बयानी की जंग नहीं है, इससे हर शहरी मुतासर है। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि अपने ही लोगों पर मिलिट्री ऑपरेशन करना और उन्हें बेघर करना किसी मसले का देर पर हल नहीं है। ड्रोन अटैक्स और नाम निहाद कोलेट्रल डैमेज से दहशतगर्दी बढ़ती है। मैं इस बात पर चट्टान की तरह कायम हूँ, आज खैबर पख्तूनख्वा में ये सिर्फ PTI का मौकफ नहीं रहा, बल्कि हर सियासी और मजहबी जमात और हर मकतबा फिक्र से तल्लुक रखने वाले शख्स का यही मौकफ है, जिसके दस्तखत सूबाई असम्बली के जरगे में बतौर सबूत मौजूद हैं। ये बात दुरुस्त है, उस दिन मैं वहाँ मौजूद था। पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, JUF, जमात इस्लामी सबके दस्तखत मौजूद हैं, जिनमें यह कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन ना किए जाएँ। आखिर में सुहेल अफरीदी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा टेररिज्म नहीं टूरिज्म की तरफ जाने जाते थे। खैबर पख्तूनख्वा टेररिज्म नहीं टूरिज्म के लिए जाना जाता था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। रिजिम चेंज के बाद दहशतगर्दी को दोबारा जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा पर मुसलत किया गया। जब 2022 की गर्मियों में हमने आवाज़ उठाई तो हमें झूठा कहा गया, लेकिन आज उसी दहशतगर्दी को बहाना बनाकर मासूम पख्तूनों का खून बहाया जा रहा है। जब मैं कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में 100 दिन के अंदर अमन आ सकता है और आपने सिर्फ पॉलिसी में तब्दीली लानी है, क्योंकि आपकी मौजूदा पॉलिसी कामयाब नहीं है, तो इस बात पर अमल नहीं किया जाता, तो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कौन कर रहा है? हमारे वजीरों और कारकुनान को गुड लाडलों के साथ मिलकर कौन उठा रहा है? हमारा खरीदा हुआ असला कौन हमारी पुलिस तक नहीं पहुंचने दे रहा? हमारी पुलिस बगावत करने पर क्यों मजबूर हो गई है? बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत एक पेज पर है, फिर वहां भी अमन क्यों नहीं आ रहा? दहशतगर्दी में पाकिस्तान पहली बार नंबर 1 पर आ गया, क्योंकि खुद को अकले कुल समझने वाले पहले भी गलत थे, आज भी गलत हैं, और जब तक अपनी पॉलिसियां तब्दील नहीं करते तब तक गलत ही रहेंगे। बाकी हम 9 मई को दोबारा ना होने देंगे और ना ही किसी को ऐसा करने देंगे। तो ये जो कहा गया कि हम 9 मई को दोबारा ना होने देंगे, और हमें जिसने CCTV फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाया, और ये अच्छा वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम 9 मई नहीं होने देंगे और ना ही किसी को ऐसा करने देंगे, और वो कह रहे हैं कि ये 9 मई करवाया किसने? उन्होंने करवाया जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई। 4 अक्टूबर गुंडी चौक दिन 1 बजे, सब पाकिस्तानी याद रखें, सुहेल आफरीदी ने कह दिया है कि वो पीछे नहीं हट रहे, वो हर सूरत में 1 बजे निकलेंगे। 24 घंटे से कम वक्त रह गया है। असद कैसा साहब का भी बयान आया है, इस पर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जिस तरह के बयान हैं, और उनका भी बयान आया है इनका शफील अजान साहब का। देखें बात यह है कि PTI ने आगे बढ़ना है, PTI ने पीछे नहीं हटना। अगर तो आज ये फैसला हो जाता है कि इमरान खान साहब तक, महमूद खान चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को रसाई दी जाए तो क्या होगा? ये दोनों शख्सियात जाएंगी, और इमरान खान अगर इनको ये कहेंगे कि लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले लें, तो वो फिर इमरान खान का फैसला होगा, और इमरान खान का जो फैसला होगा वो किसी वजह से होगा, और फिर उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकेगा। और अगर ये दोनों बाहर आके कहते हैं तो हो सकता है सोशल मीडिया पर कुछ लोग कहें कि नहीं नहीं हमें इन पर एतबार नहीं है, ये है वो है फलान है फलान है, लेकिन नहीं, अगर ये दोनों शख्सियात जाती हैं और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि महमूद खाना चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इतनी गलत बयानी नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं है कि इमरान खान जो कहें वो बाहर आके उससे मुख्तलिफ बात करें, एक बात। दूसरी बात यह कि अब अगर ये लॉन्ग मार्च मुलतवी और मौखर होगा, कैंसिल होगा, तो उसके बाद इसका वाज़ह मतलब है कि अब इमरान खान साहब से रेगुलर मुलाकातें होंगी, उनकी बहनों से भी मुलाकातें होंगी, और बहनें भी जब जाएंगी 2-4-5 दिन बाद।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल radio@snipelay.com।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़ समीन, आप रेडियो हम वतन की उर्दू नशरियात बराह रास्त रेडियो वेस्टर्नो के स्टूडियो से और नई दुनिया के प्लेटफॉर्म से देख और सुन रहे हैं। सामीन और नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम कुछ यूँ हैं कि अभी मैं बिस्मिल्लाह करा प्रोग्राम लेके हाजिर हूँगा। मेरे साथ स्टूडियो में PTI के सबका सदर जनाब आतिफ इलियास तशरीफ़ रखते हैं। उनसे धरने के हवाले से जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके हवाले से और डेनमार्क में उसके हवाले से बात करेंगे। समीन नाजरीन, हसब मामूल 12 से 1 बाशी के संग और 1 से 2 बजे बाबे फूके दियाँ फूका जो है वो प्रोग्राम लेके हाजिर होंगे। आज भी आपके लिए दिलचस्प और हंसा मजाक लतीफ़े जो हैं वो लेके

0: حاضر ہوں گے. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں بسم اللہ کا پروگرام جس کا میزبان میں رضا مصطفیٰ, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب عاطف الیاس صاحب. ان کا شکریہ کہ انہوں نے ایک تو شارٹ نوٹس پہ جو ہے وہ دعوت قبول کی اور دوسرا یہاں پہ تشریف لائے. وقت ہمارے ساتھ ان کے ساتھ تھوڑا سا مختصر ہوگا کیونکہ ان کی تھوڑی سی مصروفیات ہیں تو جائیں گے یہ, لیکن چند سوال اور جواب ان سے لیں گے. سب سے پہلے عاطف بھائی, معذرت کے ساتھ یہ مائک آپ کے سامنے پڑا ہے, ساتھ میں تھوڑا سا اور بھی لسننگ تسلی لکھ لے,
1: ادھر لگا لیں,
0: یہ ادھر لگا لیں. چلیں جی, بہت شکریہ, ویلکم اور خوش آمدید آپ کو اپنے پروگرام میں کہتے ہیں. عاطف بھائی یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سامعین کو السلام علیکم. سب سے پہلے رضا بھائی آپ کا شکریہ, آپ نے دعوت دی اور اپنے پوائنٹس کا ادھر اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. جناب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سراسر زیادتی اور غلط ہو رہا ہے, اور یہ 3 سال سے جو بھی بربریت کا اور ظلم کا جو نظام چلا ہوا ہے اس کی مثال پاکستان کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی. اور جس طرح ایک نئی انہوں نے کر کے ماؤں بہنوں کو بھی گھر سے نکالا, ہمارے سیاسی ورکر بھی جو ہے اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو آپ کی ابھی لیٹسٹ اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو فی الحال جو پاکستان میں ہے, ملک جو ہے ہمارا کافی پیچھے چلا گیا ہے, اور یہ جو ظلم اور کیا نام ہے ظلم کی داستان لکھی جا رہی ہے اس کی مثال پاکستان کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی.
0: تو عاطف بھائی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے, آپ کے جو چیئرمین ہیں وہاں پہ اور دوسرے جو عہدیداران ہیں, کیا آپ یہاں پہ رہتے ہوئے ڈنمارک میں سمجھتے ہیں کہ ان کی جو کارکردگی ہے پاکستان میں وہ ٹھیک ہے, اور جو تحریک چلا رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ درست ہیں؟
1: سر بات یہ ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی, ہماری اوورسیز لیڈرشپ, اوورسیز لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ جیسے ہم ڈنمارک میں, ناروے میں, انگلینڈ میں, جو بھی یورپ میں جب سیاسی ہماری جو پارٹی کے ورکرز ہیں, ہم اپنی پارٹی کے چند ساتھیوں کے ساتھ ادھر کانٹیکٹ میں ہیں, رابطے میں ہیں, لیکن اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں بہت سلو اور آہستہ سلو پروسیس میں جا رہی ہیں, اور ہمارے جو ادھر کیا نام ہے اعتراضات ہوتے ہیں وہ ان کو اپنا اعتراضات ریکارڈ کرتے رہتے ہیں. لیکن ابھی جو ابھی ایک موومنٹ جو چلی ہوئی ہے تو ہماری قیادت بھرپور اب خان صاحب کے حکم پہ کوشش کر رہی ہے کہ اب اس کا کوئی نتیجہ نکلے, اور ہمارا بھی ادھر سے بھرپور ایک قسم کا کیا کہتے ہیں کہ پریشر ہے ادھر, اور ان کو بھی پتہ کہ اب یہ بات زیادہ تک چلی نہیں گی. جو ان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کے جو پاکستان کے جو ہیں ان کی بھی ملی جلی بھگت, اور یہ کیا نام ہے اسی وجہ سے ہم جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا نام ہے ڈیلز کی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہمارا کافی پروسیس ہم پیچھے گئے ہیں. اگر عوام اور یہ لیڈرشپ صحیح کام کرتی تو یہ 3 سال خان صاحب اندر جیل میں نہ ہوتے.
0: تو اگر میں آپ کو صحیح سمجھاؤں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں, کچھ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کچھ تو مجبور ہے, کیونکہ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ تو جی یورپ میں رہتے ہیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو پاکستان آئیں اور وہاں پہ کہیں. لیکن جہاں تک میری معلومات ہے تو آپ حال میں پاکستان بھی گئے تھے.
1: جی سر ابھی میں پاکستان ہو گیا ہوں, اور یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ کمپرومائزڈ ہیں اور کوئی مجبور بھی ہیں. سر دیکھیں جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے, جو ملک سے نکل گئے ہیں, کافی ہمارے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ ملک سے باہر بھی در بدر دھکے کھا رہے ہیں, لیکن جو ہیں کچھ تو کھڑے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ کمپرومائزڈ ہیں, ان کی مجبوری ہیں, ہم ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتے. خان صاحب نے کہا ان کو بلیم نہ کریں. جہاں ماؤں بہنوں پہ بات آتی ہے تو اچھے اچھے جو ہیں وہ دلیر بھی گر جاتے ہیں, گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں. خان صاحب نے بھی اپنے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو مجبور نہ کریں جو پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے یا وہ نہیں کر سکتے, ان کی مجبوری ہیں, ان کو ٹرول نہ کریں. لیکن جس نے پارٹی کا جھنڈا اٹھا لیا ہے یا اس نے قیادت لے لی ہے تو پھر ہمارا بھی یہی ایک ڈیمانڈ ہے, ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ پھر پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے پھر آپ کو کچھ بھی ہو جائے फिर आगे बढ़ना चाहिए, अवाम को गेंज करना चाहिए, पब्लिक को गेंज करें। मसला यही हुआ है कि हमें जो पाकिस्तान की जब कंप्रोमाइज लीडरशिप हो जाती है तो फिर आप अवाम को एंगेज नहीं कर सकते।
0: अच्छा आतिफ भाई, ये भी होता है कि जब अगर मेरे पास वो सकत नहीं है बोलने की और आप बोल सकते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं कुर्सी आपको दे दूं। अगर मैं मजबूर हूं, मैं कंप्रोमाइज्ड हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं समझता हूं कि वो बोझ मेरे कंधे नहीं बर्दाश्त करते, तो क्या मुझे वो अपनी कुर्सी, अपना माइक, अपनी जगह जो है किसी और को नहीं देनी चाहिए जो आके वो आवाज़ जो है वो उठा सके?
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर। अगर आप में वो ताकत और वो हिम्मत नहीं रही, अगर आप खान साहब के लिए कुर्सी पर बैठे हैं तो फिर आपको ये कहना है स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए बैठे हैं तो फिर आपको कुर्सी खाली कर देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।
0: अच्छा, यहाँ डेनमार्क में भी हमने देखा है कि पीटीआई के जो अहदेदारान रहे हैं, अभी तो मेरे ख्याल में आपकी कोई बॉडी यहाँ पे नहीं है क्योंकि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन जो हैं वो डेनमार्क के नहीं हुए, लेकिन जब भी हमने देखा है कि पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जो है वो कोई एहतजाज होता है तो वहाँ पे जितने भी पीटीआई के अपने लोग जो दूसरे जगह पे अपना नाम पीटीआई के साथ मुंसलिक करते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते, वो अपने जो है वो कहीं और पे। क्या पीटीआई डेनमार्क में भी मुख्तलिफ धड़े हैं बने हुए?
1: सर पहली बात तो ये है कि आपने हमेशा, हम जब भी कोई पार्टी से पीछे कॉल आती है तो हम हमेशा हमारा होता है कि हम उस चीज़ को इधर भी आके लेके चलें और हम प्रोटेस्ट करें। और हमारी पहली तरजीह होती है यहाँ गोल्स प्लेस या एम्बेसी, लेकिन एम्बेसी इसलिए हमारी ज़रूरी होती है कि एम्बेसी में हमारा एक हक है कि एम्बेसी के आगे हम करें। वो एम्बेसी जो है सब की एक क्या नाम है, आप कह रहे हैं सब पाकिस्तानियों की है और हम भी पाकिस्तानी हैं। हम हमेशा एक पुरमन उधर एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, हम एम्बेसी से लड़ने नहीं जाते, हम अपना रिकॉर्ड, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने जाते हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने हमारी लीडरशिप की तो बात की है, हम जब प्रोटेस्ट कोई रेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो लीडरशिप है, हम उनको कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह अमल में लाएँ। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं इसमें कोई इधर छुपाऊंगा नहीं, ना मैं किसी से डरता हूँ, हमारे कुछ लोग हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो एम्बेसडर साहब के पास बैठते हैं, एम्बेसडर साहब की हम इज्जत करते हैं, लेकिन मैं ये भी कोई इसमें पीछे बात नहीं रखूँगा। जो ये एम्बेसडर साहब हैं, एम्बेसडर साहब का काम होता है कि पूरी कम्यूनिटी की बातें सुने या प्रॉब्लम सुने, लेकिन एम्बेसडर साहब के पास जब भी हम एज अ पी टी आई या हम अपना रिकॉर्ड एहतजाज करने का हमें देखना तक पसंद नहीं करते। वो जब भी निजी महफलों में बैठते हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, वो इस तरह हमें पेश करते हैं जैसे हम इधर दहशतगर्द हैं। हमने तो कभी जाके उधर एम्बेसी में जाके कोई लड़ाई नहीं की, उनको गालियाँ नहीं दी, हमने एक पुरअमन एहतजाज और रिकॉर्ड करते हैं कि आप हमारा ये एहतजाज पाकिस्तान तक पहुँचाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे में कुछ बंदे हैं और आप भी जानते हैं, जो उधर नहीं आते वो इनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, इनके पास इनके ताल्लुकात हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम जब भी प्रोटेस्ट अरेंज करते हैं इनको हमेशा हम कॉल देते हैं, लेकिन वो ना आए फिर उनकी अपनी मर्ज़ी।
0: अच्छा, कुछ लोग जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी के सामने हम वहाँ उनके साथ लड़ने तो नहीं जाते, लेकिन आप एहतजाज जब करते हैं, तो मुझे याद है 2014 में एक यहाँ पर तंजीम बनी थी पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम, और उसमें जितनी भी पाकिस्तानी जमातें थी, सियासी हों, समाजी हों, मसाजिद हों, वो सब उसमें शामिल थे। और उस वक्त जो इशू था वो ये था कि हमें रीडेबल पासपोर्ट जो है उसकी मशीन यहाँ कोपनहेगन में चाहिए ताकि हमें नॉर्वे जाके वहाँ से पासपोर्ट ना बनवाना पड़े। तब हम जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी के सामने एहतजाज भी करते थे, हमें अच्छा भी लगता था, वो जमहूरी भी था, वो ठीक भी था, और यहाँ तक कि 14 अगस्त वाले दिन हमने वहाँ पे किए हैं। लेकिन आज जब पीटीआई वाले अपने हकूक के लिए वहाँ पे जाते हैं तो उनको जो है वो मुल्क दुश्मन भी कहा जाता है, उनको जो है वो गैर जमहूरी भी कहा जाता है, और जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुहिम चलाने और पता नहीं रॉ का जब हम, एक तो ये हम, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम किसी को गद्दार, मुल्क दुश्मन, रॉ का झंडा, हम फजूल में जो है वो लेबल लगाते जाते हैं, तो उसमें और आज क्या फ़र्क है उन लोगों में जो पहले समझते थे कि ये दुरुस्त है पाकिस्तान एम्बेसी में जो है वो जमहूरी हक है करने का, और आज जो वही लोग जो हैं वो कहते हैं कि गैर जमहूरी है?
1: सर ये देखें, जब भी आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं वो कभी भी गैर जमहूरी नहीं होता। एक डेमोक्रेटिक तरीका, जब जिस माशरे में हम रहते हैं एक छोटी सी भी बात हो जाए तो उधर एक आवाज़ उठाई जाती है और उसको सुना जाता है, आगे तक लेके जाया जाता है। और इसी तरीके से जब देखें हम इधर सारी ऑर्गेनाइजेशन इधर सारी पाकिस्तान की, हम पाकिस्तानी हैं और कुछ भी हम कर लें, हम अपना अपना नाम से पाकिस्तानी तो नहीं हटा सकते, डैनिश पासपोर्ट ले लें, लेकिन जब आपकी अकीदत और आपका कोई नज़रिया हो, जिस तरह आप पाकिस्तान से तो हट नहीं सकते, नज़रिया भी नहीं हटा सकते, और हमारा जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, जब आप इस सिस्टम में पले बड़े हों, तो जब आप पाकिस्तान में देखते हैं जिस तरह सिस्टम और जिस तरह वो पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जा रहा है, तो आप यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी इन मुल्क की सरफरिस्त में आए, ऊपर हमारा मुल्क हो। और जिस तरह हमारी हमारा जो मशहूर हमने अपने लीडर जो खान साहब हमेशा पाकिस्तान को सबसे आगे रखा है, तो अब अगर हम अपने राइट्स के लिए और एक जो बेगुनाह लीडर को अंदर रखा गया है और ना अदालतों में इंसाफ मिल रहा है, ना ये जिस तरह ये जुल्म करके हमारे सियासी जो लीडरशिप है आधे से ज़्यादा वो जेलों में रखी हुई है बेगुनाह, ना केस अदालत में सुने जाते हैं, हमारा तो यही एक एहतजाज होता है कि हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कराएं और आगे तक लेके जाएं, ये आगे तक लेके जाएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सोचते हैं।
0: अच्छा आदर भाई, मैं अक्सर जो है वो सोचता हूँ कि जिस तरह हम जब भी पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो दूसरी पार्टियों के या दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी आप पीटीआई के हैं, तो जब मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान की बात करता हूँ, और उसमें फिर मुझे ये समझ आती है कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की बात करते थे, तो इसलिए ये लोग समझते हैं कि जो भी पाकिस्तान की बात करेगा वो इमरान खान या पीटीआई के साथ होता है। तो मेरा ये समझना है कि पाकिस्तान में या यूरोप में ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। अगर आज नवाज शरीफ या पीपल पार्टी या नून लीग जो भी है पाकिस्तानी जमात, अगर वो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने की बात करें और सही इकदाम सही जमहूरी तरीके से काम करें, तो मेरे ख्याल में जो कहते हैं ना कि 90% जो लोग यूरोप में रहते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तान दुनिया भर में रहते हैं वो सब इमरान खान के साथ हैं, वो इनके साथ भी हो सकते हैं। शर्त यह है कि ये पाकिस्तान की बात करें। मैं ये इस बात के समझने के कितना दुरुस्त हूँ?
1: सर आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि हम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं या इमरान खान के साथ हैं। जो बंदा एक बात करता है, पहले मैंने जब बताया आपको कि जब हम इस माशरे में पले बढ़े हैं, हमने ये एक सिस्टम देखा है, तो हम चाहते हैं ये सिस्टम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो। और वो जो सिस्टम जो आपने देखा है, ये नवाज शरीफ जरदारी 40-50 साल से हमारे मुल्कों में राज कर रहे हैं। क्या हो रहा है, एक बंदा काम पर जाता है सुबह और शाम को उसको ये नहीं पता नहीं उसने दो वक्त की रोटी भी लेके आनी है। ठीक है, ये 40 साल से हमारा मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है। हम जब भी सोचते हैं आज मुल्क ठीक हो जाए, कल 40 साल से पीछे देखें, रोज़ आप ये सोचते हैं कि आपका मुल्क ऊपर जाएगा, लेकिन 40 साल से हमारा मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है। तो जब हाँ साहब एक एक सिस्टम लेके आए थे, एक मंशूर लेके आए थे, वो इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी पसंद करते हैं कि हमें वो अगर हम वो सिस्टम चला या हाँ साहब की वजह थी, हम भी पाकिस्तान भी इन मुल्कों की सरफरिस्त में आ जाएगा। बात बस इतनी सी है, अगर वही मंशूर नवाज शरीफ जरदारी ले आते हैं तो वही चीज़ हो जाएगी। जो बच्चे इनकी पार्टी के जब इधर आके 5-10 साल एक दो साल रहते हैं, वो भी उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी हुई, लेकिन हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं कि हमारे मुल्क में और इन मुल्कों में क्या फ़र्क है। अगर कोई अपने मुल्क को इन मुल्कों के बराबर लाना चाहता है तो हम उनके साथ हैं। अपने मुल्क का सोचें, पहले अपना मुल्क है, वतन है।
0: अच्छा, मैं वैसे एक नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ना ये वेस्टर्न यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका वगैरह जो है ये, और ना हमारी जो कुछ सियासी पार्टियाँ वो, और जो ख़ास तौर पे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट जर्नल्स जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आवाम की जो भूख है वो ख़त्म हो। क्योंकि जब आपकी पेट में खाना होता है ना, तो आप किसी और चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत, उनके स्पोर्ट्स, उनके कोई कुछ और, या आप फिर सोचते हैं हम कहाँ घूमने जाएं पाकिस्तान में, अगर उससे ज़्यादा पैसे हो फिर दुनिया की कहाँ पे सैर करें। तो ये नहीं चाहते कि हमारी जो भूख है वो ख़त्म हो, क्योंकि जब वो ख़त्म होगी तो हम सवाल उठाना शुरू करेंगे। हमने पाकिस्तान में देखा, जब ये 3 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे, तो उसकी जो रिपोर्ट कॉमनवेल्थ और यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट लोग वहाँ पे जो गए थे ऑब्जर्वर इलेक्शन जिन्होंने देखा लूटते हुए, वो रिपोर्टें आज तक जो है वो मंजरे आम पे नहीं आई। तो ये लोग भी नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते, हमारे जो जनरल्स हैं, कि ये भूख निकले और आवाम जो है वो आगे का सोचना शुरू करें।
1: सर काफ़ी इस सवाल में आपने जवाब भी दे दिए हैं, और बात सिर्फ इतनी सी है सर थोड़ा सा ये क्या नाम है रियलिटी है, इसमें आप देखें खान साहब ने सबको एक्सपोज कर दिया। पॉलिटिशियन तो हमारे जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी इकदाम उठाए हैं, जर्नैल्स ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया सर। अगर आप सियासतदान को पावर दे दें, उनको अपने मुल्क चलाने दें डेमोक्रेट तरीके से, तो कभी मुल्क मार नहीं खाएगा। लेकिन जब आप अपना पेट, सिर्फ अपने पेट का सोचेंगे तो फिर तो, और दूसरी तरफ भूख रखेंगे, फिर खुद आप ही बादशाहत करेंगे। और जब खान साहब आए थे तो काफ़ी बंदों को इनका ये इनका सिस्टम जाता हुआ दिखाई दे रहा था। 70 साल से आप इस मुल्क को चला रहे हैं, खा रहे हैं, मुल्क तोड़ दिया आपने, फिर भी आपकी भूख नहीं ख़त्म हुई। अब कल को सिंध टूट जाएगा, बलूचिस्तान, जिस तरह ये इंटरनेशनल मीडिया और आपकी गलतियों से जिस तरह हमारा उधर भी एक हो रहा है, जुल्म आप कर रहे हैं, तो कल को वो भी ये हमारा बांग्लादेश वाला नतीजा मुझे नज़र आ रहा है। तो बात सिर्फ इतनी सी सर, जब आवाम को शऊर आएगा तो आपकी दीवारें तो गिरेंगी, लेकिन ये नहीं पता आपको कि मुल्क तो ऊपर आएगा। ये सिर्फ अपना आज आप तेल देख लें जो बाहर से आता है, आधे से स्मगली ये जर्नैल अपना रखते हैं उधर कमीशन, हर चीज़ पे इनका अपना कमीशन है। अगर आप कैंट देख लें, ठीक है जी, मैं तो आप पूरी उम्र हम पाकिस्तान बचपन में रहे हैं, खारियाँ कैंट में हम स्कूल जाते थे, ठीक है, जब हम खारियाँ कैंट में अंदर जाते थे इससे लगता हम यूरोप में आ गए हैं। खारियाँ कैंट से बाहर निकलते थे तो हम जाते कहते थे हम किसी ये तीसरी दुनिया। तो आप ये फ़र्क देख लें, अपना इन्होंने सिस्टम उठाया हुआ और आवाम का ये सोच नहीं रहे।
0: अच्छा, आपकी पार्टी के जो एक इमरान खान साहब के साथ उन्होंने बड़ा काम भी किया है, शहबाज़ गिल साहब अमेरिका रहते हैं, वहाँ से जो है वो वीलॉग्स करते हैं, और उन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि ये हमारे जो आर्मी है फौजी, उन्होंने जो है वो अपना जो बिज़नेस शुरू किया हुआ है, उन्होंने कहा कि उनके प्रोडक्ट्स का जो है वो बायकॉट किया जाए। आप उसको कितना समझते हैं कि ये उनका दुरुस्त इकदाम है कि जो पाकिस्तान के आर्मी के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो वो बिज़नेस करते हैं और सब्सिडी भी लेते हैं, हर चीज़ करते हैं, वो ठीक है बजाय इसके कि उनके प्रोडक्ट्स भी लिए जाएं?
1: सर बात ये है कि अब मैं जैसे पहले भी कहा कि हर चीज़ पे इनका इख्तियार है, मुल्क ये चला रहे हैं, सियासतदान तो आगे डमी है। ये तो अगर सियासतदान की आप करप्शन करते हैं वो तो 20% भी बनती नहीं है जो ये कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स देखें हर चीज़ पे, अभी PIE भी इन्होंने ली है, बैकफुट पे यही है PIE पे। तो आप किस किस चीज़ का बाइकाट करेंगे भाईजान? मोहन तो उन्होंने चलाई हुई है, कुछ दिन चली भी थी, लेकिन जब उधर क्या नाम है हर चीज़ का आप बाइकाट करेंगे तो आप खाएंगे किधर से, पिएंगे किधर से? तो ये थोड़ा सा मुश्किल इकदाम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जो अगर इस तरह का हो जाए तो बड़ी अच्छी एक मुहिम है सर।
0: अच्छा, वापस आते हैं जो मेन है कि जो एहतजाज पाकिस्तान में हो रहा है, वो उसकी सुनने में आ रहा है कि अभी जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, धरने का जो है वो लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान कर दिया गया है और उसका कुछ प्लान भी दिया गया है। तो आपने जो है डेनमार्क में एक एम्बेसी के सामने 27 सितंबर की डेट दी थी, जिसको पोस्टपोन करके 4 अक्टूबर आज का दिन था रखा हुआ, आज वो एहतजाज हो रहा है या उसको पोस्टपोन कर दिया?
1: सर पहली बात तो ये 27 का हमने जिस तरह पाकिस्तान हमारी पार्टी ने ऐलान किया था कि 27 को हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन कुछ टैक्टिकल सूरत हाल की वजह से उन्होंने पोस्टपोन किया, और एक अच्छा फैसला था, ठीक है जी। और इन्होंने कंटेनर्स हर जगह लगाए हुए थे और इतना क्या नाम है मोटरवे तक तोड़ दिए थे, लेकिन हमारी पार्टी का ये एक टैक्टिकल अच्छा फैसला, इसको प्रोलॉन्ग करें, इनको पता लगे कि ये क्या कर रहे हैं, खुद अपने पैरों पर कलाड़ी मार रहे हैं। और दूसरी बात ये सर, हमारा रबता था हमारी क्यादत से पाकिस्तान से, तो हमने भी इसीलिए प्रोटेस्ट पोस्टपोन किया कि जब पार्टी नया प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे तो हम उसी साथ एक तरफ चलेंगे। तो ये है कि आज 4 को जैसे कल मुज़ाकरात हुए हैं, तो आप कह रहे हैं जैसे मुज़ाकरात फेल हुए हैं, फेल तो होने थे सर, हमारी डिमांड थी और खान साहब को और सियासी कैदियों को रिहा करें। अगर खान साहब को रिहा नहीं करते, कम अज़ कम सियासी कैदियों को रिहा करें, और खान साहब ये तो नहीं कह रहे मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट करें सर, कम अज़ कम उनको एक राइट मिलना चाहिए इलाज कराने का, अपना क्या नाम है जो है वो बिछाकर वापस कर रहे हैं। लेकिन और जो हमारे क्या नाम है उनकी बहनों को एक और फैमिली को पकड़ा हुआ है, वो एक दो डिमांड थी, इस तरह की छोटी मोटी डिमांड थी। और फिर हमारे ये था कि अगर आपने ये मुज़ाकरात में हमारी पहले खान साहब से मुलाकात कर दे सियासी, वो भी ये बात नहीं माने, और ये नून लीग तो ये क्या नाम है, गवर्नमेंट तो कर नहीं रही, ये तो पीछे एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। जिस तरह मोहसिन नकवी 4 दफ़ा तो उठे हैं उधर मीटिंग से, मसौदा लेके बार बार वो फील्ड मार्शल के पास जाते हैं, फिर उधर से चेंज करके लाते हैं। मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते, मुज़ाकरात टेबल पे बैठ के उसी वक्त होते हैं, पीछे से मशवरे लेके नहीं आते सर।
0: वो एक मजाक भी होता है ना, मजाक
1: साक
0: रात
1: ये बात सही है, ये मजाक ही है सर
0: ये मजाक है।
1: जी
0: और देखें, पहले तो था इमरान खान साहब को जो है वो नाजायज़ जेल में डाला हुआ है, और उन पे जो नाजायज़ केसेस बनाए गए हैं और उस सजाएं दी हुई हैं, उनकी तो कोई बुनियाद नहीं। उनकी तहरीक के लिए निकले थे, और आज आप जो है जो पीटीआई है वो उनकी दवा दारू के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या ये दवा दारू एक इंसानी हकूक नहीं है?
1: सर, बिल्कुल इंसानी हकूक है सर। देखें, उनको जो आँख का इन्फेक्शन हुआ है, वो 15% उनकी एक आँख की देखने की ताकत रह गई थी। तो ये तो एक हर कैदी का राइट है, जो भी एक सियासतदान हो ना हो, जो आम कैदी है उसको लाज की एक देनी चाहिए। और फिर भी ये खान साहब हैं जो सर एक नामवर शख्सियत, और जैसी उनकी पर्सनैलिटी पूरी दुनिया में भी नहीं है जो हमारे यहाँ, तो उनको भी ये इजाज़त ना दें, तो ये तो एक जुल्म है सर। तो ये हमारे थोड़े छोटे मोटे ये क्या नाम है पार्टी के जो थे, कि कम अज़ कम लाज तो दें। और ये अदालत ने फैसला भी किया था, उसके अदालत का भी देखें सर, एक फैसले का एहतराम भी नहीं किया गया।
0: अच्छा आतिफ साहब, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ रोडें तो बंद हैं, कंटेनर्स लगाए हुए हैं, हुकूमत तो खुद ही उसमें फंसी हुई है, और आधी नाकामी तो उनको वैसे हो चुकी है। ये
1: जी
0: पीटीआई जो है, जिस तरह
1: बिल्कुल
0: आपने कहा कि अच्छा इकदाम था कि ये 10 दिन जो है वो इंतज़ार
1: जी
0: करें, तो क्या ये अच्छा और ना होगा कि अगर वो ऐलान कर देते हैं कि जी हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेके नहीं जा रहे, हम जो है मीनार पाकिस्तान लाहौर जाएंगे, फिर जब उधर वो कंटेनर्स मूव करें तो कह देंगे जी हम अब जो है वो कराची में मज़ार कायद पे जो है वहाँ पे जाएंगे, तो इनको भी जो है जिस तरह उन्होंने इनको पहले ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया
1: जी
0: था, अब ये थोड़ा सा ट्रक की बत्ती पे उनको लगाएं।
1: जी सर, इस तरह के फैसले आप आएंगे, आप देखें आगे आगे होता क्या सर। इस तरह ये जो इस तरह तो नहीं अब चल सकता, ये जो काम है ये अपना पैरों पे खुद कलाड़ी मार रहे हैं। मुल्क पूरा सर सिस्टम, ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से, खुद इन्होंने सर मुल्क तबाह किया हुआ है, अपने मफादात के लिए बैठे हुए हैं। कब तक ये सिस्टम चलेगा सर? गरीब बंदे का कुछ हाल नहीं है, खाने के पैसे नहीं है बच्चों के पास, गरीब को तो छोड़ें, जो हमारे मिडिल क्लास हैं बेचारे, वो भी उनका भी कोई हाल नहीं सर। जो मीर है वो मीर से मीर होता जा रहा है, जो अगर इनकी वो क्या नाम है कहते हैं, इनके साथ कनेक्शन बनाने में चले हुए हैं। गरीब अमीर तो गरीब का सोचता ही नहीं है जाना आप उधर।
0: आदब साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का और सवालों के जवाब देने का। आखिरी सवाल के अगले एहतजाज की डेट जो है वो आप कब और कैसे अनाउंस करेंगे?
1: सर अब इंशाल्लाह आज देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, तो फिर हम भी एक फ़ैसला लेंगे। और हमने तो पाकिस्तान में क्या तो ये भी मशवरा दिया कि अपने मसला ये है सर, कि पहले मशवरा तो ये दिया कि हर शहर से हर गांव से अपने बंदे निकालें रोडों पे, कोई आगे मार्च लेके जाता है कि नहीं जाता, लेकिन कम से कम अपनी अपनी यूनियंस के अपने अपने शहरों के बंदे रोडों पे आ जाएं, तो वही बड़ा बनता है। लेकिन बात यह है कि सर आधे से ज़्यादा जो हमारे लीडर हैं, नौजवान हैं, यूनियंस के लीडर हैं, वो भी जेलों में बैठे हुए हैं। आप सोच नहीं सकते कि कितने ज़्यादा बंदे जो हैं हमारे लीडर, हमारे सियासी कैदी हैं। हमारी तो यही डिमांड थी इन मुज़ाकरात में कि उनको रिहा करें। तो ये 3-4 शराइ थी जो इन्होंने मानी नहीं है, तो एक मानते थे दूसरी कहते थे नहीं माननी। तो अब देखें आगे होता क्या है, जो डेवलपमेंट होगी हम उसके मुताबिक ही इंशाल्लाह अपना स्टेप भी उठाएंगे। लेकिन यह मैं आपको बता दूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पीटीआई की क़यादत माशाल्लाह बहुत इंगेज है, और लड़के बहुत काम कर रहे हैं। अगर इधर से प्रेशर भी ना हो तो हमारी जो पीटीआई के कुछ साथी कंप्रोमाइज हैं, वो भी अब जो हैं क्या नाम है साथ उठेंगे। तो यही है सर।
0: आखिर में आप कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी को डेनमार्क में या जो यहाँ जहाँ तक हमारी दुनिया में आवाज़ जा रही है वहाँ तक आप कोई अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हो?
1: सर हमारी आवाज़ ये है, एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब भी हम कोई प्रोटेस्ट का ऐलान करते हैं आप आएँ। हम अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, खान साहब के लिए कर रहे हैं। आप एक अभी अगर आप नहीं निकलेंगे, आप अपना इस वक्त निकलेंगे फिर बहुत देर हो जाएगी, अभी भी बहुत देर हो गई है, प्लीज़ निकला करें। हम इल्तिजाज की कॉल देते हैं, खान साहब की ज़िंदगी का सवाल है, पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। तो यही है कि अभी नहीं तो फिर कब, क्योंकि ये अपने राइट्स के लिए निकलना पड़ता है, जब आप निकलेंगे तो फिर आगे सुनी जाती है।
0: बहुत शुक्रिया आपके आने का, और इंशाल्लाह आइंदा भी जो है वो आपसे बात होगी।
1: थैंक यू
0: अपना
1: सर,
0: बहुत सारा
1: थैंक यू
0: ख्याल
1: सर साहब,
0: रखिएगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका।
0: جی سامعین و ناظرین، یہ تھا بسم اللہ کرام پروگرام، جس میں ہمارے مہمان تھے جناب عاطف الیاس صاحب، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، سابقہ صدر بھی رہ چکے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور 12 بجے جو ہے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی باشی کے سنگ پروگرام میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ اور ہم وطن ایک سنگ، نئے رنگ نئی امنگ۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84، ای میل ریڈیو سنائپلائے ہم وطن۔

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 अक्टूबर पाकिस्तान में इतवार की सुबह आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 309। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज करते हैं मुजाकरात से। जी हाँ, मुजाकरात फेल हो गए। आपको नसीम हजाजी की वो किताब याद होगी, और तलवार टूट गई। जी हाँ, यहां पर भी मुजाकरात टूट गए और लॉन्ग मार्च जो है वो अब से चंद ही घंटों के बाद शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले वजीरस्तान से लोग निकलेंगे और लकी मरवत पहुंचेंगे। लकी मरवत में उनका इस्तकबाल करेंगे सुहेल खान अफरीदी, और वहां से फिर जो लॉन्ग मार्च है वो रवान दवा होगा। आज आपके सामने पूरा शेड्यूल रखेंगे कि कहां कहां से पहुंचते हुए फिर वो सवाबी और उससे आगे इस्लामाबाद की तरफ का रुख लेगा। अब सबसे पहले आपको जो मुजाकरात कहां पर टूटे हैं वो बताएंगे, आखिरी हतमी बातचीत क्या हुई, फिर जरा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, पूरी शाम का और दिन का अहवाल बताएंगे कि असल में होता क्या रहा, किस वजह से मुजाकरात टूटे। क्योंकि नून लीग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की ऑफर दे दी इमरान खान को, एक काम जो वो हर बार करते हैं जब भी उनसे कोई मिलने जाता है, और उससे आसिम मुनीर साहब को बहुत तकलीफ है। नून लीग ने ऑफर कर दी कि वो काम इमरान खान आसिम मुनीर के साथ ना करें, हमारे साथ कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बात बन ना पड़ी। बड़ी कुर्बानी थी नून लीग ने ये दी, छोटी नहीं। राणा सनाउल्ला ने तो कहा कि मेरे साथ कर लें ये काम खसूसी तौर पर, लेकिन फिर भी कोई बात बन ना पड़ी। वो सब कुछ क्या है वो भी बताएंगे। सबसे पहले एक गुजारिश कि आज शायद आपको आवाज सुनने में कुछ मसला हो, क्योंकि हमारे माइक्रोफोन में आज कुछ मसला है। ये इसी व्लॉग के लिए होगा, अगले के लिए इसे फिक्स कर लेंगे। मैं इस वक्त सफर कर रहा हूं जिस वजह से आपके लिए ये परेशानी होगी, जिसके लिए पेशगी माजरत। अब आते हैं सबसे आखिर पर सूरत हाल क्या है। आखिर पर सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों ने यह ऐलान कर दिया कि मुजाकरात नाकाम हो गए हैं, और ना ही हुकूमत ने अपोजिशन की डिमांड्स मानी और ना ही अपोजिशन ने हुकूमत की डिमांड्स मानी, और जो लॉन्ग मार्च है वो चल रहा है। लेकिन यहां तक पहुंचे कैसे? आखिर की खबर आपको पहले दे दें कि जो असदुल्ला हैं वो ये कहते हैं, असदुल्ला जर्नलिस्ट जो हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि हुकूमत ने 2 नंबरी की, एक ड्राफ्ट पर इत्तफाक हुआ। इत्तफाक होने के बाद उस ड्राफ्ट को ऐवाने सदर ले जाया गया। जब वो ड्राफ्ट वहां से वापस आया तो वो ड्राफ्ट मुकम्मल तौर पर तब्दील हुआ हुआ था। मतलब ऐवान सदर में जाहिर है वही बैठे होंगे ना जिन्होंने 9 मई की फुटेज चोरी की थी, मतलब पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स या उनके नुमाइंदे। तो उन्होंने, उनका तो पुराना काम है झूठ बोलना, मुआहदों को आगे पीछे करना, फ्रॉड करना, धोखा करना, तो उन्होंने वही किया कि जिस मुआहदे के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत के जो मुजाकरात करने वाले लोग थे वो अग्री किए, वो मुसवदा सदर हाउस गया। असदुल्ला के मुताबिक उस मुसवदे को वहां बदल दिया गया। जब मुसवदा वापस आया तो अपोजिशन ने कहा कि ये वो मुसवदा नहीं है जिस पर हमने अग्री किया था, तमाम चीजें तब्दील कर दी गई। याद कीजिए, कल ही मैंने आपको तस्वीर दिखाकर ये कहा था कि अगर इस टीम को देखें मुजाकरात की जो हुकूमत की तरफ से है, तो ये वही टीम है जिसने आजाद कश्मीर में कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ भी मुजाकरात किए थे। याद कीजिए कि वहां पर क्या हुआ था, मुजाकरात में से कोई चीज भी बाद में पूरी नहीं की गई थी। वजह क्या है? मुजाकरात करने वाले बेचारे कोई और है, पीछे असल जो फनकार है वो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स हैं। ये जो भी मुजाकरात कर लें, ये मुजाकरात में याद रखिएगा कि सालसी वो करता है, हमेशा ऐसी अदालत सालसी कर सकती है जिसका आपके ऊपर कोई इख्तियार हो, जो आपको सजा दे सके, जजा दे सके। ये तो बेचारे सारे उनके अपने, मतलब आप ये कह लीजिए कि टाउट्स हैं मिलिट्री जर्नल्स के, जिनको बिठाया हुआ है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ये सारे फॉर्म 47 पर यहां पर बैठे हुए हैं कुर्सी की मेज की दूसरी तरफ, तो इन्होंने मिलिट्री जर्नल्स के ऊपर क्या दबाव डाल लेना है? तो इन्होंने क्या मुजाकरात करने या इनकी सालसी किस चीज की? यही वजह है कि इस कौम में कोई और क्लियर हो या ना हो, इमरान खान जेल में बैठा क्लियर है। बदकिस्मती से हम इमरान खान की पार्टी वाले क्लियर नहीं है, वो क्लियर है, वो जेल से समझते हैं कि मुजाकरात किसके साथ करने चाहिए। देखें, बहरहाल ये इन्होंने मुसवदा तब्दील कर दिया जिसके बाद मुजाकरात टूट गए। अच्छा, अब जब मुजाकरात टूट गए तो इनकी जो लाइन और लेंथ है वो फिर वही है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, मतलब पश्तूनों को दहशतगर्द कहना है। वही काम जो इन्होंने पहले बंगालियों के साथ किया वही अब ये पश्तूनों के साथ कर रहे हैं, और पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स को डर नहीं लग रहा। मतलब मैं आपको एक खबर दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो कि ये खुद वहां जर्नल्स जाकर खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी हरकतें क्यों नहीं करते। पिशावर में, जैसे आपको पता है लाहौर में 13-14 अरब रुपए के चालान कर दिए गए। पिशावर में ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक शख्स को रोका, उसका 10,000 रुपए का चालान कर दिया, उसने बंदूक निकाली, दोनों पुलिस वालों को मौके पर कत्ल कर दिया, उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार दी। ये वो सूरत हाल है जो पिशावर मतलब खैबर पख्तूनख्वा में ग्राउंड पर है। ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से जनरल्स वहां पर गवर्नर राज या इमरजेंसी नहीं लगाना चाहते। ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से ये खैबर पख्तूनख्वा का रुख नहीं करते। अगर ये कर सकते होते, इन्हें ये डर ना होता कि वहां के लोग किस तरह से सोचते हैं। खान साहब ने एक दफा कहा था, हैं तो वो खुद भी पठान, लेकिन उन्होंने कहा था कि दुनिया में दो तरह के इंसान अल्लाह ने बनाए हैं। मैंने पूछा कौन से, उन्होंने कहा एक पठान और एक आम इंसान। तो उनकी बात ठीक है, इनको पता है कि पठान अगर ये वहां पर इमरजेंसी लगाएंगे, ये वहां पर गवर्नर राज लगाएंगे, तो इनके साथ वहां पर बाद में क्या होगा, इसलिए ये काम तो इन्होंने करना नहीं या अभी फिलहाल कर नहीं सकते। तो दूसरे सारे पैंथरे जो है वो बदल रहे हैं। तो बहरहाल 3-4 चीजें थी जिसके ऊपर डेडलॉक रहा। एक तो अपोजिशन चाहती थी कि इमरान खान से महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासर अब्बास और जो सलमान अकरम राजा और गौहर खान, इनकी एक वफ्द की शक्ल में मुलाकात हो। हुकूमत ने यह ना मानी। उसके बाद अपोजिशन ये चाहती थी कि चले महमूद खान अचकजई और अलामा नासर अब्बास साहब ही जाके मिल लें, वो भी हुकूमत ने नहीं मानी। अपोजिशन ने मजीद लचक दिखाई और कहा कि चलें अलामा राजा नासर अब्बास को अकेले मिलवा दें, उस पर भी लचक नहीं दिखाई गई और कहा गया कि मंगल वाले दिन खानदान में से किसी की मुलाकात करा देंगे या वकला में से आपकी मुलाकात नहीं करवाएंगे। फिर हुकूमत ने इस पर भी लचक नहीं दिखाई कि इमरान खान के जो जाती मौलजीन हैं उनको एक्सेस दें इमरान खान तक, उनकी रिपोर्ट तक, और इमरान खान साहब का इलाज जो है वो हॉस्पिटल में एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल के अंदर हो। इस पर भी हुकूमत ने कोई लचक जो है वो नहीं दिखाई। फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर दोनों साइड्स हैरान हुई कि किस तरीके से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। मतलब स्पेशली अपोजिशन इस बात पे हैरान हुई कि किसी सूरत जो है वो हकूमती अराकीन बेचारों के पास कोई मैंडेट ही नहीं है। ये भी कहा गया कि हकूमत की तरफ से ये तहरीक इंसाफ से कहा गया कि 5 या 6 जगहों पर जहां इस वक्त फौजी ऑपरेशन हो रहा है उन्हें मिनोआन तस्लीम करे, पीटीआई की गवर्नमेंट उसे अपना नाम दे, अपनी रिकग्निशन दे, मीन अपने गले ले, ये गंध अपने गले ले जो जनरल्स वहां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले पाकिस्तान के ऊपर बैनुल अक्वामी या दूसरे मुल्कों की जंगें पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई, अब आसिम मुनीर भी वही करने जा रहे हैं और डिमांड उनकी ये है कि पीटीआई उसको अपना नाम दे, पीटीआई एक्सेप्ट करे कि ये हम करवा रहे हैं, मतलब पीटीआई उसकी मुकम्मल ओनरशिप ले। पीटीआई ने आगे से यह जवाब दिया या जो कमेटी बैठी हुई थी कि ओनरशिप ले सकते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट लोगों के सामने रखें कि वहां पर क्या हो रहा है, क्यों ऑपरेशन हो रहा है और बाकी वहां पर क्या ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे ऑपरेशन से बचें। तो इस पर भी वहां पर डेडलॉक जो है वो बरकरार रहा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में मजीद सूरत हाल जो है वो किस तरफ डेवलप होती है। लेकिन ये 3-4 चीजें थी, जाती मौलजी, इमरान खान के साथ मुलाकात, इमरान खान का इलाज मुआलजा किसी हॉस्पिटल के अंदर, और फौजी ऑपरेशंस जो है उसका सारे का सारा बर्डन जो है वो पीटीआई ले। लेकिन साथ साथ वो तरीका वारदात भी जारी रहा। मीडिया अंदर नहीं, अंदर अपोजिशन वालों के साथ ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन बाहर वही किया गया जो बंगालियों के साथ करते थे, जिस तरीके से उनको ये हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट से खारिज करते थे, गद्दारी के सर्टिफिकेट देते थे, वही काम इन्होंने पश्तूनों के साथ शुरू कर रखा है। कल ख्वाजा आसिफ और दूसरे टाउट्स ने जिस तरीके से ट्वीट्स किए थे, आज उसी तरह के काम तलाल चौधरी से करवाए गए। जरा सुनिएगा उनका लबो लहजा, उनकी पश्तूनों के बारे में बातचीत, खैबर पख्तूनख्वा एक पूरे सूबे के बारे में बातचीत, कि किस तरीके से वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग जान बूझ कर दहशतगर्दी करवाते हैं, दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, जब तक ये दहशतगर्दी खत्म नहीं करेंगे मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब पूरे खैबर पख्तूनख्वा को ये लोग दहशतगर्द कह रहे हैं। सुनिए
2: कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में केपी हुकूमत ये यकीन दिलाने में नाकाम रही कि वो मुस्तकबिल में तावन करेगी या नहीं करेगी, और इसी वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हुए।
1: सुन लिया आपने, तो ये टोन थी, ये तरीका वारदात था बाहर मीडिया में, अंदर जाहिर है ये बातें नहीं कर रहे थे। मीडिया के ऊपर जब मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो दोबारा उनको जोड़ा गया सारे के सारे मामले को दहशतगर्दी से। हालांकि आपको पता है कि सारे का सारा मामला जुड़ा हुआ है इमरान खान साहब के इलाज के साथ, इमरान खान साहब की रिहाई के साथ, इमरान खान साहब की जो घर की खवातीन हैं और उसके साथ साथ जितने भी दूसरे सियासी लीडरान हैं उनकी रिहाई के साथ और लूटे हुए मैंडेट के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, तलाल चौधरी की भी स्टेटमेंट आपने सुन ली। फिर जावेद चौधरी साहब ने, आपको पता है अहम दिन हो और उसमें माजरत के साथ, माजरत माजरत माजरत इस लफ्ज पर, लेकिन और मुझे कोई लफ्ज नहीं समझ आ रहा कि ऐसा अहम दिन हो और जावेद चौधरी साहब चवल ना मारे, ये हो नहीं सकता माजरत के साथ, क्योंकि हर अहम दिन के ऊपर ऐसी बात करते हैं कि बंदे का हासा निकल जाता है सीरियस तरीन कामों में। उन्होंने आज ट्वीट किया कि मुजाकरात तो कामयाब हो रहे हैं और जो पीटीआई ने डिमांड रखी है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, हुकूमत तो मान गई है, जेल सुपरिटेंडेंट नहीं मान रहा। जेदा जी, लगता है कि आप माजून जो है ना वो किसी और रास्ते से खाते हैं, मतलब आप नाक के रास्ते से, ये कान के रास्ते से, मतलब मुंह से नहीं खाते आप माजून, क्योंकि जितना ही आपके सर को चढ़ता है और जो बातें आप करते हैं, मतलब हुकूमत मान गई है लेकिन सुपरिटेंडेंट, जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो नहीं मान रहा। जेदा जी की क्या बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद हकूमती वफ्द ने तीन सवालात भी किए, हकूमती वफ्द से अपोजिशन ने तीन सवालात किए। राजा नासर अब्बास साहब ने पूछा कि आप अपने लीडर से मुशावरत के बगैर फैसले कर सकते हैं, इसका कोई जवाब वो नहीं दे सके क्योंकि हर बात के ऊपर ये भाग कर जाते थे कि हम जरदारी साहब से पूछ लें, हम दूसरी तरफ शहबाज शरीफ से पूछ लें। तो उन्होंने कहा आप तो अपने लीडरान से पूछ रहे हैं, हमें क्यों नहीं अडयाला में जाके आप पूछने देते अपने हमारे लीडर से। उसके बाद दूसरा सवाल था कि एमएनएज और खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारियां कौन कर रहा है, कोई जवाब नहीं था इसका। तीसरा सवाल वो ये था कि अदालतें आजाद हैं, आप कहते हैं अदालतों में जाएं, तो क्या वाकई अदालतें आजाद हैं, और अगर आजाद हैं तो उनके फैसलों पर आप अमल क्यों नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, आपने इमरान खान को हॉस्पिटल क्यों नहीं मूव किया, आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया। इन तीनों बातों का कोई जवाब हुकूमती अराकीन जो थे उनके पास नहीं था। आगे महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास के अलावा इमरान खान से कोई और मुलाकात नहीं करेगा, यह भी फैसला किया गया था अपोजिशन की तरफ से, लेकिन बाद में इस पर लचक दिखाई गई और कहा गया कि अगर महमूद खान अचकज़ई के साथ नहीं भी तो चले अलामा राजा नासिर अब्बास साहब से मुलाकात करवा दीजिए। तो यह सूरत हाल बनी है। दूसरी तरफ ये भी खबरें दी गई कि ब्रेक थ्रू, इमरान खान से मुलाकात के लिए हुकूमत आमादा होगी। ये दरमियान में, ये मैं अब आपको रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि क्या कुछ होता रहा सारा दिन। तो ये भी खबर फैलाई गई कि हुकूमत मान गई है मुलाकात के लिए, स्पीकर अयाज सादिक मनाने में कामयाब, मुलाकात मुतफिका टर्म ऑफ रेफरेंस मुजाकराती टीम तैयार करेगी। ये झूठ था, कोई हुकूमत मुलाकात के लिए नहीं मानी थी। फिर जब ये मुजाकरात हो रहे थे तो इसका जो आखिरी दौर था उससे पहले वजीर दाखला मोहसिन नकवी ने अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर से एक अलहदगी में मुलाकात की। इस मुलाकात के अंदर, जिसमें पीटीआई की डिमांड्स पर उन्हें जवाब दिया गया, जाहिर है जर्नल्स की तरफ से, और वो मोहसिन नकवी वो जवाब लेकर आए और उसके बाद फिर बाजाबता चौथा राउंड जो है वो शुरू हो गया, जिसमें फिर दूसरे लोग भी आकर बैठ गए, लेकिन मोहसिन नकवी ने वो पैगाम गालिबन उन तक पहुंचाया। ये हम वो तमाम खबरें हैं जो आपके सामने रख रहे हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी हैं, डिफरेंट जर्नलिस्ट जो हैं जिन्हें रिपोर्ट कर चुके हैं, जिनकी जिम्मेदारी ले चुके हैं। हुकूमत से मुजाकरात से कबल अपोजिशन कमेटी का मुशावरती इजलास भी अलग से हुआ। महमूद अचकज़ई के चैम्बर में यह इजलास हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात पर अपोजिशन कमेटी अराकीन को एतमाद में लिया गया और बताया गया कि मोहसिन नकवी क्या पैगाम लेके आए थे और हमने उन्हें क्या जवाब दिया। अब आते हैं तो मुजाकरात का, तो आपको समझ आ गई। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई। एक मौके पर राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बात रेज की कि जब भी कोई जेल में इमरान खान से मिलने जाता है तो इमरान खान आसिम मुनीर को गालियां देते हैं। इमरान खान का मैं आपको बता देता हूं कि वो गंदी गालियां नहीं देते। मुझे क्रिकेटिंग जमाने का नहीं पता, मैं उनके साथ नहीं रहा, जितनी देर मैं रहा हूं मैंने उन्हें कभी गंदी गाली देते हुए नहीं देखा। जाहिर है मैंने अब उनकी जिंदगी एक मुख्तलिफ जिंदगी है, नमाज पढ़ते हैं, बड़ी स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, तो शायद इस वजह से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई हो। क्रिकेट के जमाने के उनके पुराने लोग कहते हैं कि बड़ा सख्त बातें कर देते थे वो, मेरे इल्म में नहीं, मैं तब उनके साथ नहीं था। जितनी देर मैं साथ रहा हूं मैं पूरी आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि इमरान खान साहब गालियां नहीं देते, मीन गंदी वाली गालियां नहीं देते, जो जिनको गालियां कहा जाता है। लेकिन राणा सनाउल्लाह ने वहां कहा कि जेल में जब भी कोई मिलने जाता है तो वो आसिम मुनीर को गालियां देते हैं, गंदी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उस पर जो कमेटी थी उन्होंने कहा कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आसिम मुनीर साहब को ये ना करें, लेकिन आसिम मुनीर खुद क्या कुछ कर रहे हैं उनके साथ, तो इमरान खान क्या करें। उस पर राणा सनाउल्लाह ने एक अजीब ऑफर दे दी। मैं तो वैसे हैरान हूं कि इतनी ज्यादा वो आगे निकल गए, हम तो दिल तक चाहते थे। तुम तो जहां तक आ गए तो ये तो दूर निकल गए, मतलब राणा साहब ने तो बिल्कुल ही चुक दिया काम को। मैं कह रहा हूं वो आपको याद है इस्लामाबाद के अंदर वो एक पता नहीं उसे मैं क्या कहूं, एक आर्टिफैक्ट था या जो भी था, मुजस्मा था या जो भी, एक आर्ट का पीस था जिसमें बॉल्स उठाए हुए थे दो हाथों में, वो शहबाज शरीफ ने बेसिकली तो डिपिक्शन की थी अपने काम की कि वो क्या करते हैं सारा दिन, तो वो उन्होंने लगवाया था। फिर फील्ड मार्शल ने कहा कि ऐसे काम तो अलहदगी में किए जाते हैं, आपने पूरी दुनिया के सामने मुजस्मा ही या उसका वो लगा ही दिया सब कुछ, तो उतरवा दिया गया था रातों रात। तो राणा साहब ने भी वही माशाल्लाह से मुजाहरा किया कमेटी में। राणा साहब एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने कमेटी को कहा कि इमरान खान बेशक गालियां निकाल लें, गालियों के अलावा बेशक गंदी गालियां, नंगी गालियां निकाल लें, लेकिन आसिम मुनीर को ना निकालें, मुझे निकाल लें बेशक। हैरान हूं मैं इस बात के ऊपर, हालांकि इमरान खान गंदी नंगी गालियां नहीं देते, कि ऐसी कोई बात उन्होंने कही है कि नहीं कही है, राणा साहब ने वहां पर लाए हैं वो माशाल्लाह से उसमें सारी कन्वर्सेशन के अंदर। तो बहरहाल उन्होंने ऑफर किया है कि आपने जो गालियां देनी है वो मुझे दे लें, राणा साहब ने कहा है आसिम मुनीर साहब को ना दे। अब इस पर कमेटी इमरान खान से मिले बगैर क्या जवाब देती, हो सकता है इमरान खान ना देना चाहते हो राणा सनाउल्लाह को गालियां, हो सकता है वो आसिम मुनीर साहब को भी ना देते हो, और हो सकता है वो कहें कि नहीं मैं जेल में हूं मैंने उन्हीं को देनी है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये राणा साहब ने वहां पर भरपूर ऑफर की, भरपूर तरीके से कोशिश की कि इस मामले के ऊपर सेटल हो, मतलब राणा साहब बहुत ज्यादा बजिद थे कि मुझे गालियां दे दी जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग व्लॉग सुने और आप राणा साहब को गालियां देना शुरू कर दें, उन्होंने आपको नहीं कहा, उन सब ने यह कहा है कि इमरान खान बेशक मुझे गालियां दे लें, ये उन्होंने सहूलत इमरान खान साहब को दी है, आप सबको नहीं दी। अब ये ना हो कि सोशल मीडिया के जितने भी आप वॉलंटियर्स हैं, लोग बैठे हैं, आप खामखा राणा साहब को गालियां देना शुरू कर दें, ये सहूलत उन्होंने आपके लिए ऑफर नहीं की। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आपको बता दें कि मुजाकरात तो फेल हो गए जैसा मैंने आपको बताया, अब जो लॉन्ग मार्च है वो तो चल पड़ा, और सबसे पहले वजीरिस्तान से लोगों ने निकलना है, और वजीरिस्तान से जो लॉन्ग मार्च होगा वो पहुंचेगा लकी मरवत, और 1 बजे दोपहर को लकी मरवत में जो सुहेल खान अफरीदी हैं वो सबका इस्तकबाल करेंगे, और वहां से लॉन्ग मार्च जो है वो आगे बढ़ेगा। 6 अक्टूबर को पिशावर पहुंचेगा लॉन्ग मार्च, और 7 अक्टूबर को पिशावर रीजन में काफिला दिन गुजारने के बाद नौशहरा में रात को पड़ाव डालेगा। ये साउथ रीजन से पहले समझ लीजिए, 6 अक्टूबर को ये बड पीर से या बड़ा बेर से, मेरा ख्याल इसका नाम बड़ा बेर है, बड़ा बेर पहुंचेगा 6 अक्टूबर को, और पिशावर में 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे काफिला होगा। पिशावर में दिन गुजारने के बाद चारसदा पहुंच जाएगा ये 8 को, फिर चारसदा, नौशहरा, मरदान, महमंद और मालाकंड डिवीजन 8 अक्टूबर को काफिले में शामिल होंगे, और मजीद जो है प्लान वो फिर अगला 8 अक्टूबर के बाद क्या होगा, मतलब 9 को 10 को सवाबी और आगे इस्लामाबाद का क्या होगा वो जाहिर है शेयर करेंगे सुहेल खान अफरीदी आपके साथ भी और हम सबके साथ भी। लेकिन ये प्लान है कि 4 को यहां से शुरू होके, 6 को यहां से निकल के तो पिशावर, फिर 7 को वहां से निकल के तो नौशहरा की तरफ, और फिर आगे जो है रवान दवा ये होगा 8 तारीख तक का स्केड्यूल जो है वो लॉन्ग मार्च का जो है वो सामने आ गया है। अच्छा, इसके साथ साथ सुहेल खान अफरीदी ने वाजे तौर पर ये जो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हुकूमत के ऊपर, वहां की अवाम के ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया इस पर। उन्होंने कहा कि हमारे लोग हैं जो मारे जाते हैं, हम पर दहशतगर्दी मुसल्लत की गई है, कोलेटरल डैमेज में हमारे लोगों को शहीद कर दिया जाता है, और फिर आई एम सॉरी कह के आगे चल पड़ते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, हम आपको बार बार कहते हैं कि हम 100 दिनों के अंदर अमन कायम कर देंगे, और वो यही इसीलिए कहते हैं कि हम आप वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आप 14,000 छोटे और 22 बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं लेकिन अमन नहीं आ सका, हम इमरान खान की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, हम इलाके के जो बड़े हैं उन्हें शामिल करेंगे, बातचीत करेंगे, और फिर जो बातचीत से नहीं मानेगा उसके खिलाफ सारे मिलकर जंग करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि आप जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं असल में हम विक्टिम हैं, आपने दहशतगर्दी हम पर मुसल्लत कर रखी है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और कोई इमरजेंसी और गवर्नर राज का हमें बिल्कुल ताने ना दे या हमारे ऊपर बिल्कुल ऐसी कोई धमकी ना दे, हम इस चीज को भी देख लेंगे। बेहतर तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इन तमाम चीजों को, और उन्होंने इनकार कर दिया है फिलहाल अपनी डिमांड्स जो है उनसे गिव अप करने को। आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद बिलावल सरदारी मैदान में आ गए, जब पता चल गया कि मुजाकरात फेल हो रहे हैं तो बिलावल सरदारी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज या इमरजेंसी का जहन बना लिया था, मेरा ख्याल था कि आईनी एटम बम के इस्तेमाल से पहले सियासी हल ढूंढना चाहिए, دہشت گردی پر ساتھ نہ دیا تو مجبوراً ایمرجنسی یا گورنر راج لگانا پڑے گا. کیا کہا سنیے.
3: ہر دوسرا دن پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, اور اگر اس دہشت گردی کا ایشو کو, اس لا اینڈ آرڈر کا ایشو کو صوبائی حکومت اتنا اہمیت نہیں دیتے اور یہ الزام ان پہ آ سکتا ہے یا ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں, تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے ایمرجنسی یا گورنر کی طرف شاید جانا پڑے.
1: سن لیا آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی اور وہی الزام کے دہشت گردی جو ہے وہ پی ٹی آئی مل کے, مطلب پی ٹی آئی کو اور پشتونوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں, وہی جو قبائلیوں کو کہا تھا اس وقت. قبائلیوں کو جب کہہ رہے تھے تو ان کے نانا ملے ہوئے تھے فوج کے ساتھ, انفارچونیٹلی وہ جنرل ایوب خان کے پہلے, وہ اسی طرح سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کے کیبنٹ ممبر تھے, اس کے بعد یایا خان کے ساتھ بھی ایسے ہی تھے. تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے بنگالیوں کو ساتھ مل کے دہشت گرد کہا تھا. آج پھر بلاول زرداری جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر پشتونوں کو, پاکستان تحریک انصاف کو, ساروں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمارا ساتھ نہ دیا, مطلب یہ ساری جو ہماری غلط پالیسی ہے اس کو اون نہ کیا, تو پھر ہمیں مجبوراً وہاں پر ایمرجنسی یا گورنر راج لگانا پڑے گا. مطلب آج ایک بار پھر بلاول زرداری نے, جیسے بروٹ میجورٹی کا ان کا بیان تھا, جو ان کے غیر جمہوری قسم کے بیانات ہیں ان میں ایک اور اضافہ ہوا ہے, اور بلاول زرداری نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے. آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایمرجنسی لگا سکتے ہیں, ہم نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے. اچھا پھر ایک بنگالی شادی میں عبداللہ دیوانہ ایک صاحب ہیں, قمر الزمان قائرہ صاحب, میں تو انہیں معتبر ہی سمجھتا رہا ساری عمر, لیکن اب پتا چلا کہ اپنے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں نا, پٹواری, تھانہ کچہری, وہ نون لیگ والے ان کے کر دیتے ہیں. پیپلز پارٹی میں کوئی بندہ اتنے گندے بیانات نہیں دیتا جتنے قمر الزمان قائرہ دیتے ہیں. قمر الزمان قائرہ ہر طرح کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. 26 نومبر کو جب لوگوں کے سروں میں گولیاں ماری گئیں تو انہوں نے کہا کہ تشدد ریاست کا ہتھیار ہے, پوری دنیا میں ریاستیں استعمال کرتی ہیں تشدد کو, جسٹیفیکیشن دی. ابھی پھر کہتے ہیں عدالتوں کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ کون عمران خان کے کان دیکھے گا, کون آنکھ دیکھے گا, ماضی میں اس طرح کے فیصلوں سے ابہام پیدا ہوا. ان سے پوچھے کہ جب عدالتیں 50 روپے کے اسٹام پیپر پر لوگوں کو ملک سے باہر بھیجتی تھیں وہ ٹھیک تھا, عدالتیں رات کے وقت کھل جاتی تھیں, عدالتوں کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا تب بھی کھل کے کام شروع کر دیتی تھیں, تو اس کا کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ لیکن قمر الزمان قائرہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے آج کل یہ سارے گندے کام جو نون لیگ کے ہیں ان کو بےچارے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, صرف ریلیونس ڈھونڈتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ان کے چھوٹے موٹے کام ہو جائیں, اور ان کاموں کے عوض, جی ہاں, اپنے ان چھوٹے موٹے کاموں, فائدوں کے عوض جو ہیں وہ دبا کر سارا گند جو ہے وہ نون لیگ کا اپنے ذمہ لیتے ہیں, اپنے منہ پر ملتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, اور جنرلز کا بھی ظاہر ہے صرف نون لیگ کا نہیں. امید ہے آج حکومت اور اپوزیشن کی بیٹھک سے قوم کو کوئی خوشخبری ملے گی, اس ملک کے صورتحال سے نکلے گا. رات کور کمیٹی میں میں نے پارٹی قیادت کو یہی مشورہ دیا تھا کہ لانگ مارچ ایک صورت میں مؤخر ہو سکتا ہے, ہمیں حکومت سپریم کورٹ کے 18 اگست کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کی یقین دہانی کروائے. فیصلے کے مطابق عمران خان کو اسپتال منتقل کرے, اور میڈیکل بورڈ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمران خان کی بہن کو اور ان کے ذاتی معالج کو شامل کر لے. اب وہ کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ آج یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اس سے پہلے جو ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں انہوں نے بالکل ایسی بات نہیں کی تھی علی محمد نے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو, بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ زور کا جھٹکا دھیرے سے. جی ہاں, علی محمد خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں, ان کی پالیسی یہ ہے, زور کا جھٹکا دھیرے سے. وہ کہتے ہیں کہ جھٹکا جتنا بھی زور کا ہے سیاسی طور پہ, لیکن دھیرے سے لگنا چاہیے. وہ یہ کہتے رہے ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے کہ ہماری جو کمیٹی ہے اپوزیشن کی, ان کو زیادہ سٹبرن نہیں ہونا چاہیے.

खबर, हकूमत और पीटीआई के मुजाकरात से कोई बड़ी तब्दीली मुमकिन नहीं, ना ही होने जा रही है। तहरीक इंसाफ के मुअज्जज मेंबरान फेस सेविंग के लिए खान से एक अदद मुलाकात चाहते हैं। मुमकिन तौर पर हकूमत एक नाम निहाद मुलाकात का इंतजाम कर सकती है, जिसके बाद लॉन्ग मार्च को कैंसिल करने का जवाब फराहम किया जा सके। इस सारे अमल में सबसे अहम बात यह कि खान की रिहाई, हस्पताल मुंतकली जैसे दीगर मुतालबात के हवाले से कोई हौसला अफजा खबर नहीं आ रही। हकूमत मजीद ट्रक की बत्तियां दिखा रही है। सुहेल अफरीदी तहरीक इंसाफ हकूमत पर सख्त गिर इकदाम के काले बादल इस वक्त भी पूरी कुवत के साथ मंडला रहे हैं। आइए आगे क्या देखते हैं। वही लोग जो कहते थे कि जर्नल्स बहुत अच्छे हैं, मुदाकरात हो जाएंगे, मुदाकरात कीजिए, वो मुदाकरात जैसे ही शुरू हुए तो वो ये कह रहे हैं कि एक ढोंग है मुदाकरात, एक धोखा है और तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं दिया जाना और तहरीक इंसाफ को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आप गौर कर रहे हैं कि इन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं कि मुल्क के अंदर अमन हो या कहीं पर कोई मुदाकरात हो। जब हम इन लोगों को बताते हैं, अपनी पार्टी को या अपने लोगों को, कि ये मुजाकरात आपसे नहीं करना चाहते और ये मुजाकरात से आपको कभी कुछ नहीं देंगे, आप में से भी कई लोग मशवरे देते हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो सुलह हुदैबिया के ऊपर अमल कर लें। सुलह हुदैबिया में दूसरी तरफ काफर थे, उनके अंदर कोई ना कोई अरब माशरा था ना, तो अरब माशरे के अंदर जाहिर है उस वक्त कोई रख रखाव तो होगा ना, कोई अपनी बात के ऊपर खड़े होने की बात होगी, कोई शर्म हया होगी कि एक जिरगा या किसी जगह पर अगर कोई किसी चीज के ऊपर एग्री करेंगे, कोई मुआहदा करेंगे तो उस मुआहदे को पूरा करना होगा। वो भले काफिर थे लेकिन कोई उनके असूल तो होंगे ना, कोई लेवल तो होंगे ना जिससे नीचे नहीं गिरना। हमारे वाले जर्नल्स के तो कोई लेवल ही नहीं है, आप उनसे मुआहदा करेंगे अगले दिन वो तोड़ देंगे, आपके ऊपर झूठा बोहतान लगा के खुद मुआहदा तोड़ देंगे। इसलिए इमरान खान इस चीज को भांप गए हैं। समटाइम कुछ चीजें अनअवॉइडेबल होती हैं, मतलब आपके लिए उनमें से ग्रेसफुली निकलना बगैर कुर्बानी के मुश्किल होता है। इमरान खान इस चीज को समझ चुके हैं। ये इस कदर घटिया और मैं ये कहूंगा कि बदतरीन लोग हैं कि ये किसी सूरत कोई लिजिटिमेट किस्म की ऑफर इमरान खान को नहीं देना चाहते। ये हर तरह से इमरान खान को आप यही कहिए कि इनका दिल है कि इमरान खान जिंदा ही ना रहे खुदा ना खास्ता। तो जो शख्स आपकी जान का दुश्मन हो उसके साथ मुकाबला किया जाता है, मुजाकरात नहीं किए जाते। मुजाकरात किसी ऐसे बंदे के साथ किए जाते हैं जिसका कोई ऑनर हो, जिसके कोई अल्फाज हो, जिसके अंदर कोई दलेरी हो, इंटेग्रिटी हो। आपको याद नहीं फजल रहमान साहब ने कहा इन्होंने तो अपनी लाशें छोड़ दी थी, दुश्मन के इलाके से अपने लोगों की लाशें लेने से इनकारी हो गए थे। तो जब इंटेग्रिटी का यह लेवल हो कि कोई अपना गिर जाए तो उसकी लाश भी नहीं लेनी, तो फिर आप मुझे बताइए उनसे मुजाकरात बैठ के आपने क्या करने हैं।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैश। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमाती नौइयत के होंगे और इन सब अहम खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, कुछ छोटी छोटी मालूमाती खबरें सेहत के ताल्लुक से आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब लोग कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो उनको चाहिए कि वो वहाँ पर फ़ोटोज़ नहीं लें। अभी चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें लोग अब सड़क वो हाईवे पे जा रहे थे और खड़ी करके गाड़ियाँ अपनी वो वीडियो उसके बना रहे थे, तो पुलिस ने उसके

0: خلاف سخت ایکشن لیا اور تقریباً 16 ڈرائیور جنہوں نے وہاں پہ روک کے گاڑیاں اپنی ویڈیو وغیرہ بنائے ہیں اس حادثے کے، ان کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ کیا ہے۔ تو ہم بھی اپنے سامعین و ناظرین سے جو کوپن ہیگن یا ڈینمارک میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو تو پلیز کھڑے ہو کے وہاں پہ فوٹوز وغیرہ نہ بنائیں اور نہ ہی ویڈیو بنائیں۔ دوسری ایک اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ معلوماتی خبر کہ ہمارے جو بادشاہ سلامت ہیں کنگ فریڈرک، ان کی پہلی دفعہ ایک آفیشیل پورٹریٹ بنائی گئی ہے، اور وہ پورٹریٹ ایک نارمل پورٹریٹ نہیں ہے، لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی فوٹو میں ان کے جذبات بھی نظر آتے ہیں، ان کے اور ان کے چہرہ جو ہے بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اب یہ تو چلتا ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نیشنل میوزیم جو ہے انہوں نے بادشاہ سلامت کی عزت افزائی کی ہے اور یہ ایک پورٹریٹ جو ہے اس کی نمائش کی ہے۔ جب ہم رائل فیملی ہی کی بات کرتے ہیں تو ایک ڈینش رائل تھیٹر جو ہے اس میں ایک نئی تھیٹر ایگزیبیشن ہے، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عربی بیک گراؤنڈ کے شاعر اور تھے یحییٰ حسن، اور وہ پہلے تو انہوں نے اپنی کتاب میں اپنی شاعری میں غیر ملکیوں اور اپنی فیملی پہ بڑی کرٹیسم کیا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کو احساس ہوا کہ ڈینش معاشرہ جو ہے اس میں جو وہ غیر ملکیوں کے بارے میں جو خیالات ہیں اس پہ انہوں نے تنقید شروع کی، اور ساتھ جب یہ انہوں نے شروع کیا تو ساتھ ہی میں پورا میڈیا جو ہے ان کے خلاف ہو گیا، وہی میڈیا جو ان کی بڑی تعریفیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کی شاعری میں حقیقت جھلکتی ہے، لیکن جب انہوں نے ڈینمارک کی سوسائٹی کی حقیقت بنانا شروع کی تو اس کے خلاف میڈیا بھی ہو گیا، پولیٹیشین بھی ہو گئے۔ اچھا، اب جو ہے ان کی زندگی اور ان کی فیملی کے بارے میں ایک تھیٹر بنائی گئی ہے، اور ایک اچھی بات ہے کہ ایک شخص، ان کی فوتگی ہو گئی تھی بہت نوجوان عمر میں، تو ایک اچھی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو ڈینش معاشرہ پہلے بہت پسند کرتا تھا کیونکہ وہ اپنی فیملی اور غیر ملکیوں پہ تنقید کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے ڈینمارک پہ تنقید شروع کی تو پھر ان کے خلاف ہو گئے، اور اب ان کی زندگی اور ان کی فیملی کے بارے میں ایک تھیٹر کا جو ہے وہ شو بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور خبر ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ بہت سی لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کی جاتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے حکومت نے کافی تدابیر بھی کی ہیں، اور اب جو ہے حکومت نے ٹیلی فون کمپنیوں کو کہا ہے کہ اگر ایسے ٹیلی فون نمبر سے فون کیا جائے ڈینمارک میں کسی شخص کو تو اس کے بارے میں ہمیں فوراً بتایا جائے اور ہم اس کے خلاف ایک ایکشن لیں گے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہ جو نئے قوانین حکومت بنانا چاہتی ہے اس سے ٹیلی فون کمپنیوں پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی کال جو لوگوں کو تنگ کرتی ہے، پیسے مانگتے ہیں یا غلط افواہیں اڑاتے ہیں، ان کو جو ہے بلاک کرنا چاہیے۔ ساتھ میں ایک اور خبر بھی ہم دیتے چلیں، اور وہ ہے کہ آنے والے سالوں میں بنزین اور ڈیزل کی جو گاڑیاں ہیں ان کی سیل پہ بھی کافی بحث ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کی گاڑیاں جو ہیں وہ لوگ زیادہ خریدیں، تو ابھی آنے والے 20 سال میں یہ کہا جاتا ہے کہ بنزین کی گاڑیاں اور ڈیزل کی گاڑیاں جو ہیں ان کو آلموسٹ ختم کر دیا جائے گا، تو دیکھیں اس سے انوائرمنٹ پہ اچھا اثر پڑے گا، اور اس سے جو ہے لوگ جو فیملی والے ہیں ان کے بجٹ میں بھی کافی فرق پڑے گا۔ اب ہم بجلی کی بات کر رہے تھے، تو 1 اکتوبر سے جو ہے ڈینمارک میں بجلی کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، کیونکہ ہر بجلی فراہم کرنے والی کمپنی جو ہے اس نے اپنی قیمتیں اس لیے بڑھا دی ہیں کہ बिजली का जो करंट है उसको घरों तक पहुंचाने में जो है ज़्यादा खराज आते हैं। तो ये भी एक फैमिली के लिए अच्छी बात नहीं है कि बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि अगर आप एक फैमिली वाले हैं तो आपको चाहिए कि आप बिजली बचाएं, और उसके लिए काफ़ी इकदाम के उन्होंने की है, गाइडेंस दी है। वो ये है कि जब फैमिली वाले अपने वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो है मैक्सिमम तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि बार बार कपड़े धोने ना पड़े, और इको प्रोग्राम इस्तेमाल करें। उसके साथ जो है कपड़े जब खुश किए जाते हैं तो बजाय इसके कि उसको सेंट्रीफ्यूग किया जाए, उसके बाद खुश किया जाए मशीन के अंदर, आप उसको जो है अपनी टेरेस पे भी रख सकते हैं खुश करने के लिए, और वो कपड़े उससे खुश्क हो जाते हैं, और फिर आप इतनी ज़्यादा बिजली जो है वॉशिंग मशीन में खर्च नहीं होती। और एक और उन्होंने ये मशवरा दिया है कि आप घर में जब होते हैं तो उन कमरों में लाइट इस्तेमाल करें जो कि जहाँ पे आप बैठते हैं या किचन वगैरह में, बाकी सारे कमरों में जो है लाइटें इस्तेमाल ना करें। तो ये फैमिली वालों के लिए भी एक अच्छी बात है क्योंकि बिजली के बिल के साथ साथ आप ख़ुद भी अपनी बिजली के इस्तेमाल पे जो है वो किसी न किसी तरीके से काबू पा सकते हैं। एक और ख़बर जो अजीब भी है और लेकिन समझ में भी आती है, वो यह है कि इंटरनेट पे आपने देखा होगा गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई हैं पूरे यूरोप में, लेकिन अब पता चला है कि टिकटॉक पे जो फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं या जो डिमॉन्स्ट्रेशन की वीडियो लगाई जाती हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बनाई जाती हैं, ना कि वो डिमॉन्स्ट्रेशन हुई हैं। तो आप भी जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एआई की वजह से बनाई जाती हैं, ना कि वो सही तौर पे होते हैं। सेहत के हवाले से भी एक ख़बर है, वो ये है, और वो हम हमेशा बात करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो उम्र रसीदा हैं, कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, और जो लोग अपनी डाइट का ख्याल करते हैं उससे उनको उनके जो ज़हनी तवाज़न भी अच्छा रहता है। और ये कहा जाता है कि ज़हनी तवाज़न से आपका जिस्म जो है वो भी एक सेहतमंद रहता है। तो ये चंद एक ख़बरें थी जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, उम्मीद है कि आपको इन मालूमात का कोई फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं जनाब नसर मलिक साहब की तरफ। मलिक साहब आप मौजूद हैं टेलीफोन पे?
1: जी मैं हाज़िर हूँ।
0: अच्छा, तो डेनमार्क के बारे में बहुत सी खबरें हैं, तो आज हम उस तरफ चलें। सबसे पहले हमने एक दो हफ्ता पहले बात की थी, एक इंटरनेशनल सर्वे आया था बच्चों की तालीम के बारे में, और उसमें ये कहा गया था कि 15 साल के जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे डेनिश बच्चे हैं, उनकी पढ़ने की स्किल्स जो हैं वो बहुत ख़राब हो गई हैं। तो इस पे हमारे मोहतरम बर्तल हाडा साहब जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो ख़बर आई है इससे हमारे अथॉरिटीज़ को भी ख्याल करना चाहिए, और महकमा तालीम जो है उसको भी इसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। तो ये तो उन्होंने एक अच्छी बात की है।
1: जी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा शायद आपकी निगाह से नहीं गुजरा।
0: जी
1: उन्होंने ये भी कहा है कि इस सर्वे में जो तलबा ने रियाजी और डेनिश अबारत को तसलसल के साथ पढ़ने का रुझान है
0: अच्छा।
1: तो बहुत कमजोर है, और इस कमजोरी में तारकीन वतन बच्चे जो है वो ज्यादा शामिल है।
0: अच्छा, वो नहीं मैंने पढ़ा, शुक्रिया बताया।
1: गोया उन्होंने पूरी तहकीक को एक नुक्ता नजर से देखते हुए इसका सारा जिम्मा जो है इसमें जो कमजोर तबका है वो सिर्फ डेनिश नहीं बल्कि वो तारकीन वतन है, जो कि सरासर गलत है। इस सर्वे में ये नहीं कहा गया कि डेनिश बच्चे जो है खालिश डेनिश गोरे बच्चे कमजोर हैं या इनके साथ तारकीन वतन कमजोर है। इसमें दोनों तबकों को बराबर रखकर ये बताया गया है कि ये बच्चे स्कूलों में रियाजी में यानी हिसाब किताब में और डैनिश पढ़ने में बहुत कमजोर है। और इसके लिए तो आप बहुत बहस चलती रही है पिछले 2-3 हफ्ते से और अभी भी मामला ठंडा नहीं पड़ा। और कई हल्कों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वालदैन को तवज्जो देनी चाहिए। वालदैन कहते हैं कि स्कूल किस लिए हैं। बाद मौकफीन जो हैं वो ये कहते हैं कि ना स्कूलों में टीचरों के पास इतना वक्त है क्योंकि क्लासों में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं और ना वालदैन के पास कोई वक्त है क्योंकि वो घर आते ही आपने इंटरनेट पर बैठ जाते हैं, आपने मोबाइल पर बैठ जाते हैं, बच्चे से बातचीत नहीं करते। ये सिलसिला जो है चल रहा है। लेकिन हैरानपन बात यह है कि डेनमार्क जैसे मुल्क में जहाँ तालीम को बुनियादी हैसियत दी जाती है वहाँ अब ये सोच आ रहा है कि बच्चे न तो डैनिश आधारित बढ़ सकते हैं और न रियाजी में कुछ आगे बढ़ने की शक्ल रखते हैं।
0: अच्छा, इसी तालीम के तवस्सुत से एक और खबर मैं बात करना चाहता हूँ। अभी कुछ माहरीन ने हज़ारहा जमनाजियम के बच्चे जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या ठीक करते हैं या नहीं करते या करनी चाहिए, उस पर उन्होंने ये कहा है कि तालिब इल्म जो हैं जमनाजियम के वो जब एआई को इस्तेमाल करने हैं तो वो अपने आप को खुद धोखा देते हैं। तो अब ये पीज़ा के जो सर्वे के बाद ये दूसरा सर्वे आया है उससे क्या बात नहीं साबित होती कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बच्चे जो है उनमें दिमाग इस्तेमाल करने का रुझान कम हो गया है।
1: ये आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है
0: जी
1: कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मशीनी जहानत में जो सहूलतें मुहैया की हैं उसने खुद इंसान की अपनी कुदरती सलाहियतों को एक तरह से मफलूज करना शुरू कर दिया है
0: जी।
1: क्योंकि आसान रास्ते तलाश करके आपको क्या मुसीबत पड़ी है कि आप ये किताबें पढ़कर आपने किसी भी लिखें
0: जरूर
1: आप और ना एआई से पूछ लीजिए कि इस मौजू पर मुझे मुआद चाहिए, वो आपके सामने ढेर लगा दे। और इस तरह आपकी खुद अपनी तहकीक की जो सलाहियत है वो खत्म हो जाएगी। और ये चीज बहुत नुकसानदेह भी है और आसान इसलिए है, फायदेमंद इसलिए है कि आप इससे बच सकते हैं। लेकिन एक और चीज जो सबसे अहम है, एआई की फ्राहम करदा मालूमात जो है उन पर आंखें बंद करके यकीन कर लेना ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि वो अक्सर बेशतर ऐसी गलतियां करती है कि अगर वो आपके थीसिस में पाई जाए तो अब मुमकिन है आपका थीसिस ही सारा मनसूख हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसी के बारे में एक आपने पढ़ा होगा कि एक पाकिस्तानी जो स्कॉलर है बुशरा हनीफ है नाम शायद उनका, उन्होंने पीएचडी की जो थीसिस लिखी और वो रौरकेला यूनिवर्सिटी में उसको डिफेंड भी किया। अब ये पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो एआई की मदद से ली हैं और वो दूसरे माहरीन की जो एआई जो रेफरेंस देती है उसको इस्तेमाल किया है। तो इसमें भी एआई जो है वो उसने उसकी वजह से बुशरा हनीफ को भी अब मुसीबत पड़ गई है, उनकी पीएचडी को जो है वो ममनू करार दे दिया गया।
1: ये मामला बड़ा चल रहा है यहाँ डेनमार्क में और खास तौर पर रेडियो फिया जो है
0: जी
1: वो तो इस पर मुसलसल हर रोज तकरीबन 10-15 मिनट की बहस मुगा से करवा रहा है। एआई से इंफॉर्मेशन हासिल करना कोई जुर्म नहीं है जैसा मैंने पहले अर्ज किया
0: जी,
1: लेकिन उनका इस्तेमाल करते हुए आपको ये हवाला देना लाजमी है कि आपने ये मालूमात कहाँ से ली है। अब जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें उन्होंने उस खातून में ये नहीं लिखा कि ये मालूमात जो है ये कहाँ से हासिल की गई।
0: अच्छा,
1: यानी उनकी अपनी उन्होंने इनको अपनी तहकीक या अपनी इख्तरा जो है वो बनाने की कोशिश की है जो कि गलत। और ये मामला जो है ये जेर बहस है और यूनिवर्सिटी वाले जो है तो ये बुशरा हबीब जो है ये बहुत नामी गिरामी खातून
0: जी जी बिल्कुल
1: मुख्तलिफ बोर्ड में बैठी हुई है
0: जी जी जी।
1: और इन्होंने कई जगह पर डेनमार्क की नुमाइंदगी की है और अपनी काबिलियत के लिहाज से ये कहा जाता है कि वो एक सुनहरी मोती है
0: और वो जिस मौजू पे तहकीक किया बहुत ही अहम मौजू है, वो
1: बहुत ही अहम मौजू है। और चूंकि ये इतना अहम और खानदानों से ताल्लुक रखने वाली तहकीक थी, इसलिए इसको बहुत अहमियत दी जाती है। और उनकी तहकीक को डैनिश माहरीन जो है और यूरोपीय माहरीन जो है वो इस्तेमाल करते रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और हवाले के तौर पर वो उनकी तहकीकी मुकाला जो था उसको वो पेश करते रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल जो निकली है वो ये है कि मौसूफा ने खुद ये मकाला जो है ये अपनी उस तहकीक की बुनियाद पर नहीं लिखा जो ऐसे मकालाजात लिखने के लिए लाजमी होती है, और इसलिए इस पर अब सवाल ही नहीं उठाया जा रहा, बल्कि अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी पीएचडी की डिग्री जो है वो मनसूख की जाए।
0: एग्जैक्टली। अच्छा, हमने बुशरा हनीफ साहब का इंटरव्यू किया था रेडियो वतन पे, बहुत खूबसूरत बातें की उन्होंने, और वो जो जिस मौजू पे वो तहकीक कर रहे हैं उसके बारे में बताया। मेरी अभी उनसे चंद दिन पहले बात हुई थी इस चीज़ पीएचडी के बारे में, और उन्होंने वादा किया है कि वो एक दो हफ्ते के बाद जब वो मामला थोड़ा सा ठंडा होगा तो वो फिर आएंगी रेडियो पे और फिर वो तफसील से बताएंगी कि हुआ क्या है, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था बैलेंस के को, आपने पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि ये सारा मसला क्या है। और उस इंटरव्यू के को मौजू बना के बैलेंस के ने पुलिस से कहा कि ये पुलिस केस है कि इन्होंने ये जो फ्रॉड किया है। अब देखें, जब बुशरा आएंगी रेडियो पर तो फिर हम उनसे तफसील से इस पर बात करेंगे।
1: देखिए, जहाँ तक मेरा ज़ाती ताल्लुक है जी, मैं पिछले कई दिनों से ये महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ बुशरा हबीब के मतलब जो कुछ भी और जैसे भी हुआ है वो इतना बड़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि खुद बैलेंस ने अखबार ने ये राय दी है कि उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा हो सकता है।
0: एग्जैक्टली।
1: लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बुशरा हबीब को भी अपना मौका पेश करने का उतना ही मौका दिया जा रहा है जितना कि उनके खिलाफ इकदाम के लिए जोर दिया जा रहा है?
0: बिल्कुल नहीं। जी जी जी,
1: मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए। मालूम नहीं कि खुद बुशरा हबीब जो है वो कहाँ तक इस मामले की संजीदगी को लेकर मुतालबा कर रही हैं कि उन्हें भी अपना मौका पेश करने का मौका दिया जाए, या वो अपना मौका खामोश रहकर ही पेश करना चाहती हैं, ये अलग बात है। लेकिन मैं देखता हूँ वो खुद बहुत कम सामने आ रही है, बल्कि ना होने के बराबर सामने आ रही है।
0: दुरुस्त। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे एक थीसिस की, जिसमें जो है उनके थीसिस को ममनू करार देने के लिए यूनिवर्सिटी भी सोच रही है, अभी तक देखें क्या होता है। लेकिन एक और मसला जो है जिस पे मैं आपकी राय लूँगा वो ये है कि हकूमत ने, जब ये हकूमत बनी तो उन्होंने ये वादा किया था कि वो फैमिली जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी इतनी आमदनी नहीं है, तो उनको कुछ पैसे जो है वो अक्सर दिए जाए, उसके लिए काफ़ी रकम जो भी जो है रखी गई थी। अब ये पता चला है कि वो पैसे जो हैं ना उन फैमिली छोटे बच्चों की फैमिली की बजाय वो दूसरे लोगों को पैसे चले गए हैं जिनको उन पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ये अजीब सी बात है कि एक ऐसे जमहूरी मुल्क में जहाँ हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज है, ये कैसे हो सकता है कि जो पैसे जो एक ख़ास तबके के लिए मखसूस किए गए हैं वो किसी और तबके को चले गए हैं?
1: इस बात पर जितना दुख का इजहार किया जाए वो बहुत कम है कि वाकई ही डेनमार्क जैसे तरक्की याफ्ता और इतने सुलझे हुए और इतने मुनज़्ज़म मुल्क में इस तरह की हुकूमती गलतियाँ जो हैं वो हो जाती हैं।
0: जी जी,
1: जो हकदार नहीं है वो कैसे उनको मिल जाए और जो हकदार हैं वो बेचारे हाथ मत फिर जी,
0: जी, जी।
1: अब इस मामले की तहकीक तो हो रही है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा कि कई मरतबा ऐसा हो चुका है कि बात चीज़ें जो थी रियायती चीज़ें जो थी ये मामला में रिहायत दी जानी थी वो उन लोगों तक नहीं पहुँची जिन्हें इसका हक था। अब ये बच्चों वाले खानदानों के लिए जो पैसे मखसूस किए गए थे, अब जिन लोगों को ये मिल चुके हैं और वो हकदार नहीं हैं, मुमकिन है कि उनसे इन पैसों की वापसी का मुतालबा किया जाए
0: कमून से, क्योंकि वो पैसे कमून ने गलत जगहों पे दिए ना। जी जी
1: जी। और अगर अब ऐसा किया गया तो ऐन मुमकिन है कि वो ये कह दे कि हमारे पास तो पैसे रहे ही नहीं, हमने तो खर्च कर।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
1: और अगर इस तरह का मामला पेश आया तो ये एक बड़ा गंभीर मसला बन जाएगा, और वो हकदार जिनको इन पैसों की वाकई में जरूरत है वो बेचारे हाथ मलते रह जाएंगे।
0: अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो वो भी एक गरीब फैमिली जो हैं उनके हक में नहीं जाता। वो कहते हैं कि क्योंकि वो अब हुकूमत ये चाह रही है कि नौजवान बच्चे जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उनको SU बंद कर दिया जाए, और उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि एक ऐसी फैमिली जिसकी आमदनी तकरीबन 30,000 करोड़ टैक्स से पहले है, अगर उसके पास उनके बच्चे रह रहे हैं तो उनको जो है बच्चों को SU नहीं मिलना चाहिए। अब ये एक फैमिली के लिए 30,000 करोड़ टैक्स से पहले, ये तो कोई इतनी बड़ी रकम तो है नहीं है, तो ये बचत जो की जा रही है वो अजीब सी लगती है। तालीम पे स्टूडेंट की पे जो पैसा खर्च होता था अब वो उसको भी बंद करना चाहते हैं।
1: आपने बिल्कुल बजा कहा कि ये SU जो मिलती है तलबा को और वो तालब इलम वो बच्चे जो अपने वालदैन के साथ रहते हैं और SU वसूल करते हैं उनके लिए ये तजवीज पेश की गई है कि अगर उनके वालदैन कम व बेश 30,000 करोड़ महाना कमाते हैं बिफोर टैक्स तो उनको ये खत्म कर दी जाए। उस तलबा में बहुत शदीद किस्म की मजामत पाई जा रही है इस बीज के खिलाफ, और वालदैन और मौकफीन जो है वो भी ये बात कहते हैं कि इस तरह करने से जहाँ एक तरफ हुकूमत पैसे भी बचा रही है और दूसरी तरफ वो वालदैन की जिम्मेदारियों में इजाफा भी कर रही है, क्योंकि अगर वालदैन कम तनख्वाह पाते हैं महाना जैसा कि तजवीज किया गया है कि फिर उन बच्चों को घरों से दूसरी जगह मुंतकिल करने रिहायश मुहैया करने के लिए अगर इकदाम किए जाएंगे तो उसके अखराज कभी भी पूरे नहीं हो सकते। बच्चे ना तो मकान का किराया दे सकेंगे, ना कमरे का किराया दे सकेंगे, और ना उनके पास कोई महाना जेब खर्च होगा।
0: अच्छा, यहाँ पे
1: ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जिससे तलबा बेकार है और तलबा की वजह से वालदैन जो है वो ज्यादा परेशान है।
0: दुरुस्त। अच्छा, ये भी मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में टर्किश और दूसरे में जो गैर मुल्की फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे काफ़ी उम्र तक अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, तो और उनकी इतनी ज़्यादा उनकी फैमिलीज की इतनी बड़ी इनकम भी नहीं होती, तो 30,000 करोड़ एक फैमिली की इनकम तो बहुत कम है, तो क्या आप समझते हैं कि उससे गैर मुल्की फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा असर होगा उसका?
1: आपकी ये बात बहुत वजन रखती है। इसमें सबसे ज्यादा मुतासर तबका जो होगा वो तारकीन वतन होगा, तारकीन वतन पसमंजर रखने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है वो काम करता है। मैंने आपका भी मुशाहिदा होगा कि डेनमार्क में अगर कोई एक बच्चा किसी डेनिश घराने में 18 साल का होता है तो वो पहले ही से अपने लिए जगह तलाश कर रहा होता है कि मैं घर से कब अलग हो जाऊँ, और खुद वालदैन भी यही चाहते हैं कि वो अपनी जाती जिंदगी अपने मन से शुरू करे और जिस तरह वो रहना चाहता है उस तरह वो रहे, यानी कि वो अगर अलग रहे तो वो बड़ा अच्छा होगा। और इस तरह से अलग रहने वाले तलबा जो थे जो स्टूडेंट थे वो अपना गुजरोपात बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि साथ में वो कुछ छोटा मोटा फ्री टाइम जॉब ले लेते हैं और SU ले लेते हैं, मिल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे वालदैन बच्चों को अपने साथ रखना चाहते हैं। इस नजरिए के तहत कि एक तो उनकी घर की तरबियत अच्छी होगी और दूसरा खानदान इकट्ठा रहेगा। लेकिन अब अगर ये तजवीज मंजूर कर ली गई वज़ीर ख़ज़ाना तो ये बहुत नुकसान होगा, और ख़ासतौर पर इमीग्रेंट खानदान जो है, ताकि नगर खानदान जो है उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हम डेनमार्क की सियासत की तरफ थोड़ा सा आएँ तो आजकल डेनिश पीपल पार्टी की पतंग बहुत ऊंचा जा रही है और वो डेनमार्क की दूसरी बड़ी पार्टी बन गए हैं, और मॉर्टन मेसरश्मिट जो डेनिश पीपल पार्टी के सदर हैं वो तो ये कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म का ओहदा उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मॉन्स लुकेताफ जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत आला अहदेदार भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, कई मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये मॉर्टन मेसरश्मिट जो हैं वो उनकी ये जो उड़ान है वो अजीब सी बात है, और ये अपोजिशन पार्टी जो है उसकी उसके अंदर एक फूट पड़ गई है और हो सकता है कि उस फूट की वजह से मॉडर्न मेसा समिति जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म के उहदे के लिए कोशिश करें, तो उसको उन्होंने डेंजरस मूव करार दिया है। तो मोहन मुके लाफ जो कि ताफ़ की जो ये क्रिटिक तनकीद है ये हकीकत है अपनी जगह पे।
1: ये बिल्कुल एक तरह से हकीकत है। मोहन शुके ताफ के जो हैं वो एक बड़े मुंजे हुए और मुल्क के बड़े अहम और नामवर सियासतदान हैं।
0: जरूर
1: वो किसी बात पर कोई तजिया करते हैं तो उसको महज मामूली समझ कर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आप देखते हैं कि पिछले कई दिनों से बल्कि चंद एक महीने से दानिश वर्ग का पार्टी जो है उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। उसकी कई वजूहत हैं, लेकिन उसको सरबराह का ये कहना कि वो वजारत हुकूमत के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं
0: जी।
1: ये भी उनकी खाम ख्याली नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सियासत में किसी भी वक्त रुख जो है वो किसी भी तरह बदल सकता है
0: जी।
1: और आप देखते हैं कि जिस तरह इस वक्त यूरोप भर में इंतहा पसंद दाएं बाजू पार्टियों को अक्सरियत हासिल हो रही है, ये हमारे एक दिन के मुल्क में आप देख लें, जर्मनी में देख लें, बरतानिया में होने वाले मुजाहरे वो देख लें, स्वीडन में देख लें
0: जी।
1: तो उससे ये असर डेनमार्क में भी दिया जा रहा है कि डेनिश पीपल्स पार्टी जो है वो जो खुद है इस वक्त एक तरह से दूसरी बड़ी सियासी पार्टी है पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट के बाहर राय दें विरान की तादाद के लिहाज से। तो देखना यह है कि अब क्या वाकई डेनिश पीपल्स पार्टी के रहनुमा अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे।
0: लेकिन
1: वो ख्वाहिश पूरी करें, उनकी ख्वाहिश पूरी हो या ना हो, एक चीज है वो यहाँ है कि सियासी इकतदार में एक इतराज में जो तवाजन है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में होगा।
0: अच्छा, डेनिश पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जो मीडिया उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता। अभी उन्होंने अपनी हफ्ता पहले अपनी सालाना मीटिंग की थी, तो उसमें 26 सितंबर को तो उन्होंने कुछ मीटिंग का हिस्सा जो है उसको प्रेस और दूसरे मेंबर्स के लिए भी जो है वो ममनू का कर दिया, उसको कहा ये सीक्रेट डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर और कोई पार्टी ऐसे इस तरीके से कोई बात करती तो डेनिश मीडिया उनके पीछे पड़ जाता, लेकिन डेनिश पीपल पार्टी कहती है ये हमारा हक है कि हम अपनी पार्टी के सालाना जलसे का कौन सा हिस्सा जो है उसको खुफिया रखें और कुछ कौन सा हिस्सा जो है उसको पब्लिक कर दें। लेकिन डेनिश जर्नलिस्ट की जो यूनियन है वो ये कहती है कि ये जो डेनिश पीपल पार्टी करना चाहती है ठीक है, लेकिन इससे उसके बारे में लोगों के दिल में शुबा ज़रूर आएगा कि ये अपने कुछ हिस्से को खुफिया क्यों रखना चाहते हैं, क्या ऐसी बात है उसमें कि वो क्लोज डोर के पीछे हो सकती है।
1: ये बिल्कुल आपने बजा कहा, यही राय आवाम नाश में भी पाई जाती है कि आखिर वो कौन सी बात है जिसे पोशीदा रखने के लिए डेनिश पीपल्स पार्टी ने अपने सालाना इजलास में सहाफियों को अंदर दाखिल होने से रोक दिया था। और इस हरकत को बहुत मायूस समझा जा रहा है डेनिश मुआशरे में, जहाँ हर चीज प्रेस के सामने खुली रखी जाती है, और वो इसलिए भी आवाम नाश को मालूम हो कि कौन क्या कर रहा है, कौन सी सियासी पार्टी क्या अभियान रखती है और उनकी तकमील के लिए वो क्या जराए इख्तियार करती है। डेनिश पीपल्स पार्टी का ये इकदाम जो है ये इंतहाई मायूब करार दिया जा रहा है, और इस पर खुले बंदू तकरीर करते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर तमाम सियासी पार्टी ने यही रवैया इख्तियार किया तो राय दहिंदगान उनके मतलब कुछ जानने से किस तरह बाखबर हो सकेंगे, और जब वो उनके मुताबिक कुछ जान ही नहीं सकेंगे कि अंदर खाने क्या हो रहा है तो वो उनको क्यों वोट देंगे
0: जी। अच्छा, इन की जो मकबूलियत है अभी हुई है पिछले चंद महीनों में, उससे कहा जाता है कि ब्लू ब्लॉक जो है उसकी पार्टियों में भी काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि वाकई ऐसा ना हो कि मॉडर्न मेसा स्मिथ जो हैं वो इतने मजबूत हो जाएं कि हमें मजबूर होना पड़े कि हम उनको प्राइम मिनिस्टर के उहदे के लिए जो है वो मजबूर हो जाएं कि चुने उसके लिए। तो ये जो कंसर्न है ब्लू पार्टीज का, ये वाकई तशवीश जो है ये दुरुस्त है।
1: ये मैंने अभी आप सर्च किया कि ये वजीर आजम के अहदे तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ताकत का तोज़ुन जो है वो उनके हाथ में होगा। और इस बात को तो तमाम सियासी पार्टियां दायेंबाजी की वो बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही हैं कि नेशनल पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिस तरह से दावे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से अवाम ने खुले बदलिया तस्लीम किया जा रहा है कि इनकी मकबूलियत जो है वो कई वजूहत की वजह से, जिनमें खासतौर पर इनकी इमिग्रेशन पॉलिसियाँ हैं और मुसलमानों के मुताबिक मुतलिक एक मुनाफिकाना रवैया है, वो इसकी मकबूलियत में इजाफा कर रही है और इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि इसको काउंटर करने के लिए दाएं बाजू की दूसरी पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं, उनकी तरफ से सिर्फ बयानबाजी और ये खदशात को जाहिर करना कि शायद दैनिक पीपल्स पार्टी जो है वो वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार बन जाए, ये काफ़ी नहीं है। उनको सामने आना चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए और दैनिक पीपल्स पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसियों की गलतियाँ जो हैं उनको सामने लाना चाहिए।
0: अच्छा, उनके सारा जलसे में कई चीज़ों पे बहस हुई। एक बहस जो है वो मेरे ख्याल में तो अजीब सी है, आप क्या कहते हैं उसके बारे में। वहाँ पे उन्होंने अपने 1000 मेंबर जो आए हुए थे उनसे पूछा कि क्या आप फ्राइड पोर्क पसंद करेंगे, उसको अहमियत देंगे, या रीमाइग्रेशन गैर मुल्कियों को उनके घर वापस भेजना उसको पसंद करेंगे। तो अक्सरियत वालों ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों को रीमाइग्रेशन पे हम ज़्यादा जोर दें, उससे ये होगा कि डेनमार्क में जो है गैर मुल्कियों की तादाद में बहुत कमी होगी। तो एक अजीब सा एक कंसर्न है कि एक तरफ फ्राइड पोर्क और साथ में दूसरी तरफ रीमाइग्रेशन का मसला उन्होंने इकट्ठा कर दिया। बिल्कुल,
1: ये
0: मुख्य
1: हरबे जो है और इस तरह की जो चारबाजियाँ हैं ये साबित करती हैं कि ये लोग कितने संजीदा हैं ऐसे मामलात में। अगर गैर मुल्कियों को वापसी भेजना है तो आप साथ से उन्हें पूछते हैं उनसे कि इसके मुतालिक पार्टी के अरकान की क्या राय है
0: जी,
1: उसके साथ उनको सूर के गोश्त की पेशकश कर देना कि ये खाना पसंद करोगे या इनको भेजना पसंद करोगे जी। तो गैर मुल्की तो अक्सरियत जो मुसलमान है वो तो ये चीजें नहीं खाते हैं। तो उससे डरना को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि अजाफी खाना मिल जाता है जो इनको जाया करना पड़ता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने वाकई ये पॉलिसी अपनानी है तो आप सीधा सा सवाल पूछिए, हमें मालूम है कि उसका जवाब क्या होगा, हम ये नहीं जानते
0: जी,
1: लेकिन ऐसे सवाल पूछने की वजह क्या है, जबकि एक तरफ आप अपने अफराधी कुवत को कम करने के लिए पेंशनर जो हैं उनके लिए दरवाजे खोल रहे हैं कि वो दोबारा काम तलाश करें और काम पर जाएं, क्योंकि अफराधी के खास शोबों में और कई मुख्तलिफ शोबों में अफराधी कुवत की कमी है। आप गैर मुल्कियों को ये बताए बगैर कि यहाँ आकर उनके साथ क्या होता है और उनको किन मुश्किलात और मसाइल से गुजरना पड़ता है, आप उनके लिए दरवाजे खोले हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तानी से देख लीजिए कितने लोग यहाँ आए हुए हैं, अल्लाह ताला जानता है जी, और कई कई अभी आ रहे हैं, उनके पास ऐसे हैं जो आप आते ही अपने बीवी बच्चों को भी साथ बना लेते हैं। उनको ये मालूम नहीं होता कि यहाँ पर आने के फौरन बाद आपको उन्होंने जॉब की इज्जत तो दे दी
0: जी,
1: रहने का लिए रिहायश का इजाजतनामा भी दे दिया 3 साल के लिए या 2 साल के लिए, मालूम नहीं मुझे, लेकिन आपको ये नहीं बताया था कि यहाँ आकर आपको क्या चीजें जो है वो पूरी करनी होगी फिर आप काम कर सकेंगे
0: जी।
1: तो आज आला तारीम याफ्ता जो है वो पिज्जा सप्लाई कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं,
0: दुरुस्त।
1: तो जब ये काम करने में कोई हर्ज नहीं है, आप सब इन्हीं कामों से आगे बढ़े हुए
0: जी।
1: लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको इतनी जरूरत है तो फिर आप हर रोज तारकीन वतन को या तारकीन वतन के किसी मखसूस ग्रोह को मुल्क से मदद किया मुल्क से निकाल दिया जाए, ये बयानात देने और ये बकवास करने की क्या जरूरत।
0: अच्छा, बयानात के तवस्त से एक बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि पिछले काफ़ी सालों से हमारी हुकूमत जो है ख़ासतौर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने डेनिशनेस जो है उस पर बहुत ज़ोर दिया है कि तुम्हें डेनिश जो है होना चाहिए और तुम्हारे ख्याल जो हैं वो डेनमार्क के लोगों जैसी होने चाहिए। अब उस पर हुकूमत के अंदर ही एक काफ़ी बहस चल पड़ी है और उससे एक ये जो सवाल है डेनिशनेस का, ये एक बहुत अनकंफर्टेबल हो गया काफ़ी लोगों के लिए। और क्योंकि ख़ास तौर पे नौजवान बच्चे जो है जिनके वालदैन महाजरीन के तौर पे आए, अब वो कहा ये जाता है कि डेनिशनेस की जो डेफिनेशन है कि ये है क्या, इस पे भी पार्लियामेंट में काफ़ी बहस हो रही है। लेकिन इसमें डेनिश पीपल पार्टी ने एक शोशा छोड़ दिया है। मॉडर्न मेसासमिस कहते हैं कि ये बच्चे जो यहाँ पे पैदा हुए हैं वो डेनिश हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बैकग्राउंड क्या है। हालांकि डेनिश पीपल पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि आप जो है अगर गैर मुल्की बैकग्राउंड के हैं तो आप डेनिश नहीं हैं। तो ये जो चेंज आया है, तो क्या ये उनकी तरफ से एक स्मार्ट मूव है अपनी शोहरत को ज़्यादा करने के लिए, या इसमें भी कोई ना कोई वो उन्होंने रंग डाला हुआ है?
1: आपकी इस बात में काफ़ी वजन है कि वो फिर वक्त मौजूद को समेटते हुए ताकि ये ज्यादा ना खुले ये कहने पर इतफा कर रहे हैं कि यहाँ पैदा होने वाले गैर मुल्की बच्चे जो हैं, गैर मुल्की खर्च मंजर को रखने वाले बच्चे जो हैं वो डेनिश हैं। लेकिन असल में अब हम उनकी नीयत तो नहीं समझते, उनके हम दिल की आवाज़ तो नहीं सुन सकते, लेकिन मुद्दा यही है कि वो ये तमाशा देख रहे हैं कि दूसरी सियासी पार्टियाँ जो हैं वो इस पर खोल कर बोल रहे हैं। और जब दूसरी पार्टियों का मौक़ सामने आ जाएगा तो फिर वो देखें क्या धमाका करते हैं। ये उनके इस इकदाम की, इस खामोशी की या इस मौजू पर अभी फिलहाल खुल कर ना बोलने की पोजिशन जो है, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितनी आपने बिल्कुल बात शुरू में दुरुस्त कही कि डेनिश पीपल्स पार्टी न सिर्फ यहाँ पहली नस्ल के गैर मुल्कियों को जिनके पास अब डेनिश शहरियत है उन्हें डेनिश नहीं समझती, उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाती है, मफरूजों की बुनियाद पर उनकी तस्दीक करती है। और दूसरी और तीसरी नस्ल के वो गैर मुल्की जो इस डेनिश मुआशरे में बिल्कुल घुल मिल चुके हुए हैं, सिवाय उनकी रंगत और उनके बालों की रंगत जो है वो अलग अलग होगी। यही डेनिश पीपल्स पार्टी है जो किसी जमाने में ये कहती थी, और फ्रिमक्रिस्ट पार्टी जो इसकी माँ थी उनका एक वाकफ होता था कि एक डेनिश माँ या बाप और एक गैर मुल्की माँ या बाप से पैदा होने वाला बच्चा भी डेनिश नहीं हो सकता।
0: Exactly.
1: तो जब ये सूरत हाल है इनकी, इनका लिटरेचर पढ़े, इनके जो मंशूर हैं वो पढ़े, और ख़ास तौर पर इमिग्रेशन और डेनिश शहरियत के मतलब इनकी आराए पड़े, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सवाए अपने एक चमड़ी वालों के किसी को डेनिश नहीं समझते।
0: तो इसका मकसद ये है कि वो सियासत की वजह से इस बयान को उन्होंने दिया, ना कि उनकी राय तब्दील हुई है।
1: बिल्कुल, ये एक सियासी अस्कंडा है जिसे ये इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें उनकी बात में कोई
0: वजन
1: नहीं।
0: अच्छा, एक और मौजू पे मैं आपकी राय लूँगा, वो ये है, जैसे आपको पता है कि सिकंदर सदीक साहब जो हैं वो अब सिटी हॉल में नहीं हैं, लेकिन अभी उन्होंने ये कहा है कि अब हम आने वाले इंतखाब की कम्पेन के लिए कोशिश करेंगे और दोबारा कोपेनहेगन सिटी काउंसिल का इलेक्शन लड़ेंगे अपनी ग्रीन फ्री ग्रीन पार्टी के तौर पर। लेकिन अजीब सी बात यह है कि उनके जो रिप्लेसमेंट हैं वो आशिम आगा नदीम जो है, जो अब कोपेनहेगन कमून में आए हैं, उन पे भी दूसरे पार्टियाँ जो खास तौर पर डेनिश पीपल पार्टी ने ये कहा है कि ये हमास को पसंद करते हैं, ये यहूदियों से नफरत करते हैं और ये टेररिज्म की सपोर्ट करते हैं। हालांकि कोई उन्होंने ऐसी कभी बात की नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने पहली तकरीर में बड़ी समझी हुई बातें की हैं। तो अब सिकंदर सदीक के साथ साथ अब उनके दूसरे जो साथी हैं उनके ऊपर भी जो है अभी एक प्रोपगंडा शुरू हो गया है।
1: देखिए, ये एक बड़ी गंभीर सी सूरत हाल है। सिकंदर सदीक साहब जो हैं उन्होंने जो कुछ किया वो उसके खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके बाद सियासी पॉलिसियाँ जो हैं जिनका वो भरमला इजहार करते हैं वो किसी से खारिज नहीं है
0: जी।
1: वो साफ कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं
0: जी।
1: अगर तो वो उनकी जाति साजिशियाँ हैं, जाति की आधार है, तो उन्हें अपनी पार्टी की सियासत जो है उसको अलग करना चाहिए। ऐसे नारों के लिए और ऐसी साजिशों के लिए पार्टी प्लेटफॉर्म जो है जब वो इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि पार्टी का हर रुकन जो है वो पार्टी की पॉलिसी से मुत्तफिक है। और जब ये सूरत हाल हो तो आगर नदीम साहब जो है वो भी अपने आप को इससे मुस्तस्ना करार नहीं दे सकते। वो या तो वो खुलकर इन चीजों की मजम्मत करें और इससे अपने आप को अलग होना साबित करें, जो कर तनकीद जिनकी वजह से उनको तनकीद का निशान बनाया जा रहा है। बसूरत दिगर ये समझना किसी तरह से जायज होगा कि ये उनकी सियासी पार्टी की पॉलिसियां हैं।
0: ये बात आपकी बिल्कुल जी जी,
1: सियासी पार्टी की ये पॉलिसियां हैं तो फिर वोटर जो है उनको इतराज करने का हक हासिल है। और ये दोनों जो है हमारे साहबान ये जवाब देने के पाबंद है।
0: लेकिन एक अजीब सी बात है कि आशिम आगा नदीम साहब जब अपनी सीट पे आके बैठे तो उन्होंने जब अपना सीट मेज़ का वो खोला ड्रॉअर तो उसमें उन्हें एक कार्ड मिला जिस पे ये सारी बातें जो मैंने अभी बात की है कि तुम यहूदियों को पसंद नहीं करते, तुम हमास को पसंद करते हो, ये तो ऐसी हरकतें कोपेनहेगन कमून के सिटी काउंसिल के मेंबरान कर रहे हैं तो ये भी जो है वो एक नए मेंबर के लिए एक परेशान कुन बात तो है।
1: ये एक इंतहाई अहमकाना और मुतस्बाना इकदाम था
0: जी
1: कि अभी वो आकर अपने डेस्क पर बैठे हैं और उनकी दराज से जो चीज़ बरामद हुई है जिस पर इस तरह की बातें लिखी हुई है। इसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि कोपेनहेगन बल्दिया और इसके मेरे आला जो है वो इस मुआवजे की तहकीक करवाएं कि ये आरामजदगी किसने की। नंबर एक, और अगर वो खुद नहीं करवा सकते तो आवाम नदीम को चाहिए कि वो पुलिस के यहाँ इस मामले को पेश करें कि मुझे इस तरह की ये चीजें क्यों पेश की जाती हैं यहाँ पर। और इसके लिए बाकायदा उनको मेरे ख्याल में फौजदारी मुकदमा शुरू करने की इजाज़त मिल सकती है। और तो आपने ये भी तो देखा कि जब वो अपने सिटी हॉल में दाखिल हुए अपने सेशन के लिए तो रस्म के मुताबिक रवायत के मुताबिक जो कि डेनमार्क की एक बड़ी पसंदीदा इकदार में शामिल है किसी ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल नहीं किया।
0: बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हाँ।
1: ये इंतहाई बदयानती मुनाफ़त और मैं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, मेरे पास बहुत अल्फाज हैं यहाँ।
0: बच्चगाना हरकतें हैं, बिल्कुल
1: बच्चगाना नहीं, बच्चगाने में भी मजा होता है और की जा सकती है
0: जी।
1: ये अहमकाना और बदतरीन अहमकाना हरकत थी।
0: दुरुस्त
1: जी, आगर नदीम में क्या कमी थी, वो सारे मेंबर वहाँ पर शामिल हो रहे हैं और एक मेंबर की इज्जत और एहतराम के लिए जो तरीका वाजिबुल अमल है उस पर अमल किया जाना चाहिए। इससे वहाँ पर बैठे हुए वो सभी लोग जो जो जो जिन्होंने खड़े होकर तहजीब बजा नहीं लाई मैं उनकी बड़े छत आज में मजम्मत करता हूँ।
0: तो क्या इससे ये बात साबित नहीं होती कि एक मुआशरे में जो बहस मुबासा हो रहा होता है वो सियासतदानों पे भी उसका असर होता है और वो भी उससे जो है उसका इजहार करते हैं किसी न किसी तरीके से।
1: मैं आपकी इस बात को इस तरह से कहूँगा कि ये सियासतदान ही हैं जो इस तरह के हालात पैदा करते हैं कि अवामंदाज जो हैं वो उनकी बोली बोलना शुरू करते हैं।
0: जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक दो इंटरनेशनल खबरें हैं उस पर मैं आपकी राय लूँगा। सबसे पहले तो यह है कि आपने देखा होगा पढ़ा होगा कि रशिया के ऊपर हमेशा ये कहा जाता है, ख़ासतौर पे हमारी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि बस आज नहीं तो कल रूस लैंड हम पे हमला कर देगा, हमें तैयारी करनी चाहिए, 3 दिन का पानी वगैरह खाना वगैरह रखना चाहिए ये सब। प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उन्होंने वाज़ह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि हमारा यूरोप से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और हम क्यों जो है यूरोप पे हमला करेंगे, इसमें कोई तुक नहीं बनती। तो जब रशिया के सदर ये इतनी खुल के कह रहे हैं तो हमारे सियासतदान यूरोप में क्यों उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं।
1: देखिए, ये मामला इतना आसान नहीं है कि सदर पुतिन के बयान पर यकीन कर लिया जाए। और ये ऐसा भी नहीं है कि उनके बयान पर यकीन क्यों ना किया जाए।
0: जी जी।
1: लेकिन यूरोप में जिस तरह से जंगी तैयारियां हो रही हैं और खासतौर पर आपने देखा जैसा कि आपने खुद जिक्र किया डेनमार्क में जिस तरह से पेज भी हफाजती इकदाम उठाए जा रहे हैं
0: जी,
1: इससे जरूर नजर आता है कि हम एक तरह से गैर ईरानिया जंगी सूरत हाल में मुबतला है। अभी आप देख रहे हैं कि होमगार्ड जो हैं वो मुख्य शहरों में तरबियत हासिल कर रहे हैं कि किस तरह हफाजत की जाएगी
0: जी,
1: और ये चीजें जो है अवाम अन्नास को मुस्तरब करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सदर पुतिन का ये कहना कि मेरा यूरोप पर किसी जगह हमला करने का कोई इरादा नहीं है और यूरोप को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, इनको सदर पुतिन के इन बयान की रोशनी में ये आजमाना चाहिए, ये देखना चाहिए। अब देखिए, वो हमारे यहाँ एक मिसाल है ना कि किसी ने किसी को मारा तो उसने पूछा कि तुमने मुझे क्यों मारा, कहा कि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को मारा था, उसने कहा फलां फलां, वो किस्सा बढ़ता गया दादा तक पहुंच गया। अब सूरत हाल यहाँ पर ये है कि डेनमार्क जो है वो ईरानिया तौर पर जब यूक्रेन की हमायत कर रहा है, यूक्रेन को अपना असला बनाने के लिए डेनमार्क में बड़ा हाथ दे रहा है, यानी यूक्रेनी डेनमार्क में जेर तहफ असला बना के वापस यूक्रेन में जाकर उसको मार सकते हैं इसराइल को, रूस को
0: जी जी।
1: जब ये सूरत हाल है तो फिर आप जब ये कहते हैं कि हमने आप पर पहले इसलिए हमला किया कि हमें आपसे खतरा था, तो अगर रूस कोई कार्रवाई करता है तो वो उन मुकाम कार्रवाई करेगा जिससे उनको खतरा है, तो आप ऐसे मुकाम पैदा ही क्यों करते हैं?
0: बिल्कुल। अच्छा नज़र साहब, या सोवियत यूनियन जब बहुत बड़ी ताकत थी और उन्होंने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी मदद के बगैर जो यूरोपियन ताकत और अमेरिकन ताकतें वो कभी ना जीत सकती जर्मनी के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त भी इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद सोवियत यूनियन ने बर्लिन आके रुक गए, वो उन्होंने उसके बाद यूरोप की तरफ आगे नहीं बढ़े, तो सोवियत यूनियन ने तो कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं की है कि किसी यूरोपियन मुल्क पे हमला कर दिया जाए। तो क्या ये बातें आवाम को पता नहीं है यूरोप में कि रशिया जो है वो इतनी बड़ी ताकत भी नहीं रहा और वो कभी भी यूरोप पे हमला नहीं करेगा? मुझे तो इस बात के तुक नहीं समझ आती कि रशिया यूरोप पे हमला क्यों करेगा।
1: बिल्कुल, काश कि मैं समझ सकता, फिर मैं आपको बता देता कि वो क्यों हमला करेगा।
0: जी
1: वो इस पोजीशन में अब नहीं है कि नेटो वाले तो आपको देखते हैं ना, क्या बार बार वो ऐलान करते हैं कि एक मुल्क पर अगर कुछ भी हुआ कि वो पूरे नेटो पर होगा। बिल्कुल उसी तरह, जैसे आपको याद है 9/11 के बाद सबने कहा कि ये अमरीका पर हमला नहीं है, हम पर हमला है।
0: जी, जी,
1: तो ये मच्छर मक्खियाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं उस वक्त जब इन पर पूजा जाते हैं, तो इसलिए रूस जो है वो इंतहाई मोहताज है और वो संजीदा है इस मामले में कि मसला यूक्रेन तक भी मौजूद रहे और वहीं पर शिकस्त फतह का फैसला हो।
0: जी जी बिल्कुल। अच्छा नेतन्याहू साहब की स्पीच तो आपने सुनी होगी यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने क्या बड़के मारी और कितने झूठ बोले उन्होंने वहाँ पे खड़े होके, और वहाँ पे खड़े होके उन्होंने हाथ में एक वो पेजर पकड़ा हुआ था, जो किसी पुराने ज़माने में जब टेलीफोन नहीं थे तो वो एक पेजर पे आपको मैसेज आता था कि इस टेलीफोन नंबर पे आप फ़ोन करें, और बड़े फ़ख्र से कहा कि लोगों को याद होना चाहिए कि हमने लेबनान में इस पेजर के मदद से क्या किया, और उस पर भी काफ़ी बहस भी चल रही है, और इसराइल को जो पीयू का जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें ये बताया गया है कि अमेरिकन 61% अमेरिकन जो है अब वो इसराइल को एक पराया स्टेट मानते हैं। तो इतनी बड़ी चेंजेस अमेरिका में जो आई हैं वो इसराइल ने जो कुछ हरकतें की हैं गाज़ा में और जो फलस्तीन में अभी वेस्ट बैंक में जो वो कर रहा है, ऐसा ऐसा सेटलर जो हैं वो कई फलस्तीनी इलाके पे कब्ज़ा कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये नेतन्याहू की जो अभी इस महीने इलेक्शन भी होगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें सिर्फ नेतन्याहू नहीं है बल्कि पूरे इसराइली हुकूमत और इसराइली सियासतदान भी इस चीज़ में शामिल है, और ये इसराइल के भी दुरुस्त नहीं है और जूश लोगों के लिए भी ये दुरुस्त नहीं है जो कुछ वहाँ हो रहा है?
1: आपने बिल्कुल बजा कहा, लेकिन वहाँ पर जो बुनियाद प्रश्न कट्टर सुन्नी और जो गाजा में और दरियाए के मगरबी किनारे में जो कुछ वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं
0: जी,
1: उसको पेश नज़र रखते हुए इसराइल का एक तबका ऐसा है जो इन चीज़ों के खिलाफ है, और ये मानना पड़ेगा।
0: जी,
1: आपको पता कि इसराइल के ही एक वज़ीर आज़म को गोली का निशाना इसलिए बनाया गया कि वो फिलिस्तीनियों के लिए कुछ नरम दिल रखते थे
0: जी,
1: और उनके साथ अमन का मुआवजा करने के लिए तैयार हो रहे थे। मौजूदा वज़ीर आज़म जो है इसराइल के, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है और एक ही सियासी एजेंडा है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से अलग कर दिया जाए और उनको उसी तरह बढ़ा दिया जाए जैसे तब इसराइल के क़याम के बाद और यरूशलम पर कब्जे के बाद उन्होंने ये काम किया। और इसके वो उन लोगों की दरपर्दा ही नहीं, खुद आम हमायत कर रहे हैं, और अगर कोई इस्तेमाली इकदाम लेते हैं तो वो महज दिखावे के लिए है। आपने देखा कि सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर के दौरान कतन कोई जिक्र नहीं किया,
0: हालांकि
1: उन्हें दुनिया भर में बगावतें और शोरशें और एक तरह की चढ़ाई जो है वो नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन के मामले पर कुछ नहीं कहा। और लेकिन नेतन्याहू ने जो काम वहां पर किया उससे आप एक अंदाजा लगा लें कि उनका वो टेलीफोन दिखाना और कहना कि इससे उन्होंने क्या काम लिया था, ये टेक्निक जो है ये वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी जो है उस पर इसराइल का कब्जा होना और उसे सरेआम जो है वो इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है।
0: बिल्कुल दुरुस्त, उस पर काफ़ी दूसरे ممالک کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بھی اس پہ کافی کرٹیسزم کیا ہے، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب کھل کے بات یہ سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امن نہیں چاہتا اور وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ قائم ہے۔ نصر صاحب، آپ کے خیالات کا، آپ کے تجزیے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا وقت ابھی ختم ہو گیا ہے اور اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔
1: وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کا اللہ وقت ختم نہ کرے۔
0: نہیں نہیں، وہ وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا،
1: تو آ جائیں آپ کی گلیاں کلائیں گے۔
0: تھینک یو ویری مچ رضا بھائی، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام باشی کے سنگ، جس میں ہمارے ساتھ نصر ملک صاحب موجود تھے۔ تو اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، ڈنمارک پائندہ باد۔
2: آپ اور ہم وطن ایک سنگ، نئے رنگ، نئی امنگ۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84، ای میل ریڈیو سنیپلائے۔

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामेईन और नाज़रीन, आपको खुश आमदीद। बाबे फूके दियाँ फूका, बाबा फूका उर्फ डैनिश स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। ये तलक रखते हैं चिट्टेपुरे से। जिन नाज़रीन को चिट्टापुरा नहीं पता, तो वो चिट्टापुरा डेनमार्क में ढूंढें कि वो कहाँ पे है चिट्टापुरा। तो सामेईन और नाज़रीन, आपका मेज़बान मैं रज़ा मुस्तफ़ा, और मेरे साथ स्टूडियो में बाबा फूका तशरीफ़ रखते हैं। आज का शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका हफ्ता जो है अच्छा गुजरा होगा, और इंशाल्लाह आने वाला हफ्ता जो है उससे भी अच्छा गुजरेगा, क्योंकि हुण बाबा फूका आ गया। बाबा फूके ने ऐसियां फूका मारनियां ने, ते अज बाबे फूके नूं फूका मरवा मरवा के ना मैं थका देना अज।
2: अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह
1: जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा फूका।
2: वालेकुम सलाम।

0: ناظرین سامعین، ہمارے چولوں سے زخمی ہونے والے لواحقین اور اینڈ میں شیرین مرسلین، سب کو سلام.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: کیا حال؟ ٹھیک ہیں آپ؟
1: بابا پھوکا، اللہ کا شکر ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟
0: شکر اللہ، اللہ کا کرم، الحمدللہ. الحمدللہ.
1: کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے؟
0: کاروبار زبردست، نو کمپلینس، نو ڈیمانڈس.
1: کوئی ترقیاں شرقیاں ہوئی ہیں؟
0: ترقیاں لگیاں، بہت ترقی ہوئی.
1: اے بابا پھوکا، میں نے سنا ہے کہ آپ گوروں کے ملک سے بھی ہو گئے ہیں.
0: ہاں جی، میں ولایت گیا تھا. صحیح بات ہے، ادھر بھی جا کے نظر آ، دو تین بندے سیٹ کرنے تھے.
1: اچھا،
0: اترا پھوکا مارنی سن، لیکن وہ اینڈ وچ مینوں پھوکا مار گئی، میں واپس آ گیا.
1: پھوکے مار کے جہاز پہ بٹھا کے گھر بھیج دیے؟
0: ہاں جی بھائی، ادھر ہمارے سے بھی بڑے پیر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دراصل وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہاں جو ہے نا چولے مارنے والی چار جنریشن ہمارے سے آگے ہیں، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں.
1: تہاڈی جگہ نہیں بنی؟
0: نہیں، انہوں نے کہا تھے اگے آلریڈی بہت چول نے، ایک اور دی کمی نہیں، جاؤ واپس.
1: ایک اور کی جگہ نہیں ہے؟
0: نوپ، واپس.
1: لیکن بابا پھوکا، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ واپس آ گئے
0: ہیں، کیونکہ
1: ابھی یہاں نا ڈنمارک میں
0: کم چول
1: بابا پھوکا ضرورت ہے ہمیں.
0: ابھی ہے
1: تو انشاءاللہ جیسے جیسے جو ہے وہ کاروبار بڑھے گا،
0: جیسے جیسے چبل بڑھیں گے ہماری جگہ کم ہو جائے گی. یہ بات ہے نا،
1: نہیں ہم کاروبار بڑھائیں گے نا،
0: تو
1: آئیڈیا دے رہے ہیں.
0: چلو ہم اپنی چبل کمیونٹی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا کوئی بندے بٹھاتے ہیں، چبل پینل بناتے ہیں.
1: بابا پھوکا جی.
0: جی سر،
1: دو ہفتے پہلے ہم نے شو کیا تھا.
0: بالکل کیا تھا،
1: اور لوگوں کا کافی فیڈ بیک جو ہے وہ آنا شروع ہوا ہے.
0: چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے،
1: اور ان تمام لوگوں کا جو ہے شکریہ، جو
0: بہت بہت
1: ہمیں اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا، اپنی رائے سے بھی جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں، اپنا مشورے بھی دیتے ہیں، اور سراہتے بھی ہیں. زیادہ لوگ جو ہیں وہ سراہنے والوں میں سے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بابے پھوکے دیا پھوکا جو ہے اس کی اشد ضرورت تھی، کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی روزمرہ کی دنوں میں جو ہے نا ڈپریس ہو جاتے ہیں.
0: بالکل ہو جاتے ہیں.
1: تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا ماحول ہو جس میں ہم بیٹھ کے ہنسا مذاق کر لیں،
0: ہونا چاہیے. شکریہ جی ان لوگوں کا.
1: تو ان تمام سامعین ناظرین کا جو ہے وہ شکریہ، خواہ وہ ڈنمارک میں رہتے ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں.
0: شکریہ.
1: یہ تو ہو گیا بابا پھوکا تھوڑا سا لوگوں کا، کہ لوگ جو ہے وہ رسپانس کیسے کرتے ہیں.
0: الحمدللہ.
1: اگر آپ بھی پروگرام سن رہے ہیں اور کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہوں یا کوئی بابے پھوکے سے پھوک مروانا چاہتے ہوں، تو ٹیلی فون نمبر ہے 3321-2984-3321-2984، یا پھر آپ ہمارے جو ہے وہ نئی دنیا کی فیس بک پہ جائیں، اور نئی دنیا کا جو لوگو ہے نا وہ سوہ سا ہے، سرخ ہے، اس پہ لکھا نئی دنیا، اس پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے بابے پھوکے کی آپ کو فوٹو نظر آئے گی پوری اسکرین پہ.
0: ہاں ہاں ہاں، بابا سیلیبریٹی بن گیا یار.
1: بابا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے.
0: آمین.
1: اے بابا پھوکا، وہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ شاورما منگتے تھے، تو کوئی لبھیا بھی ہے جی؟
0: کتنے لبھے یار، میں تو آج بھی روزہ رکھ کے آیا اس امید کہ کوئی شاورما دے دے گا.
1: اچھا، شوارمے کے لیے نمبر جو ہے نا وہ ہے 21 81 36 33، اس پہ جو ہے نا آپ موبائل پے کر سکتے ہیں، یا وہ اب تو ناروے کی بھی ایک کمپنی تھی
0: وپس
1: جڑی ہے نا، وہ مکھی بھی ہوتی ہے اتھے.
0: یس، ڈنگ جاؤن
1: پونڈ، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی ملیں گے نا تو وہ
0: نہیں دیں گے، 3-4 شو ہو گئے پیرو مانگ رہے ہیں، نہیں ملا ابھی تک، آج بھی نہیں لبنا رکھتا، آج بھی تھوڑی بھوکھے جاؤں گے.
1: بھوکھے جاؤ گے؟
0: لگتا آج بھی بھوکھے جاؤں گے.
1: نہیں بھوکھے نہیں جان دیں دے، میں نا میں بابا پھوکا آپ کو اپنے پلے سے کھلا دوں گا.
0: نہیں میں تو ایک ہی ٹیم، اگر آیا تو دو ایک کھاواں گے، دو ایک بھوکھے جاؤں گے.
1: بھوکھے تو ہم بھی بھوکھے.
0: یس،
1: اول کیا دے نے بھوکھے نو بھوکھا ملیا تے دون گش پے گئی،
0: گش پے گئی، ایسے سانو گش واش سب کچھ پے جانا اکٹھے ہی،
1: دو اکٹھے. کیا بات ہے،
0: جو مجھے سزا وہ آپ کو فری میں، بائے ون گیٹ ون فری،
1: چلے ایک آگے تو ادھا ادھا کر لیں گے.
0: بالکل کر لیں گے،
1: تہاڈی محبت بابا،
0: محبت
1: اللہ تعالیٰ،
0: کٹھے کھانے میں برکت ہے، پیار بڑھتا ہے،
1: آپ کے رزق میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ برکت ڈالے.
0: آمین آمین آمین.
1: تو بابا پھوکا جی، آج کا پروگرام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں.
0: جی سر.
1: और इसमें जो है आज हम ज़रा ना हल्की फुल्की सी गपशप लगाएंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। और उसमें एक तो बाबा जी हमारे जो रन मरीज थे जिनको सर्टिफिकेट चाहिए था,
0: वो कहाँ तक पहुँचा जी उनका साहब?
1: वो पिछली मरतबा भी वो गिला कर रहे थे, नाम उनका मैंने लिया था कि उनका खाता आया है। ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: तो खाते से याद आया कि अगर आप ईमेल भी करना चाहते हो ना कोई टॉपिक कोई इस तरह की चीज़, तो उसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस है radio@hamvatan.dk। उस पर आप हमें जो है वो अपने भेज सकते हैं। तो अच्छा, वो जो रन मरीज है ना, ना रन मरीज नहीं है अभी, वो
0: सर्टिफिकेट जा रहा है इस चीज़
1: होने वाला
0: आने वाला।
1: वो उसकी जिन्होंने अभी हमारे प्रोग्राम फॉलो करने शुरू किए हैं उनको बताते चलें कि वो थे जनाब, उन्होंने उस दिन फ़ोन किया था पहली मरतबा और मुझे कहते हैं कि मैं हमारे लिए बाबा फूका साहब से फूक मरवाएं कि हमें जो है ना वो रन मरीदी का सर्टिफिकेट मिले, यानी कि शादी हो जाए। वो काम शाम कुछ भी नहीं करते थे, तालीम भी उनकी पूरी सी थी, तो उनकी जो माँ बाप थे वो समझते थे कि अगर इसकी शादी करा दी तो शायद जब बीवी आएगी तो ये सुधर जाएगा। तो
0: बिल्कुल
1: उसमें फिर हमारा ये था कि आप किसी और बच्ची की गरीब की क्यों ज़िंदगी ख़राब करेंगे,
0: बिल्कुल
1: अपने बच्चे को सुधारने के लिए। तो अब जनाब वो उन्होंने हमारी वो मशवरे सुने, बातें सुनी, तो अब वो थोड़ा सा राय रास्त पे आ गए। तालीम तो खैर उसने हासिल नहीं की क्योंकि शॉर्ट टाइम में इतना तो नहीं होता, लेकिन अलबत्त उसने काम ढूंढ लिया है।
0: इंसान की पहचान पीरो इल्म से नहीं, अदब से होती है।
1: अदब से होती है बेशक। तो जनाब उसने गल बड़ी गहरी की जी मनु, हूँ समझ आई।
0: स्लो पी रू ना तुसी, तुहाडा इंटरनेट स्लो है।
1: एक बारी फिर
0: जी
1: क्या फरमाया आपने पहले?
0: मैंने फरमाया इंसान की पहचान इल्म से नहीं, अदब से होती है।
1: अदब से होती है।
0: तो ये इस रान मरीद को हम अदब ही सिखा रहे हैं।
1: कहते हैं इल्म पढ़िया पर अदब ना सिखिया, की कीता तू इल्म पढ़ के हू
0: ना हो जाए थे।
1: अच्छा, तो वो अब जनाब उनको काम मिल गया, और जब काम मिला तो वो कहते हैं जनाब अब जो है ना वो
0: काम मिल गया है।
1: जी काम मिल गया।
0: फिर फूका का असर होया क्या?
1: बिल्कुल हुआ, मैंने कहा ना कि उन्होंने
0: तरक्की हो रही है।
1: तो अब जनाब उन्होंने कहा मुझे काम मिल गया, तो मेरे घर वाले जो है ना वो रिश्ता देख रहे हैं।
0: वाले तो काम मिल गया पहले रिश्ता
1: डी देखें, स्टार्ट तो हो गया ना वो रिश्ता भाजन अभी देखना शुरू किया है। तो
0: हाँ ये तो है, देखने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी अभी उसने ड्यूटी शुरू की है, जरा थोड़ा स्टेबल तो होने दे उसे पहले ही।
1: हो जाएगा बाबा, कौन सा रास्ते में पड़ी है हर चीज़ें कि वो कल ही लड़की मिल जाएगी तो परसों
0: वही ना इतने रिश्ता है तो कम छाड़ दे कभी, बस लग गया जो हो गया हो गया।
1: नहीं मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होता।
0: और यार हो जाता क्यों नहीं होता पीरो, तुम्हें पता ही होता है जिस टाइम आप किसी चीज़ को हासिल करने निकलते हो, आप एक स्ट्रगल करते हो, एक जद्दोजहद करते हो, सब कुछ करते हो, उस चीज़ वो चीज़ आपका टारगेट होती है, वो आपको मोटिवेट करती है। ठीक है, तो फिर जिस टाइम आप हासिल कर लेते हो फिर कहते हो बस जी मिल गया जो मिलना था, बह जाओ ना अपनी टंगा ते टंगा रख के। ये भी तो ज़रा सोचें,
1: वो आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि उसको ना इनकार हो गया सारी तरफों से, माँ बाप ने भी इनकार कर दी है कि जी असी तेरा ब्याह नहीं करना जितनी देर तक तू कम नहीं करना।
0: अच्छा,
1: तो उसको भी पता है कि अब जो है ना वो उसकी दाल निकलनी।
0: अच्छा
1: ठीक है, तो
0: तो केस यहाँ तक पहुँचा कि काम मिल गया है और अब रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वाह, फिर दो त्रै फूका मारने तक रिश्ता भी लग जाएगा। तो पहले तो फूके मारांगा ना कि बंदा अपने ना स्टेबिलिटी रहे,
1: काम लग गया, टिकिया रहेगा।
0: मैं कहना वो एल्फी ला देवे थले,
1: वो एल्फी उसने हिलना भी है, काम कैसे करेगा अगर एल्फी लगा दी तो?
0: नहीं नहीं, वो इतनी डाडी एल्फी नहीं, बंदा हिलू जद कर सकता।
1: अच्छा,
0: जेनी एल्फी।
1: तो अब जो वो थोड़ा सा लिख रहे हैं ना, वो कहते हैं कि जहाँ हम जहाँ पे अब रिश्ते देख रहे हैं,
0: हाँ जी,
1: तो वो कहते हैं कि जी लड़कियाँ जो है वो कुछ ज़्यादा पढ़ी हैं।
0: माशाल्लाह, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं?
1: बुरी बात उन बेटियों के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे रनमरी सर्टिफिकेट वाले के लिए तो है ना।
0: क्यों?
1: अगर सारी पढ़ी लिखी हुई तो फिर इसको कौन रिश्ता देगा?
0: केड़ा कंपेरिजन हो गया। अभी मैंने क्या कहा था
1: जी
0: कि इंसान की पहचान इल्म से नहीं, अदब से होती है।
1: अदब से होती है,
0: बिल्कुल। तो अगर वो अदब है, अच्छा इंसान है, तो ये ज्यादा जरूरी है कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है?
1: नहीं, पर जिन्होंने अपनी बेटियां पढ़ाई हैं वो अब किसी
0: तो अच्छी बात है ना, पढ़ाई है उनको अच्छी जॉब्स दिलवाया, क्यों वो अपना करियर जारी रखे ना। एक मेहनती मर्द के साथ रहना कोई बुरी बात तो नहीं है, मेहनत करे ना वो, मेहनत अगर कर रहा है और अगर
1: तो बाबा जी तुसी मेहनत क्यों नहीं कर दे, हथे बह के फूका।
0: तो मैं ये भी तो मेहनत है, कितनी गैस आया होंगी मेरी तुम कदम सोचे, इतनिया फूका मारना को आसान काम है।
1: मैं भी कहां
0: मैं हाथ मैं हाथ तक तक के लोगा देते हाथ ला ला के लोगा देते पहुंचे हां
1: ना बाबा फूका मैं भी कहां एनी बहु क्यों आंदी है गैस।
0: उन्हें वो 5 मिनट की ब्रेक चाहिए, मैं वुजू करने वाले
1: ऐसा। तो कहने का मकसद है कि वो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, तो यानी आप समझते हैं कि अगर कोई अच्छा काम करता है अपने हक हलाल की रोटी कमाता,
0: सबसे जरूरी बात यह है अगर वो अपने मेहनत कर रहा है हक हलाल की कमा रहा है तो इसमें क्या है, पढ़ाई में कुछ भी मतलब ठीक है, पढ़ाई आपको एजुकेशन जो है इलम जो है वो आपको एक विजडम देता है, आपको एक मतलब एक रास्ते पे लगा देता है, कुछ चीज़ों के बारे में आप समझा देता है कि भाई ये दुनिया की चीज़ें ऐसे चलती हैं ये वो, लेकिन असल जो आपकी जो इलम है ना वो आपकी ज़िंदगी है, वो अदब है, वो जो आपने घर से चीज़ें सीखी हैं। आपको एक अगर एक अच्छा मर्द मिल रहा है जो मेहनत करता है आपके साथ प्यार करता है मोहब्बत करता है, तो पढ़ाई लिखाई किधर से बीच में आ गई इस चीज़ की।
1: लेकिन वो हमारे माशरे में है ना कि लड़की ज़्यादा कमाती है, अब लड़का कम कमाता है, वो ज़्यादा पढ़ी है, ये कम पढ़ा है, वो ज़रा सोनी चिट्टी है, ये ज़रा काला है।
0: हैं रनमुरी साढ़ा काला है
1: नहीं, यानी मिसाल दे रहा हूँ।
0: अच्छा मैं समझा,
1: मैंने अभी उसकी उस मैं उसको कहूँगा कि अपनी जरा फोटो
0: या कुछ चेहरा चेहरा तो कहा पता चले, फूका जड़ियाँ मार रहे हैं लग भी रही हैं कि मुंह तो ही मोड़ के वापस आ रही हैं, वो भी डर रही हैं कि ओए ओए इतना काला वापस हो।
1: अच्छा वैसे ये काला होना कोई बुरी बात
0: नहीं? नहीं नहीं, मैं वैसे यार जो की है पीरो फिर तुम गल उ लै गए, कई कई चवलों स्लिप कर दिया करो, तुम फड़ लेंगे।
1: वो गाना याद आ गया, वो काला शाह काला
0: मेरा काला रे दिल दार गोरियां परा करो।
1: बाबा जी कंट्रोल करे,
0: ओ फिल्टर फिल्टर सॉरी भूल गया।
1: ठीक है अच्छा तो अब जो है वो अच्छा अगर तो आपके वालदैन सुन रहे हैं ना, या आप बाद में प्रोग्राम उनको ना यूट्यूब से है ना, यूट्यूब से नहीं फेसबुक से निकाल के ना आप उनको जरूर दिखा
0: देना
1: के बाबा फूका साहब की राय है कि अगर आप अदब वाले हैं अच्छे हैं तो आप एक अच्छे तरीके से रिश्ता लेके जाएं। तो ये बाबा जी ये रिजेक्ट जब हो जाता बंदा तो डिसार्ड नहीं होता?
0: होता क्यों नहीं होता, जारी बात है, लेकिन बस इसका मतलब है इस पे इमाम शाफी का कॉल है कि वो कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने चीज़ आपके लिए लिखी है ना वो कभी आपको मिस नहीं करेगी, वो आपको मिलेगी, और जो चीज़ आपको मिस कर गई इसका मतलब है कि वो आपके नसीब में लिखी नहीं थी, बस सीधी सी बात।
1: वैसे बड़ी गहरी गल की थी।
0: हाय हाय हाय हाय, तो क्यों किधरे खूह में वाड़ी ना जाऊँ, किधरे गहराई च इमाम शाफी का कोल है।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह,
0: तो सीधी सी बात है, ये भी जाहिल पान है जो जो इंसान इस किस्म की सोच रखते हैं कि हमारी बेटा बहुत पढ़ा लिखा है पढ़ी लिखी बीवी होनी चाहिए, या पढ़ी लिखी बेटी है और बेटा थोड़ा सा अनपढ़ है तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्या पता सबसे अच्छी ज़िंदगी वही दोनों एक दूसरे के साथ गुजारें। कुछ चेंजिंग्स एक दूसरे में होना, यानी कि मर्द में कुछ खामियां होना, औरतों में औरत में कुछ खामियां होना, ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम होंगे तो कैसा गुजारा होगा।
1: वो कहते हैं ना बेटर हाफ,
0: यस,
1: यानी आपका जो अद्धा है ना, वो कहते हैं वैसे भी जो शादी है ना ये आपका एक ईमान जो है वो पूरा मुकम्मल हो जाता है।
0: ये बाकी हाँ ये तो कहते हैं, तो फिर अल्लाह गल ना बाद की होता।
1: तो ये है कि चलें आपकी राय जो है मैं
0: ये इनसे कहे जी कि वो ज़रा काम पे लग गए, ठीक है रिश्ता ढूंढें, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह उनके लिए मिल जाएगा जो उनके नसीब
1: में।
0: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक फूक वजी चिट्टे मुँह ते काले मुँह ते हुण जा रही है जी सीधे काम दे थ्रू दे, अल्लाह ताला स्टेबिलिटी रखे, अल्लाह ताला इनू रिश्ता कोई अच्छा जहा लभे, कोई पढ़ी लिखी अनपढ़ जिस तरह की भी हो, लेकिन अल्लाह ताला मेल करा देना था इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह।
1: लो जी भाई रनमरी सर्टिफिकेट वाले ये
0: हौसला रखे
1: से फूक मार दी है, तो इनका अकाउंट नंबर भी जो है आपको बताते हैं 2181-36-33, उसमें एक शवारमा जो है वो तकरीबन 50 करोड़ का आजकल मिल रहा है। तो बाबे फूके के असिस्टेंट भी हैं एक रजा मुस्तफ़ा, यानी कि 50 और 50 तो हो गए
0: 100,
1: तो 100 करोड़
0: इतना तो इंसान डोनेट कर सकता है।
1: ये वैसे 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपये कितने बंदे, अगर पाकिस्तान से किसी ने भेजने हो तो
0: 4000 नहीं बनता,
1: 4500 कर लो,
0: तो 4500 कर लो, नहीं वैसे पाकिस्तानी रुपया 41 दिन ही आया हुआ है,
1: ये अगर हमारे किसी सामीन को रेट पता है ना तो वो हमें बता दें जी।
0: किसी ना किसी बंदे का रिया ना रابطہ देना है। रिया मनी ट्रांसफर जिंदाबाद
1: जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद
0: पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: बाबा फूका जी ये तो हो गया रन मरीद
0: जी,
1: और अल्लाह ताला जो है जी उनके लिए आसानियां पैदा करें।
0: असि भी जदों तक सर्टिफिकेट नहीं लबड़ा बहना नहीं स्कूल ना लै के देना। जिस दिन लभ्या बाबे नाल तस्वीर आएगी सर्टिफिकेट runmarit.com।
1: ये शादी का वो लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया
0: वो भी पछताया। बिल्कुल
1: इन्हू भी खुआ के छड़ांगे
0: जी छड़ांगे। असि आपू इतने साल जलील हुए उन्हें भी तो करना।
1: अच्छा बाबा फूका
0: जी
1: वो कहते हैं ना चढ़ते सूरज के पुजारी
0: जी। बिल्कुल
1: हम जनाब जब लोग जिंदा होते हैं ना तो उनको उतनी अहमियत, खास तौर पे जो दिले खलूस दिल से काम करते हैं जो अच्छे लोग होते हैं हम उनको ना इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं देते उस तरह।
0: बिल्कुल
1: जो एवं फूफा करता है मैट चौधरी ओए मेरी फोटो वेखी जे सेल्फियां लेके खुद ही अपनी फेसबुक पे लिख रहे हैं जी मैं रजा चौधरी डायरेक्टर रेडियो हम वतन आज जो है बाबा फूका से मुलाकात की। वो सीधा लिख दे मैंने आज बाबा फूका से मुलाकात की। जरूरी है खुद ही बंदा बोल रहा है जी मैं रजा मुस्तफ़ा डायरेक्टर रेडियो हम वतन ने बाबा फूका से मुलाकात।
0: हाँ नहीं ऊपर लिखा होता ना कि किसने ये पोस्ट किया, लेकिन दोबारा जरा नीचे ना वो जरा कंफर्म कर रहे होते ना कि मैं चौधरी मुस्तफा
1: ना, उनको अपने शक होता है।
0: तो चेक करा लें
1: मैं बाकी
0: बाकी पीछे कोई बायोडाटा निकल आएगा आजकल तो 2026 है, टीका लगाओ सारी इन्फॉर्मेशन निकल आती
1: है। यकीन है मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों में अपनी फेसबुक पे अपने जिस खुद ही बंदा कह रहा होता है मैं जी जनाब आज
0: ये मैं बाबा फूका आज रेडियो पे बैठा हूँ।
1: पता सारे नु नजर भी आ रहे हैं पर फिर भी दसना आपको ही है।
0: yes.
1: अच्छा वो जनाब फिर कहते हैं कि चढ़ते सूरज का पुजारी यानी yes. एक बंदा जो है ना जो एम ए चौधरी बनया है बड़ा अपने कम्युनिटी में झूठ मूठ का जो भी नाम बना लिया उसने।
0: बिल्कुल
1: ठीक है उसको सारे ही सलाम वालेकुम सर जी साहब जी चौधरी साहब की हाल है ठीक हो। अच्छा जो बंदा हकीकत में काम कर रहा होता है ना उसको नहीं पहचान
0: नहीं पहचान।
1: अच्छा जब वो फोत हो जाता है
0: हाय हाय हाय
1: फिर उसकी फिर तो जनाब दी पट्टियां लग जांदियां हैं।
0: जिंदे को
1: बड़ा ही चंगा बंदा सी
0: जिंदे को पूछना अच्छा। जिंदे को पूछना नहीं और मरने वाले की बल्ले बल्ले
1: बल्ले बल्ले
0: क्या बात है क्या बात है। नहीं ये तो ये बीमारी ना पाकिस्तानी सोसाइटी में एक बहुत बहुत कॉमन चीज़ है, चाहे रिश्तेदारी हो चाहे दोस्त यार या काम काज कोलीग्स जो भी हो, जिंदा बंदे की कदर कोई नहीं करता। जिस टाइम वो जाता है ना तो तब इंसान को एहसास होता है कि इस इंसान की अहमियत मतलब काम ये वो क्या थी।
1: तो ऐसा ऐसा क्यों है बाबा फूका?
0: ये अल्लाह बेहतर जानता है क्यों है कि जिंदा बंदे की तुसी कदर करनी नहीं ते मरण तो बाद उसते ना ते कुए बन रहे कुए बन भी कितने माशाल्लाह जिम्बाब्वे वाह
1: वाह
0: अफ्रीका में नलके लग रहे उस बंदे के नाम के
1: माशाल्लाह।
0: ठीक है जी मेरा भी लग गया एक बाबा फूका नल का पंप पंप पंप पंप।
1: ओ किने लवाया
0: जी
1: ओ किने लवाया?
0: एक ने मेरी जरा ना कोशिश की थी मेरी मौत ही मरिया नहीं मैं तो उन्हें पहले ही कुआं लवा देता सी कि मैं कंफर्म मरण लगा लेकिन मरिया नहीं मैं हाले थे ही। तो बाद में ये चीज़ें जो है करके तो अब वो बंदा जब इस दुनिया से चला ही गया उसको तो पता ही नहीं ठीक है साले स्वाब उसको जा रहा है, लेकिन वही अगर आपने उसकी कदर उसके होते हुए की होती ये प्यार मोहब्बत उसको यहाँ इस दुनिया में दिखाया होता अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा होता तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था कि वो चला गया हूँ बैक रो रहे हो फिर चरपाइयां तो बैक माइया भी पिट रही होती हाय गया वैन पा रही होती ने
1: किंजी पाती ने वैन
0: नहीं है फिर दोबारा रिपीट नहीं एक ही बार ही होता ना हाय गया माड़ा सोना।
1: अच्छा ये मौकल आया जे
0: आ गया
1: ओ
0: की लेके आया
1: कहता अब तो बंदे बंदे को बदनाम करने लगे हैं काम था शैतान का अब ये काम इंसान करने लगे हैं।
0: हाय हाय हाय हाय
1: हुए हैं लोग मशगूल इस कदर फितनों में के बेफिक्र होकर शैतान भी आराम करने लगे हैं।
0: मैनू शैतान कह रहे हो तुसी?
1: नहीं मैं बाबा जी जिसकी बात कर रहे हैं ना कि एवं फूके मार मार के जड़े अपने आप नू बड़ा चौड़ा समझते हैं।
0: गल फूकां ते फिर मेरे ते आई ना।
1: नहीं आप फूक मारते हैं।
0: हाँ अच्छा सॉरी
1: अल्लाह बाबा जी
0: फिर जरा एक्सप्लेन कर दिया करो एडी एडी डाडी शायरी कर दिया फिर समझ नहीं ना लगती फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता।
1: ये जनाब जो तीन हमारे साथ फेसबुक पे है ना, सबको सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: ये ज़रा आप भी सलाम ठोकें, हमें बताएं कौन देख रहे हैं, और जो रेडियो और टेलीविज़न पे हमें देख रहे हैं वो भी अपना फ़ोन करें 33 21 29 84 पे, और हमें जो है वो थोड़ा सा बताएं कि आप जो है वो हमारे प्रोग्राम के बारे में जो है वो क्या समझते हैं। तो अगर किसी की सालगिरह हो तो उसका भी हम जो है वो
0: मुबारकबाद देंगे, फूक मारेंगे।
1: हाँ बिल्कुल। अच्छा बाबा फूका साहब, ये जो जिंदा हैं,
0: हाँ जी,
1: जो लोग अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए ज़रा फूक मारें कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी जो है तरक्की दे,
0: आमीन।
1: और जो फोत हो गए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए,
0: आमीन।
1: और जो एवं फूके पे मारते हैं अल्लाह ताला उनको जरा थले ले आए,
0: थले के उन्होंने गैस काट दे, पैप भी काट दे, सिलेंडर पे है वो भी काट दे,
1: फिर इस तरह आवाज आएगी
0: यस, फिर सकी नहीं तो फुस नहीं तो गल हुई पैप्सी पी की छत्ते नाल बज जाएंगे, एक ही काम दो काम होना ए जेड़े सीना चौड़ा करके फिर नहीं। सीधी सी बात, सीरियसनेस ऑल, के प्लीज़ रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अहबाब हो, जो भी हो, जिंदा इंसान की कदर करें, प्यार मोहब्बत एक दूसरे से करें। बाद में जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है फिर कोई फ़ायदा नहीं उसके रोने रोना या उसकी तारीफ़ें करना या ये कहना कि भाई वो बहुत अच्छा था, ये करता था, बाद में उसकी कदर करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो प्लीज़ मेरी हमारी ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने ये चीज़ हमारे अंदर बहुत देखी है कि हम बैठे बैठे जो है ना पूरी ज़िंदगी उस बंदे को पूछते नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी उसको कोई मतलब अहमियत नहीं देते, लेकिन सह उसके ऊपर एक सफ़ेद कफन ढलता है तो सब रोने के लिए तैयार हो जाते हैं, और सब आके जो है ना वो ये भी करदा सी तो वो भी करदा सी, वो यार वो जिंदा था उस टाइम उसकी अहमियत कर ली होती तो क्या पता वो इस दुनिया से थोड़ा और खुश चला जाता।
1: मौकल आया जो फिर
0: अल्लाह खैर करे, आज तो मौकलों की बरसात होगी।
1: इंसान की कदर तब होती है, इंसान की कदर तब होती है जब वो बोलना छोड़ दे या दुनिया
0: छोड़ दे। हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, मेरे आज लगता है काफी इमोशनल शो हो गया, ताकि और वहां ना दे मैं,
1: ये आप भी इमोशनल होते हैं।
0: ये क्यों नहीं होता सर, मेरे अंदर दिल नहीं, मेरे अंदर पैप पे है, सिलेंडर रखे है फूका का, थोड़ी देर बाद में छत्ते नाल बजना है, आज गैस बहुत लीक हो रही है।
1: अच्छा बाबा फूका, अच्छा हम लोगों की ना एक और बड़ी है, क्या
0: ठहरो पीरो, मैनू भी आया जी, आमद हुई जी मैनू भी,
1: हुई
0: अल्लाह ए मरने पर लोगों के ना जरा इमोशनल हो गया सर ना, मैं कहना चलो इस गम लूने ना जोक ना मुकाने है। ठीक है
1: जी,
0: हम सुनना है गौर ना। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाने गया,
1: ने रोने रोनाने वाली बातें, तो बीवी फौत हो गई, ये तो खर्चा बढ़ गया ना जब दूसरी करनी बंदे ने।
0: चलो वो बाद का प्रॉब्लम है ना, वो तो बाद में देखी जाएगी, फिलहाल जेडी वो दफनान लगे उन्हें तो दफना दो,
1: अच्छा
0: ले पहुंच रहे हैं उते दफना दे दो। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाने के लिए गया तो आसमान पर ना बादल गरजने लगे और बिजली कड़की और तूफान आ गया, बड़ा डाढ़ा तूफान आया। ठीक है, आदमी ने आसमान की तरफ देख के कहा कि लगता है कि पहुंच गई। पहुंची तो ताओ तू सिग्नल आए नहीं, दड़दम दड़दम कड़कम कड़कम दड़ाल दड़ाल हो गई, उन्हें क्या पहुंच गई
1: डाडी पहुंची हो,
0: मैं कहना ऐसी पहुंची कि सीधी तल्ले वापस।
1: बाबा फूका क्या बात है
0: यार, आपने इमोशनल कर दिया था, फिर मुझे आमद होगी। मैं फिर इस तरह नहीं ना हो सकता।
1: चले अच्छा बाबा फूका, हमारी ना एक और बड़ी है, अच्छी आदत है,
0: हाँ जी,
1: कि हम ना तोल मोल बड़ा करते हैं, बार्गेनिंग।
0: आय हाय हाय, ऐसी बार्गेनिंग, मैं कहना अगर दुनिया में बार्गेनिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप हो ना तो पाकिस्तानी टॉप पे आए।
1: अच्छा वैसे मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ना बंदा पैसे बचा लेता है।
0: पीरो पैसे तो बंदा बचा लेता है, लेकिन यार वो जिस बंदे की दुकान है, जिस बंदे या जिस तरीके से हम बार्गेनिंग करते हैं, ये बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है।
1: नहीं तो वो देखें एम्बैरेसिंग इसमें तो वो देखें जो बार्गेनिंग करता है ना उसमें वो शर्म नहीं होती,
0: थोड़ी बहुत होने चाहिए ना। पीरो
1: देखें अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं ना,
0: बिल्कुल,
1: तो वहाँ पे तो आपको पता है कि इस बंदे ने ना आपकी खाल उतारनी है,
0: खास तौर पे अगर हम बाहर से आए हों। चलो मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ।
1: ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो वो तो आपको फिर सीधा ही जो है ना वो टोका, बल्कि जो नॉर्मल जो छुरी रखते हैं ना,
0: नहीं टोका,
1: टोका
0: टोका वाह
1: ठा ठा ठा,
0: नहीं बार्गेनिंग ठीक है लेकिन तरीका बार्गेनिंग का होता है ना एक, अब आप जा रहे हो एक चीज जो है वो 1000 रुपए की मिसाल लगी, आप सीधा जाके ऊपर से सीना चौड़ा करके गैंगस्टर बन के कहते 500 दूंगा।
1: अच्छा वैसे ये भी देखा मैंने कि वहां पे जो है ना एक जो चीज होती है ना मिसाल के तौर पे 500 रुपए की है,
0: हाँ जी,
1: वो शुरू करते हैं 1000-1500 से,
0: बिल्कुल
1: ठीक है। अच्छा फिर जो वो दुकानदार होता है ना उसने पहले एक ही खल उतारी है 1000 रुपए,
0: बिल्कुल,
1: यानी उसने 500 फालतू कमा लिया है,
0: बिल्कुल
1: मेरे जैसा आ गया,
0: बिल्कुल
1: उन्हें कहा कि भाई यान मैं 250 देना जे।
0: आपको कैसे पता?
1: तो वो दुकानदार को पता है और वो इसीलिए मुझे 250 की दे भी देगा।
0: ये तो है कि 500 पहले कमा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: वो अपने हिसाब में ना पूरा रखते हैं, लेवल कर लेते हैं।
0: ये तो है माशाल्लाह, है तो शातर चलाक।
1: अच्छा यहाँ यूरोप में आपने देखा होगा कि जब आप सुपर मार्केट में जाते हैं ना तो वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती।
0: वैसे कर सकते हैं इधर भी, आपको पता है लीगल है?
1: नहीं कर सकते हैं
0: लेकिन करता कोई नहीं। अच्छा आप करते हैं?
1: मैं अपने पीरां दा करता हूं, मैं कहता हूं मैं वो मेरे पीर पता है कौन जे,
0: हाय हाय हाय हाय
1: हैं, फिर मैं अपने वो डाखाने मिलाने शुरू कर देता हूं, वो मेरा फलाना जानने वाला, मेरा फलाना जानने वाला, मेरा फलाना, तो वो आखिर में कहते हैं अच्छा जी आपको हम जो है कोई 100 करोन 500 करोन जितनी महंगी कोई सस्ती चीज होगी उस हिसाब से कम अज कम 10-15% तो छोड़ ही देते हैं।
0: अच्छा
1: आओ
0: फिर मैं तुम्हारे को सीखना पड़ेगा,
1: ये बड़ा यकीन करें ये जो होता है।
0: नहीं चलो कोई चीज़ टूटी हो या कोई थोड़ा सा डैमेज हो ये वो वगैरह तो वो तो वो खुद ही जो है ना कर लेते हैं, लेकिन मसला मुझे उन लोगों से है जो सीधा सीधा सुपरमार्केट में जाते ही इसीलिए कि मैंने टूटी फूटी चीज़ें ढूंढ के तो अपने पैसे बचाने, भाई यार कमाते भी तो हो ना यार, तो इतनी ज्यादा तो ना ना करो कि डायरेक्ट इस नीयत से ही जा रहे हो कि आज जाके ना जो है ना 4 चूने लाने ने मैं आपू भी।
1: मैं पूछने लगा बाबा फूका आपको कैसे पता है लोगों की नीयतों का, लेकिन आप तो पीर है ना पढ़ लेते हैं दिलों के यार।
0: सर फिर बिल्कुल मेरे दिल का भी हाल जानते हो, कोई शक नहीं, तो फिर समझो ना गल के तोल मोल करना बुरी बात नहीं है, बार्गेनिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन तरीकाकार बार्गेनिंग का ये होता है कि चलो इतना भी ना करो कि अगला बंदा शर्मिंदा ही हो, या जिस तरह हम पाकिस्तानी बंदे या हमारे अपनी कम्युनिटी हम खाना खाने चले जाए तो जिस टाइम पेमेंट का टाइम आता है वाह यार क्या सीन होता है वहाँ, डैन कार्ड टर्मिनल बेचारी कन्फ्यूज हो जाती,
1: हमारा जो है ना क्या कहते हैं हमारी जो कम्युनिटी है पीरों की,
0: हाँ जी,
1: हम अक्सर जो है ना वो पैसे
0: पीरां दी भी कम्युनिटी है
1: जी,
0: पीरां दी भी कम्युनिटी
1: है जी जी,
0: उधर मैं शामिल
1: मैंने आपको भी आप नए नए है ना उसमें, अच्छा
0: अभी मेरी एंट्री नहीं,
1: तो उसमें होता ही है कि उस कम्युनिटी में हम जो है ना पीर जो होते हैं हम लोगों से पैसे दिलवा कहते हैं कि आप बिल दे दें, ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं ना लोग लड़न शुरू हो जाते हैं, ओए मैं देने कोई अदरों को सुन मारे को उधर मुका, अच्छा बाद में वही पैसे दे के जिताते हैं, ओए याद है मैंने तुम्हारे पिछले मोरा खाने के पैसे दिए थे,
0: वो तो बस अल्लाह
1: वो तो देते ही क्यों, वो तो मैंने कहा था असं तो चाहते हैं कि तुम दो पर जिताओ देने ना,
0: एक ही गल हुई असी चाहते हैं, यानी कि आप तवक्कुल से जाते हैं कि आज अल्लाह फ्री में देगा क्या बात है पीरो क्या बात
1: है, घर से निकलते हैं ना तो दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह,
0: क्या बात है क्या बात है, तुहाडे जे बंदे दी वजह तो ना दुनिया जलजले आंदे ने कि भाई दिमाग हिलेगा पेट हिलेगा तो कुछ सेटिंग होगी
1: यकीन करें कि अब मैं एज ए पीर तो खाने के पैसे तो नहीं दूंगा ना, मेरे जो मरीज है वही देंगे, लेकिन वो मरीज जो अगर बाद में जितलाएंगे फिर तो पीरों को दुख, मैं फिर यकीन कर मौकर भेजता हूँ
0: उनपे ने
1: फिर जनाब रात को जिस तरह जब सोते हैं ना तो चुक चुक के मारते हैं ना जब मौकल,
0: अगली बार मौकल कार्ड ही काट लिया
1: आप ही पे मारा
0: आप ही, अजकल तो वायरलेस पेमेंट टाइमिंग भी हुई है, 200 तले रखो ना तो खुले पैसे इस्तेमाल करो, उन्होंने की पता कार्ड कितने गया राती मोकल को वापस,
1: क्या बात है क्या बात
0: है, टेक्निक है टेक्निक है, अगर ना हुआ मैंने दस्यो मैं भी 2 मोकल रखे ने मास्टर कार्ड निकाल लेंगे गोल्ड वाला,
1: ताड़े को ले ही है
0: जी
1: ताड़े को ले ही है,
0: तो क्यों मेरे दर ना मोकल भेज दे मेरा कार्ड इस्तेमाल हो रहे हो नवा नवा कटाया यार, नहीं देखे, जब आप किसी के साथ कुछ करते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है किसी एक्सपेक्टेशन के साथ ना करें। करना है सच्चे दिल से करें, और कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये बंदा मेरे लिए इसी तरह या इसी मतलब कुछ वापस मुझे देगा। ठीक है, जब आप इस तरह करेंगे ना किसी के साथ, तो आपको जो करने में, खिलाने पिलाने में या कोई मदद भी आप अगर कर रहे हैं ना, तो वो जो एक लज्जत, एक मज़ा होगा ना, वो अलग होता है। और ये तौफीक अल्लाह ताला ने हर इंसान को नहीं दी होती कि वो बग़ैर कुछ मांगे या कुछ किए जाके किसी के लिए कुछ कर दे। एक तो आप उस दूसरे बंदे के ऊपर से प्रेशर हटा रहे हो कि जब आप कहोगे ना कि भाई ये यार मैंने तेरे लिए ये किया है, अब तूने ना मेरा ये देना है या तूने मेरे लिए करना है, क्यों? आपने उस बंदे के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर डाल दिया। अब वो ना करने के काबिल हो तो वो तो बेचारा फंस गया कि यार मैंने ये मदद तो मांग ली है या ये चीज़ तो करवा ली है, लेकिन अब तो ये वापस भी कुछ मांग रहा है, मैं किस तरह दूँ? तो ये प्रेशर आप किसी दूसरे इंसान पर क्यों डालते हो? बुरी बात।
1: खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया।
0: वाह।
1: वो वक्त हो, इंसान हो, या कोई रिश्ता हो, या कोई एटीएम वाला कार्ड हो।
0: वाह वाह वाह, मोकला आज मोकल कुछ ज्यादा जुनून इचने।
1: यकीन करो
0: आज जुनून इचने,
1: आज पता नहीं की होया उन्होंने।
0: कोई गाल नहीं, आज जुनून चाहे ने, कोई गाल नहीं, ये तो अच्छी बात है। तो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात।
1: ये है कि अपने जो एटीएम के कार्ड है ना आपके,
0: संभाल के रखें
1: उनको, यानी जिनके पास हैं, यानी रिश्ते,
0: बिल्कुल
1: दोस्त,
0: बिल्कुल
1: जो आपकी जो खैर ख्वाह जो आप पे पैसा लगाते हैं, उनसे जरा अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत, अगर वो कभी कभार कोई कह भी देते,
0: अबल दिलांदा कोई नहीं
1: सुन लिया गया है,
0: अबल दिलांदा वैसे तो कोई नहीं,
1: नहीं कोई होते हैं,
0: कुछ है माशाल्लाह, अल्लाह ताला और तो फीक दे ही रखे,
1: साढ़े पीर साढ़े ते लांदे जे,
0: आए हाय हाय हाय, बड़े लकी हो फिर ते,
1: है ना?
0: हाँ जी, असि तो पीर ते ला ला के कंगाल हो गए।
1: जितने देख सुन रहे हैं ना, अल्लाह ताला इनको लिखने की तौफीक दे, कोई फोन करने की तौफीक दे, कि हमें भी जो है वो फोन शोन करें, कोई जो है वो शायद टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, मैं चेक करता हूँ कि शायद उसकी वजह से जो है ना वो इनके मैसेज नहीं आ रहे।
0: कोई बात नहीं, आप चेक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जड़े तकड़ेंगे तकड़ेंगे, जड़े नहीं तकड़ेंगे उनका अपना मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी खूबसूरत चीज़ को देखने से कोई इनकार कर सकता है?
1: अच्छा बाबा फूका
0: जी,
1: उम्मीद और तवक्को,
0: वाह, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और तवक्को दो मुख्तलिफ चीज़ें
1: होंगी। बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह।
0: फिर डिपेंड करता है कि केड़ी तवक्को, फ्री दी तवक्को या मदद करने दी तवक्को। ये प्रॉब्लम है ना अगली।
1: देखे अल्लाह से मांगी है ना तवक्कल, अल्लाह की तवक्कल पे निकले हैं, मुफ्त ला बजाय तां ते जे लाना पै जाता
0: तो भी कोई मसला नहीं। यह तो है वैसे, आई एग्री विद यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, उम्मीद जो है ना ये एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, उम्मीद जो है ना इंसान को बहुत बहुत दूर तक ले, रोज़ाना वैसे हम उम्मीद पे ही जीते हैं, कल बेहतर होगा, कल बेहतर होगा। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी चीज़ की लड़ाई रख रहा है। हाँ, लेकिन सबको ये ज़रूर कहूँगा, अल्लाह पे उम्मीद रखो, इंसानों पे नहीं। अल्लाह पे उम्मीद रखो, इंसानों पे नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीद तोड़ने वाले हमारे ही अपने रिश्तेदार इंसान यही होते हैं, सबसे ज़्यादा उम्मीद ये तोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ ये देते हैं। तो उम्मीद रखनी है तो अल्लाह से रखो, तवक्को रखनी है तब भी अल्लाह से रखो।
1: अहमद आई जे,
0: अल्लाह खैर करे, मोकल आज
1: मोकल आए जे, कहंदे ने
0: मोकल लगदा रेड बुल पी के आए ने आज।
1: वो मैंने भी कभी किसी को आजमाया नहीं।
0: अच्छा,
1: मैंने भी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया इतना पाया नहीं।
0: हाय हाय हाय हाय,
1: किसी को फिक्र हो मेरी शायद, खुदा ने मुझे ऐसा
0: बनाया ही नहीं।
1: जे बनाया होता ना तो कोई शवारमे दे पैसे आ जाते।
0: आ जाते बिल्कुल, मैं इस काबिल ही नहीं है कि मेरे मुँह शवारमा जाए, ता ही नहीं आया आज तक।
1: तुसी दाल खाओ,
0: दाल भी मज़े की होंगी यार, उबले चावल ना परौठे नाल, हाँ हाँ हाँ, नाल चार, दाल भी मज़े की होंगी। असं जो लभ जाए अल्लाह ताला तो शुक्र करके खा लेंगे, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाई चांस अगर कुछ फ्री लभ जाए तो ना नहीं करेंगे।
1: अच्छा, खाने से याद आया,
0: अल्लाह खैर करे,
1: वो एक बंदा था
0: जी,
1: वो गया अपने ससुराल गया, तो माँ अपनी जो है बेटी उसको कहती है बेटा ज़रा दाल बनाओ है ना, मुर्गी बनाओ। तो मुर्गी बना रही होती है तो फिर उसको आवाज़ देती है बेटी एक जग पानी का डालो।
0: अल्लाह खैर कर।
1: अच्छा फिर थोड़ी देर गुजरती है फिर कहती है बेटी एक जग पानी का और डालो। तो वो जो दमाद साहब आए होते हैं ना वो कहते हैं अम्मा असी मुर्गी खानी है डूब के नहीं मरना।
0: वो शोरा इतना हो गया कि दो बोटियां ते पैरा रख के नवाला लाना पे। इतना शोरा है,
1: इतना शोरा,
0: क्या बात है। अपने दमाद से कि बैंगन शरीफ पकाऊं या पिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे। दमाद अगू कहंदा है कि बोला मैं गुनाहगार बंदा हूं, बगैर वजू इन मुकद्दस सब्जियों का नाम जो है मैं नहीं ले सकता,
1: माशाल्लाह।
0: तो आप ऐसा करें कोई बगैर सा मुर्गा ही पका दे।
1: आहो कोई पिंडी शरीफ है
0: असि उस कैटेगरी सानू बगैरत मुर्गा।
1: वाकई मुर्गा जो है सारी दिहाड़ी लूर लूर गलियों में फिरता रहता
0: है। यस
1: यस,
0: कोई सुकी सुती बिल्ली एहो जी चीजा पका दे सानू, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी बड़िया चीजा नहीं सानू चाहिए, मतलब पिंडी इन्नी जी पिंडी ते पिंडी शरीफ कहो तो बंदा कहंदा ओ यार कितनी बड़ी चीज होगी।
1: अच्छा बाबे फूके अज की खाइए ते की पकाइए।
0: ओ यार पिछले याद आया पिछली बारी मेन्यू दिता सी, लोगों ने उहदा कोई फीडबैक नहीं दिता। बस
1: फीडबैक यूं आया है कि
0: आया
1: जी जी आया आया
0: कोई पसंद आया लोगों को
1: वो कहते हैं कि जी
0: मसला हल हुआ
1: कुछ तो हमारी जो है ना मुश्किल आसान की है।
0: जबरदस्त है, चलो यही मकसद था हमारा।
1: पर उसमें फिर यह हुआ कि एक बताते हैं कि उन्होंने जब वो मेन्यू बनाने लगे उसमें भी थोड़ी जो है उन्होंने रद्दबदल करने की कोशिश की।
0: चलो कोई
1: तो जब बेगम ने खावन से पूछा कि मैं कौन से चावल बनाऊं,
0: जी
1: तो खावन ने कहा कि जी आप जी उबले चावल बना लें।
0: जबरदस्त।
1: तो कहती हैं नहीं
0: नहीं क्यों,
1: मैं पुलाव जो है वो चने वाला बनाऊं या मटरों वाला बनाऊं। तो खावन ने कहा जब आपने मुझसे पूछा है ठीक है तो मैंने बताया कि सादे चावल उबले बना लें,
0: बिल्कुल,
1: तो आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उस पर लड़ाई होगी, उन दसो की करे बंदा।
0: लड़ने वाली गल केड़ी, मतलब जब पूछ रहे हो एक इंसान से
1: जी
0: कि कौन से चावल बनाऊं, आपने ये नहीं पूछा कि मैं सोच रही हूं कि ये पकाऊं या ये पकाना, आपने पूछा डायरेक्ट ये कौन से चावल
1: बनाऊं? कौन से।
0: और मर्द ने कहा उबले चावल,
1: उबले
0: बात गल मुकी ना, तो लड़ने वाली केड़ी गल है, ये तो मसला ही वहाँ हाल हो गया था। लेकिन ये ले ये लेडीज की प्रॉब्लम है, समझती नहीं है, पूछती भी है लेकिन अपनी मर्जी भी करनी।
1: फूक मारो इन्हें, अल्लाह ताला इन्हें जो है अपनी मर्जी ने।
0: हाँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला जड़ा है ना नेक्स्ट वीक का मेन्यू पेश करन लगे हैं, इहदे विच कोई अदलो बदल नहीं होने लगा, तो जो मर्द कहेगा वही पकेगा। और तो अगर पूछ रहे हो तो प्लीज वही बढ़ा दो जो जवाब दे रहे हैं, चेंजिंग ना कराया करो। पूछण का मकसद की,
1: लो जी मेन्यू आ रहा पूरे हफ्ते का, बाबे बाबे फूके की पकाइए ते की खाइए,
0: आज की पकाइए ते आज की खाइए। मंडे नू कर लो नजर आ कीमा, सुबह सुबह मंडे है ना, मैं भूल गया
1: जी जी सुबह
0: सुबह मंडे है, सुबह बनाओ जी पुनिया कीमा।
1: पीर है,
0: सुबह पीर है, पीरा दा दिन सुबह, क्या बात
1: है। एक पीर आंदी है ते एक पीड़ आंदी है,
0: इहदा मतलब सानू नील छील पैणे ने चार पांच
1: पीड़ जो दर्द होंगी है ना।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, क्या मजा होता
1: है। एक भी शरीकों भी पीड़ होंगी,
0: किनो
1: शरीकों
0: उन्होंने तो अग लगती है।
1: अबरारू लाग का गाना
0: शरीकों
1: अग लगती
0: मटमटी
1: जी जी मेन्यू
0: सॉरी मेन्यू भूल गया, साइड ट्रैक हो गया था। मंडे को कीमा भुना हुआ ठीक है, सारे लिख लें जेडे जेडे सुन रहे, अब्बल तो सोनी त्रै रहे ने वैसे। तो ट्यूजडे नु जेड़ा ना कर लो आलू मटर, थोड़ी सब्जी सब्जी भी होनी चाहिए है। तो वैनसडे कर लो ना बुध न, बुध काम शुद्ध, उस दिन होता है तंदूरी चिकन ओवन
1: मुर्ग वो भी बगैरत
0: बगैरत मुर्गा बगैरत मुर्गा पकाओ, उन्हें ओवन घस दो 210°C से पकाओ, तो कोदे विच बगैरती किस तरह निकलती है। आए हाय शोरा टपकेगा, स्किन भुख लग गई, फिर शवारमा नहीं आया। अच जुमेरात न पकाओ भिंडी, थोड़ी जी चेंजिंग आ गई ना, मतलब एक दिन पिंड सब्जी फिर एक दिन मुर्गी फिर एक दिन सब्जी। पिंडी भी हो के ना उसे पिंडी शरीफ,
1: पिंडी शरीफ
0: आए हाय हाय क्या नाम दिया सब्जी को। फ्राइडे जो है ना वो वीकेंड का दिन, उस दिन शाम को अच्छा डिनर होना चाहिए क्योंकि अगले दिन लोग नींद छीन अपनी पूरी करते हैं, तो उस दिन पका लो कोई कढ़ाई गोश्त पुलाओ जे।
1: हाँ
0: देखो मैं नोट करो, मैं पुलाओ कह रहे हैं, उबले चावल नहीं पुलाओ।
1: मैं भी दस देना पुलाओ विच पवे की मुर्गी पवे कोई उदे जे
0: ते नहीं, आप डिसाइड करो मुर्गी पालन गोश्त पालन।
1: लड़ाई तो फिर हो गई ना,
0: ਇਹਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜਦ ਜੁਮੇ ਦਾ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਮੁਰਗਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਹਸੀਨ ਗੋਸ਼ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ। ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇੰਜੋਏ ਕਰਤਾ, ਮੂੰਹ ਮਨਵਾਲਾ ਡਾਲਤਾ, ਇੱਧਰ ਖੱਟਾ ਮੀਠਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਪੀਤਾ, ਡਕਾਰ ਮਾਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
1: ਠੀਕ ਹੈ।
0: ਸੈਟਰਡੇ ਕੋ ਆਪ ਕਰ ਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਕਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕੋ ਕੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਤੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਯੇ ਵੋ। तो उस दिन आप कर ले कोई ना अपनी नेबर कंट्री से एक्सपायरिंग इंस्पिरेशन ले ले,
1: वो है
0: अफगानी खाना हो जाए, कोई काबली पुलाव।
1: अच्छा नेबर मैंने कहा कोई जर्मनी होएगा, कोई स्वीडन होएगा।
0: ओ नहीं नहीं, ऐसे पाकिस्तानी लोगों की गल कर रहे हैं, पाकिस्तान का नेबर कौन है, अफगानिस्तान हो गया, इंडियन हो गया, मतलब जिस तरह का। लेकिन इंडियन और हमारा खाना तो काफ़ी मिलता जुलता है ना, अफगानियों की कुछ डिशें हैं ना थोड़ी सी अलग है, जिस तरह काबली पुलाव हो गया, दम बुख्त हो गया, के ना उसका दम बुख्त कम बख्त के सी
1: कम क्या क्या बात है
0: के नाज उदा
1: क्या बात,
0: यही है ना दम बुख्त के सी। और जिदे जिंदा बकरा पा दें दिन पूरा दिन बेचारा पिया रहंदा है, ढक्कन खोलो फिर बाहर आ कहंदा
1: को जिंदा नहीं।
0: ओ यार ओई बकरा विच पा दे ने फिर ढक्कन खोल दे ने, बाहर आ कहंदा खोल दे हुन मेरा साह कुटिया गया बाहर आण दे मैनू। ओ गोश्त जिहड़ा है ना बिल्कुल जबरदस्त हो जांदा निकलता, वैसे मेरे जी आइए बार बार स्किन स्किन समेत। चलो हफ्ते वाले दिन ये कर ले, और सैटरडे को जो है ना, संडे जो है ना, वो सबसे आसान दिन है, वो मैं पक्का रखूंगा। सुबह चाह ते रस ते रोजा,
1: चार चार चार नस ते रोजा,
0: नहीं नहीं चार नस नहीं, चार चाह चाह ते रस ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾ।
1: ਅੱਛਾ
0: ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ
1: ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹ ਨਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ,
0: ਆਹ ਉਹ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹ ਨਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਰਸ ਕਰੇ।
1: अच्छा वैसे ये बात मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, ये सिर्फ बीवी नहीं खामद भी घर में खिदमत गुजार खाना बनाते हैं।
0: मैं कहता हूँ खामदों से अच्छा कुक कोई नहीं है, लड़कों से
1: जी,
0: मर्दों से
1: जी,
0: कसम से, क्योंकि हम जब किचन में अव्वल तो जाते नहीं है लेकिन जब चले जाए ना तो सही दिल से खाना बनाते हैं, जायका बड़ा हमारे खाने में। ये तो चाहे लेडीज माइंड करें या ना करें कोई मसला नहीं, आई डोंट केयर, लेकिन जो मर्द किचन में जाता है ना कुछ अच्छा पका के निकलता है, इसमें तो कोई शक नहीं।
1: लग रहा तुम्हारे मुंह च पानी आ गया
0: है जी,
1: तुम्हारे मुंह च पानी आ गया।
0: पानी नहीं, मेरे मुंह ते नली नदियां बह रही हैं, दरियाए नील मेरे मुंह च लंघ रहे।
1: अच्छा बाबा फूका मोकल फिर आ गया जी,
0: अल्लाह खैर करे मोकल, मेरे ख्याल सच्ची मुझे दो रेड बुल मार के आया किधर पार के तो नहीं बूटी पीती।
1: इस मरतबा ना कोई शायरी ना कलाम इस तरह की नहीं, कोई बात खबर लेके आया,
0: खबर लेके आया,
1: और वो मोकल कहता है ये जरा ना पढ़ के सुनाओ।
0: अल्लाह खैर करे।
1: लिखा है गुजरांवाला सोसाइटी डेनमार्क के माहाना मीटिंग, 2 साल कारकर्दगी का जायजा।
0: दो मिनट दोबारा रिपीट करिए।
1: गुजरांवाला सोसाइटी डेनमार्क की माहाना मीटिंग, 2 साल कारकर्दगी का जायजा।
0: माहाना मीटिंग ते 2 साल दी जायजा, ये क्यों होया? फिर पहले ऐ भी मिलते रहने एक दूसरे नू,
1: वो तो खाबे खांदे सी,
0: बिरयानी पक्की होनी है,
1: भूल जांदे के पिछले महीने दा हिसाब।
0: ये की गल होई, यकीन मन्नो हले भी पले नहीं पै रही कि 2 साल दा जायजा महाना मीटिंग,
1: अभी जो महाना मीटिंग हुई है
0: उसमें 2 साल का जायजा निकला,
1: जायजा लिया गया,
0: तो उस तो पहले के बह के ऐ होंदा रहे की हो रहा
1: मनु हूं की पता की हो रहा।
0: नहीं कि केड़ी गल हुई,
1: वो मोकल भी जो है ना वो भी इसी बात पे परेशान था, कहता है कि पीरो ये मुझे समझाएं। मैंने कहा मैं नहीं समझा सकता, मैं ना बाबा फूका साहब से थोड़ा सा,
0: मेरे भी उतू लांगी है,
1: तो उतू भी लांगी
0: कि 2 साल का जायजा,
1: 2 साल का जायजा
0: महाना मीटिंग होती है, महाना मीटिंग होती
1: है, हर महीने वो,
0: हर महीने वो मिलते हैं, लेकिन उससे पहले उनको पहले दो साल याद नहीं आए, तो हूँ याद आ गए ना कि भाई हूँ दो साल का जायजा सी, इस जाहिल पान की हद होती
1: ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
0: ਜਾਹਿਲ ਪਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗ੍ਰਾਈਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੀ ਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡ ਯਾਰ,
1: ਗੁਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ,
0: ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
1: ਯਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।
0: ਅਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਝਾਂ ਸੇ ਗੁਜਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਚੋ ਲੈਂਦਾ ਯੀ ਹਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੀ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਚਾਚੂ, ਉਹ ਪੀ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
1: ਆਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ,
0: ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੱਝ ਇੱਥੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਫਜਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਯੀ ਹਾ, ਫਰੈਸ਼ ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਸੂਮਿਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 17 ਕਰੋੜ
1: ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ?
0: ਉਹ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਦਰੁਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਟ ਲਵਾਂਗੇ,
1: ਉਹ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਉਹ ਲੌਂਚ ਮੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਘਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ
0: ਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੌਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੌਨ ਵੀ ਹੈ,
1: ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਪੜੇਗੀ।
0: ਅਬ ਪੀਰੋ ਲੜਾਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਓ, ਕੋਈ ਮੱਝ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਗੁਜਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ
1: ਹੋ,
0: ਜੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਪ ਲਗਾਓ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ
1: ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੇ।
0: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮੱਝ,
1: ਮੱਝ
0: ਤਾਜ਼ੀ
1: ਤਗੜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੱਝ।
0: ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਲਾਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਪੀਰੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਸਮੇ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਖਾਬ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਚਿੱਟੀ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਮੱਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਚੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੈਸ਼ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਯਾਰ ਪੀਰੋ ਸਾਰੀ 2 ਸਾਲ ਕਸਮੇ ਪੀਰੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ,
1: ਮਹਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇ 2 ਸਾਲ ਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ,
0: ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ, ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਥਾ?
1: ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ,
0: ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
1: ਤੂੰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿਤੇ ਹੈ ਨਾ?
0: ਵੋ ਤੋ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਧਰ?
1: ਤੋ ਕਿਉਂ ਵੋ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖੁਦ ਆਪਸ ਮੇਂ ਮਿਲਤੇ ਹੈ,
0: ਤੋ ਮਤਲਬ ਹਮ ਏਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੇ ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਭ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਇਸੇ
1: ਸੇ, ਵੋ ਵੀ ਹੈ,
0: ਵੋ ਵੀ ਹੈ,
1: ਪਰ ਉਸ ਮੇਂ ਮਿਲਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ,
0: ਕਿਉਂ?
1: ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਹੀ ਹੋਤੇ ਹੈ,
0: ਚੰਦ ਲੋਕ ਮਤਲਬ
1: यहाँ पे भाईजान आपके सियालकोट की सोसाइटी है, लाहौर की सोसाइटी,
0: बिल्कुल यही तो कह रहा हूँ, तो ये एक इकट्ठा सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते, फिर उसमें
1: फूक मारे,
0: फिर उस दिन महाना मीटिंग के 2 वीक की मीटिंग करके चौला मारन, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
1: फूक मारे के ऐसी एक कम्युनिटी बने जिसमें
0: नहीं, इस पे वो नज़म बनती है एक पर, क्या नाम था उसका, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सारी कठी चवला हो,
1: बाबा फूका की हो गया
0: चवला ही नहीं ना यार, मतलब जब इतना साड़ी कम्युनिटी है तो उन्हें इकट्ठा करो, एक ही गल हो गुजरांवाला सोसाइटी, पिंडी सोसाइटी, इस्लामाबाद सोसाइटी, एक ही गल हो, एक जगह इकट्ठा करो।
1: फूका कमाल करते हो, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायत खुदा से करते हो,
0: है
1: कौन रखेगा हमें याद इस दौर دورے خود غرضی میں, حالات ایسے ہیں لوگ لوگوں کو خدا یاد نہیں,
0: خدا یاد نہیں, انہوں نے اپنی کمیونٹی یاد نہیں, خدا تو پھر دور ہے,
1: وہ بھی تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ
0: یہ پھر موقع آیا سی,
1: جی یہ بھی موقع آیا,
0: آج تو کولو لنگ رہے, اللہ خیر کرے, بار بار لنگے ہیں,
1: آج لگتا ہے موقع بھی جڑا نا وہ جلال چ پیر جلال جنے,
0: نہیں نہیں مین پوائنٹ ہے میرے خیال, انہوں محسوس ہو گیا کہ آج آپ جلال میں ہیں, تو ذرا نا وہ آمدوں پہ آمدیں ہو رہی ہیں آپ کی ارد گرد, چلو اچھی بات ہے, انہوں کو ریڈی رہا کرے, نیرے تیٹے رہا کرے, مزہ آیا آج, ڈاڈی شعر و شاعری کی تھی انہوں نے,
1: بابا فوکا صاحب آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ جو ہے وہ رحم کرے, ہمیں جو ہے وہ سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, کسی کا دل نہ دکھائیں, بچوں کو ان کی اچھی تربیت کریں, رزق حلال کمائیں,
0: آمین,
1: اور سیدھے رستے پہ اور اللہ توکل جو ہے وہ کام ہوتے رہیں,
0: مطلب اللہ توکل کے تڑے, اللہ توکل
1: ہم بھی اللہ توکل پہ چلتے,
0: وہی پوچھ لیک ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇ,
1: ਆ ਵੀ ਫੂਕ ਮਾਰੋ,
0: ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ,
1: ਫੂਕ ਮਾਰ,
0: ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਾਕੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਤ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ
1: ਜੀ,
0: ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਦੇਖਨੇ ਸੇ ਉਮਰ ਬੜਤੀ ਹੈ।
1: ਵਾਹ,
0: ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਫੋਨ ਮੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
1: ਵੋ ਅਭੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕੋ,
0: ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਦੇਖਨੇ ਸੇ ਉਮਰ ਬੜਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖਾ ਕਰੇ।
1: ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣਾ,
0: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ
1: ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਅੱਜ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਆਪਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
0: ਆਪ ਆਏ,
1: ਆਪ ਰੋਣ ਕੇ ਲਗਾਈ,
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ।
1: ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ
0: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
1: ਹਮੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ। आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984, ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम